100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि और विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ अधिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। तदनुसार 12 जून 2026 सुबह के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा आरंभ होती है।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

भोर की उजली किरणों के साथ ही लगता है जैसे मन पर छाया अंधकार मिट गया और इसके साथ ही मन जुड़ने लगा ईश्वर आराधना से। तो ऐसे पल में आइए हम भी जुड़ जाएं प्रभु आराधना से कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और आज इस आराधन में मैं सुस्मित हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की वंदना के

लगता है जैसे मन पर छाया अंधकार मिट गया और इसके साथ ही मन जुड़ने लगा ईश्वर आराधना से। तो ऐसे पल में आइए हम भी जुड़ जाएं प्रभु आराधना से, कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से। और आज इस आराधन में मैं सुस्मित हूं आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री गणेश की वंदना के

मन ही है जो हमें इस दुनिया में भरमाता भी है और मन ही हमें ईश्वर से भी मिलाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाएं।

भक्ति का भाव जिस मन में हो वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है, क्योंकि ईश्वर वहीं रहते हैं जहां प्रेम हो, दया हो, करुणा हो और किसी भी विषय के प्रति आसक्ति न हो। तो ईश्वर प्राप्ति की कामना के साथ प्रेम भाव से जुड़ें ईश्वर की भक्ति से।

ईश्वर की विशेष कृपा से हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। ऐसे में हम यदि ईश्वर को ही भूल जाएं, तो ये सर्वथा अनुचित होगा। इसलिए इस जीवन में अन्य बातों के साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भक्तिभाव भी अपने हृदय में बनाए रखना चाहिए।

इस संसार में हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हम अकेले ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है।

ईश्वर की भक्ति का आनंद ले रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम पुष्पांजलि के माध्यम से, और इस कार्यक्रम में मैं सुस्मित हूं आज आपके साथ। आइए जुड़ते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति।

अध्यात्म जगत में प्रभु मिलन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग समर्पित भक्तिभाव कहा गया है। इसके अलावा ईश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहता, तो क्यों ना हम बढ़ चलें मिलन के इस पथ पर अपनी आराधना के साथ।

प्रभु के नाम का उच्चारण करने में जब मधुर स्वरों की मिठास घुल जाती है तो तन्मयता, आनंद और प्रेम भाव अनुभूति के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जिस पर प्रभु को भी रीझना पड़ता है। तो वातावरण में घुलने दें इस मिठास को और ध्यान करें ईश्वर का।

भगवान की भक्ति वो अनमोल रत्न है जो हमें जीवन में हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देता है। निरंतर प्रेम, विश्वास और समर्पण के मार्ग पर चलते हुए ही हम सच्ची भक्ति को पा सकते हैं। तो प्रभु की छाया सदैव हमारे सर पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अब अपने दोस्त सुस्मित को अनुमति दीजिए कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग कानपुर 102.2 एफएम रेनबो पर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना।

गुड मॉर्निंग कानपुर, 12 जून 2026 फ्राइडे की सुहानी सुबह है ये। और फ्राइडे यानी कि शुक्र का दिन, शुक्राने का दिन, तो जो पास है उसका शुक्र।

अदा कीजिए उसका मलाल, जो नहीं है हमारे पास उसका मलाल छोड़ दीजिए भाई, जितना मिला है जो भी मिला है उसका सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा कीजिए।

0: वही था। और दोस्तों जब मनोरंजन की दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं था ना, तब था हमारा भरोसेमंद साथी रेडियो, जो आज भी पूरी तरह से हमारे साथ है। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कानपुर का नंबर वन रेडियो चैनल एफएम रेडियो, एफएम रेनबो कानपुर, जिसे आपने ट्यून किया है 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। कानपुर से दूर रहने वाले जो हमारे दोस्त हैं ना, वो इसे सुन सकते हैं इंटरनेट और मोबाइल ऐप के माध्यम से। मोबाइल ऐप है हमारा न्यूज ऑन AIR। तो भाई सोचना क्या है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनिए 102.2 एफएम रेनबो कानपुर।
1: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
4: हाय, दिस इज उदित नारायण। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
1: और दोस्तों, FM रेनबो कानपुर से कौन कौन से और कैसे कैसे लाजवाब प्रोग्राम्स आज आप सुनने वाले हैं दिन भर, डालते हैं इस पर एक नजर। तो भाई, सुबह के 7:16 पूरे हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। और दोस्तों, इसके ठीक बाद यानी कि सुबह 8 आपको कनेक्ट करेंगे अपने दिल्ली न्यूज रूम के साथ, जहां से आप सुनेंगे पूरे दुनिया के हाल चाल। सुबह 8:30 पर मैं वापस आपसे मिलूंगी और आपके साथ मिलकर सजाऊंगी सुरों की पुरानी महफिल। सुबह 9 डिफरेंट एराज के फिल्मी गानों का हम आनंद लेंगे, प्रोग्राम होगा रस बहार। और दोस्तों, फ्राइडे का दिन होता है बेहद खास, क्योंकि इस दिन विविधा में हम लेकर आते हैं महफिले कव्वाली। हमेशा की तरह समय है सुबह 9:45। सुबह 11 आरजे वंदना के साथ बातों, मुलाकातों और गीतों का प्रोग्राम होगा हम नवा, और मैं रहूंगी आपके साथ आपकी रेडियो संगनी रंजना। दिन में 3 हमेशा की तरह प्रोग्राम होगा म्यूजिक आर, और इसे प्रेजेंट करेंगी आरजे वंदना। 3:45 पर सुनिएगा हेल्थ मैगजीन। आज डॉक्टर युवराज गुलाटी से बातचीत करेंगी दीपशिखा गुप्ता, विषय है क्रॉनिक किडनी डिसीज। और शाम 4 आपकी पसंद लेकर एक बार फिर हाजिर होंगी आरजे वंदना। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी लिस्ट उन प्रोग्राम्स की जिन्हें आज आप सुनेंगे FM रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर गुड मॉर्निंग कानपुर।

और चलिए जानते हैं क्या क्या खास है आज के दिन, क्यों है आज का दिन हिस्ट्री में टॉप नॉच और क्या है आज का हिस्ट्री नामा। तो सबसे पहले बता दें कि आज बाल मजदूरी की खिलाफत करने वाला दिन है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और अब ये हर साल आज के दिन वैश्विक रूप से मनाया जाता है ताकि हम रूबरू हो सके बाल श्रम समस्याओं से और जागरूक बन सके, क्योंकि मुस्कुराता बचपन हर बच्चे का अधिकार है।

जी हाँ, बच्चे मन के सच्चे। और भाई बात जब वैश्विक चली है तो बता दें कि आज है रशिया डेन, यानी कि रशिया डे, जो प्रतीक है आज के रूस की आज़ादी का। और इस वक्त मुझे जो है याद आ रहा है वो गाना मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं सोच रही हूँ आपको सुनवा ही दूँ।

इसके साथ ही दोस्तों फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी की स्थापना भी आज ही हुई थी। साल था 1950 और हेलसिंकी जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और खुशहाल शहरों में से एक है। और इस समय ये जो समय चल रहा है यहाँ पर होती हैं सफ़ेद रातें। जी हाँ, अप्रैल से लेकर अगस्त तक के महीने में यहाँ पर अंधेरा जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है और इसे कहा जाता है वाइट नाइट्स।

और यहाँ हम आपको सुना रहे हैं आज के दिन की कहानी, जो बताती है कि अतीत के आईने में कितना इम्पोर्टेंट है आज का दिन। ये कहानी है एक ऐसी डायरी की जो पूरी दुनिया में खासा मशहूर हुई। इसका नाम था किट्टी और जब ये पब्लिश हुई तो जानी गई द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एनी फ्रैंक की लिखी किताब की, जो मूल रूप से एक डायरी थी। 1929 में आज के ही दिन एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था, तो आज उस डायरी वाली यहूदी लड़की को याद करने का भी दिन है।

खैरियत पूछते ही दोस्तों याद आ जाता है पिछले साल का आज वाला दिन, जिसे याद करते ही हम कहीं ना कहीं अंदर तक सिहर जाते हैं, क्योंकि ये दिन 2020 के दशक की सबसे घातक विमान दुर्घटना की दर्दनाक यादों को ताज़ा कर देता है। आज ही के दिन अहमदाबाद में विमान हादसे में 200 से ज़्यादा लोगों ने अपना जीवन खो दिया। उन सभी लोगों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और कुछ पलों का मौन।

रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो दोस्तों, सुबह होकर ही रहती है। ठीक इसी तरह नेगेटिविटी कितनी भी हावी क्यों ना हो जाए, उम्मीद की किरण निकल कर ही रहती है। यानी जीवन में अच्छे बुरे हालातों का आना जाना लगा ही रहता है, इसलिए हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। ये वक्त ना ठहरा है, ये वक्त ना ठहरेगा, ये यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अभी तक कोई भी इतना अमीर नहीं हुआ है कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं हुआ है कि आने वाले वक्त को बदल ना सके। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि तितली महीने नहीं

पलों को गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। तो सोचिए जरा हमारे पास कितने पल हैं कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए।

जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस समय जून का महीना चल रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है। इस हम बात को हम सभी जानते हैं और महसूस भी कर रहे हैं। तो भाई चलिए आपको बता देते हैं, हम इस वक्त अपने कानपुर का जो मौसम हाल है, तो सुबह के 7:38 हो चुके हैं दोस्तों। सूर्योदय हो चुका है बहुत पहले ही और इस वक्त का जो टेम्परेचर है वो है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो दिन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। इसका पारा जो है लगभग पहुंचेगा 36 डिग्री के आसपास, जो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। मिनिमम की अगर हम बात करें तो 27 डिग्री जो है वो मिनिमम टेम्परेचर आज का रहेगा और एयर क्वालिटी जो है इस वक्त बहुत ही पुअर जा रही है। ख्याल रखना पड़ेगा कि आप ये जो आबो हवा है ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ह्यूमिडिटी दोस्तों 70% के साथ जो दिन आज का है वो थोड़ा सा बहुत ह्यूमिड रहेगा, गर्मी उमस आपको महसूस होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी अभी जो एक संदेश आया है वो आया है कि तूफान आंधी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बारिश के साथ आंधी तूफान आ सकता है और ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। तो ऐसे में जो तापमान का चक्कर पड़ रहा है ना वो थोड़ा सा कम हो सकता है, आपको गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि आंधी और बरसात से जूझना तो पड़ेगा। और आज का जो फैशन मंत्र है ना दोस्तों इस मौसम में, क्योंकि गर्मी है ह्यूमिड भी है, तो ब्रीजी कॉटन क्लोथ्स हमेशा चलते रहते हैं। ऑल ओवर लिनन अगर आप पहनते हैं तो ये बहुत ही कूल दिखता है। साथ में रखिए एक धूप वाला चश्मा, स्टाइल भी रहेगी और प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। मौसम कोई भी क्यों ना हो, बिल्कुल भी डरने का नहीं, हमेशा स्टाइल में रहने का। तो सजिए संवरिए और मुस्कुराते रहिए।

गाना सुनते सुनते इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रही थी और इस सर्चिंग सर्फिंग के दौरान देखिए कितना प्यारा सा पोस्ट मिला है। ये पोस्ट लिखा है 1999 में मिस इंडिया बनी गुल पनाग ने। गुल पनाग लिखती हैं कि आप किसी इंसान को नापसंद कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी नापसंद कर सकते हैं, सरकार से असहमत हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, आपको अपनी बात रखने की पूरी छूट है, आपको पूरा अधिकार है और यही डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात है। परंतु भारत के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का असम्मान मात्र उस व्यक्ति का मजाक नहीं होता, बल्कि उस पद की गरिमा, भारत के गौरव और हम सभी भारतीयों के लिए भी असम्मान की बात होती है। ये असहमति जताने का ना तो सही तरीका है और ना ही स्वस्थ दृष्टिकोण। और ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ मेरी भावनाएं हैं, क्योंकि गुल पनाग ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को, अपनी बात को उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, जिसे मैंने अपने भावों में व्यक्त किया है। यहाँ पर मैंने इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया है, तो वो बात कही है मैंने जो मुझे समझ आई है। आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर।

और दोस्तों आपके सजदे में लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास जानकारी, और ये मैं शेयर कर रही हूँ उन सभी के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले हैं। तो भाई बात यह है कि 22 जून को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा की सिटी स्लिप जारी हो चुकी है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही जारी किए जाएंगे, और परीक्षाओं में होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए इसके मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा चुकी हैं और आगे भी चलाई जाने वाली हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रेन की जो वैलिड टिकट होती है ना, उसको लेकर ही यात्रा करें, असुविधा से भी बचेंगे और देश हित में आप अपना योगदान भी करेंगे। अब बात ट्रेन की चली है तो बात कर लेते हैं अपने कानपुर मेट्रो की। तो भाई सेंट्रल से नौबस्ता तक की मेट्रो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। कल इसका जायजा भी किया गया। टीम CMRS की हरी झंडी के बाद मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद है कि जुलाई की शुरुआत में हम सभी को सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो में सफर करने का मौका मिल जाएगा।

और इसके साथ ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। आज मुकाबला है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। ऑल द बेस्ट लेडीज, आप सभी चैंपियंस हैं। भारत को खेलने का भी मौका मिलेगा। परसों यानी कि 14 जून को मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। इंडियन टीम जो है ना दोस्तों एकदम फॉर्म में है इस वक्त, और पिछला जो वनडे वर्ल्ड कप जीता था ना उसके बाद तो हौसला और जिम्मेदारी दोनों की दोनों बढ़ चुकी है।

और इसके साथ ही दोस्तों समय पूरा होता है गुड मॉर्निंग कानपुर का, लेकिन मन में एक कामना आ रही है और वो ये कि आपके सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा दिन हो गुड, बेटर और बेस्ट।

तो सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर। और दोस्तों, अब समय हो गया है कि आपको सुनवा दिए जाएं पूरी दुनिया के हाल चाल। तो लेकर चलते हैं आपको अपने दिल्ली केंद्र, जहां से अब आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल

0: और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14

0: लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव

0: भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया, तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ, हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव

0: खेला जाएगा। इंग्लैंड और विल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding, MOU, with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over rupees 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
4: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceed of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
2: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
5: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryu said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
2: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cybercrime Coordination Center under the Ministry of Home Affairs, cybercriminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. More from our correspondent.
6: The advisory highlights that fraudsters typically initiate contact through social media platforms, job portals, dating platforms, or phone calls. They collect facial data of victims, sometimes by convincing them to perform simple actions such as blinking, turning their head, or speaking on camera. The government has advised financial institutions, including fintech companies, to strengthen deepfake detection mechanisms and enhance customer onboarding systems. The individuals have also been urged to secure their biometric data, remain alert to suspicious login attempts, and regularly monitor email or SMS notifications related to financial activities. Citizens are also advised to report any suspicious financial transactions immediately through the National Cybercrime Reporting Portal. With Dipendra Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has stressed the need for resilient and diversified supply chains, sustained diplomatic efforts and greater international cooperation to deal with the fallout of ongoing conflicts. Participating in a discussion on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kultaranta talks in Finland,

बेहद खूबसूरत गीतों की प्लेलिस्ट चल रही है इस समय, जिसमें है 50s और 70s तक के ऐसे गीत जो आज भी हमारे दिलों पर दस्तक देते रहते हैं। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल।

और इसके साथ ही दोस्तों समेटते हैं सुरों की पुरानी महफिल के इन महकते लम्हों को और संगीत के सफर में आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगले प्रोग्राम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmiliaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप। वेलकम बैक दोस्तों, 102.2 FM रेनबो पर मैं हूँ आपकी रेडियो संगनी रंजना और हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम रस बहार। एक ऐसा प्रोग्राम जो होता है बेहद खास, क्योंकि गीतों के साथ साथ इसमें जुड़े हैं आपके जज्बात। तो चलिए सुनते हैं 90s वर्सेस टुडे, यानी कि 90s के वो गाने जिन्हें सुनकर आज भी दिल मुस्कुरा उठता है, और साथ ही होंगे आज के दौर के वो गाने जिन्होंने हमारे मोबाइल की प्लेलिस्ट में एक खास जगह बना रखी है। अब सवाल बस इतना सा है कि ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड, तो कनेक्ट हो जाइए आप भी हमारे साथ। ईमेल कीजिए रेड वाला दिल अगर आप भी हैं पुरानी यादों के साथ, और अगर आपको नई धुनें ज्यादा पसंद आती हैं तो फिर भेजिए एक नीला वाला दिल, हम इंतजार में हैं इस गीत के साथ।

ये वो गाना है दोस्तों जिसे सुनते ही आधी दुनिया अपने स्कूल के दिनों में पहुंच जाती है। जी हाँ, ये वो दौर था जब प्यार का इजहार खतों में किया जाता था। आज तो खैर हमारे पास चैट बॉक्स आ गया है ना।

तो अब बताइए रेड वाला दिल या कि ब्लू वाला है। तो खैर दोनों ही कमाल के, क्योंकि दोस्ती और मोहब्बत किसी भी एरा की क्यों ना हो, निभाई तो दिल से ही जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि आज की जनरेशन को स्टेटस और स्टोरी लगाने का मौका जरूर मिल गया है, तब चीजें बस दिल, दिमाग और यादों में ही हुआ करती थी।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

FM रेनबो कानपुर से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसबहार, मेरी यानी रेडियो संगिनी रंजना के साथ। और आज प्रोग्राम में चल रहे हैं 90s और आज के गाने। और भाई इधर तो हमारे पास इनबॉक्स में वोट्स आने भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन इनमें तादाद उनकी ज़्यादा है जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी है गानों की। तो भाई रिक्वेस्ट आप भेजिएगा शाम के प्रोग्राम में आपकी पसंद में। फिलहाल तो आप हमें ये बताइए कि आपको 90s के गीत ज़्यादा पसंद हैं या आज के, यानी कि आपको भेजना है हमें रेड हार्ट या ब्लू हार्ट। अगर आप 90s के गीत ज्यादा पसंद करते हैं तो भेजिए रेड वाला हार्ट, और अगर आपको आज की धुनें ज्यादा पसंद आती हैं तो भेजिए ब्लू वाला हार्ट। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से भेजिए अपनी चाहते। हमारे पास ईमेल एड्रेस तो याद ही है ना? जी हाँ, AIRKANSOMEDIA@gmail.com।

बदलाव तो भाई लगातार चलते रहने वाला एक ऐसा प्रोसेस है कि जो लगातार होता ही रहता है। हर पुरानी चीज़ जो है वो किसी ना किसी नए के साथ रिप्लेस होती ही होती है। अब जैसे कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो कैसेट्स के साथ बदले गए, और फिर कैसेट्स के बाद आई CD, PD, ब्लूरे, और उसके बाद छोटू सा USB कार्ड। लेकिन दोस्तों एक चीज़ अभी तक नहीं बदली है और आगे भी नहीं बदलेगी, और वो है दिल को छू लेने वाली प्यारी सी धुने।

और इसके साथ ही रस बहार का टाइम यहीं पूरा होता है। 90s वर्सेस टुडे की बैटल में हमें मिले बहुत सारे हार्ट्स। रेड हार्ट भेजने वाले हैं केशव, माधव, रानी, प्रिया, रीता, और ब्लू हार्ट भेजने वाले हैं आन्या, वान्या, अनन्या, अदिति, देवांश, ख्वाहिश, अनिरुद्ध और अभ्युदय। और अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। अगले प्रोग्राम के लिए करते हैं बस थोड़ा सा इंतजार।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होंठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
3: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
2: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4-5 बजे हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
4: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
3: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat।
2: तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।
3: तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4-5 आपकी पसंद प्रोग्राम।
5: सारेगा पदा निदा पगरेगा मगरेगा सागा।
6: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।
5: पानी रे महापादा पगरे मागरे गरे सनिदारे।
7: विविधा में लीजिए सुनिए महफिले कव्वाली।

और इसके साथ ही महफिल कव्वाली का समय अब यहीं पूरा होता है। आपने इसे सुना मेरे यानी रेडियो संगिनी रंजना के साथ। अब दीजिए इजाजत, एक घंटे के ब्रेक के बाद आपसे वापस मिलूंगी और लेकर आऊंगी प्रोग्राम हम नवा आरजे वंदना के साथ। समय होगा सुबह 11 बजे, तो सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर।

बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल तथा प्रशासक शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं था। ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो, अयोध्या का, राम मंदिर का निर्माण हो, तमाम ऐसे कार्य शामिल हैं। प्रदेश के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस पर गुरुवार देर शाम पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है। इसी ट्रेन से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सफर कर रहे थे। पुलिस ने देर रात तक घटनास्थल के आसपास जांच की है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संघ प्रमुख कानपुर में एक समारोह में शामिल होने के बाद लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। हालांकि इस घटना में संघ प्रमुख पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बृहस्पतिवार को जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अमरोहा में बीती रात झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से फसलों को लाभ मिलने से किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। पीलीभीत जिले में भी रात से तड़के तक बरसात का क्रम जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ समेत यूपी के ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि यूपी में 18 जून के बाद कभी भी मानसून की एंट्री हो सकती है। लखनऊ में मानसून के 20 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। और अंत में फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अभियान की विजयी शुरुआत की। मेक्सिको ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और 9वें मिनट में विश्व कप 2026 का पहला गोल देखने को मिला। इस गोल के बाद एस्टेका स्टेडियम दर्शकों के उत्साह से गूंज उठा। मैक्सिको ने इस जीत के साथ विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की और घरेलू मैदान पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन आप 11 बजे सुन सकते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेडियो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
1: भाई अब मैच का क्या होगा,
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: सुबह के हो रहे हैं 10:05 और एक बार फिर से आपकी होस्ट एंड दोस्त रोली शुक्ला आ चुकी है आपके अपने फेवरेट चैनल 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। और ये धड़कन लखनऊ की जो आप तक पहुंच रही है इस समय रेडियो के उस पार, फिलहाल अपने साथ एक म्यूजिक एक्सप्रेस में आपको तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो आपका क्या कहना है, आप तैयार होने के लिए है बिल्कुल तैयार? तो बस हो जाइए तैयार, अच्छे अच्छे गाने एंजॉय करिए और साथ में आपकी जो काम है उन्हें जल्दी जल्दी पूरा कर लीजिए और उसके बाद फिर बताइएगा आपको कैसे लगी ये सॉन्ग सिलेक्शंस।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल, हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ।

और दोस्तों इसी के साथ अभी ये प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही, रोली आपके साथ रहने वाली है नेक्स्ट प्रोग्राम में भी। बस बीच में होंगे समाचार और समाचार के उस पार आपके लिए लेकर आ जाऊंगी आपका फेवरेट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? जी हाँ, संदेश आपके गीत हमारे, तो बस रहिए तैयार और कई मजा आए। स्टे ट्यून्ड, स्टे म्यूजिकल।

0: जी हाँ, बातों, मुलाकातों और गीतों का ये प्रोग्राम जिसका नाम है हम नवा अब शुरू हो चुका है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं आरजे वंदना। आज हम बात करेंगे जीवन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक्स पर, साथ ही आपको सुनवाएंगे कुछ बहुत सारे खूबसूरत गीत, है ना वंदना?
1: बिल्कुल। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं एक बार फिर से प्रोग्राम हमनवा में। और चलिए बातों का सिलसिला और साथ में गीतों का सिलसिला
0: हम बिल्कुल शुरू करेंगे। उससे पहले श्रोताओं को बताते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं किन टॉपिक्स पर। तो भाई, मौसम जो अदल बदल रहा है उसकी बात तो हमें करनी है, क्योंकि कितना भी मौसम बदल रहा हो, बारिश आ रही हो या आंधी आ रही हो, धुंध हो रही हो, उसके बावजूद ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे में हमारा जो स्वास्थ्य है ना, उसकी बिगड़ने की बड़ी आशंका रहती है। तो ऐसे में किस तरह का हमारा खान पान हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि अगर वो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें, बताना चाहें अपने तौर तरीके खान पान के गर्मियों में, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो ईमेल एड्रेस है, हमारे सभी श्रोता जानते हैं हमारे ईमेल एड्रेस को। हमारा ईमेल एड्रेस है aircansomedia@gmail.com। इसके अलावा सुबह सुबह आजकल अगर हम निकले ना, तो गर्मी से बचते हैं और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी बहुत मिलती है वरना। तो भाई, हम सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे
1: और साथ ही बात करेंगे कि मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है।
0: और इस वक्त क्या है ना कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तो घर में तो भाई खूब धमा चौकड़ी मची हुई है इस वक्त। और बच्चे जो हैं, मतलब बाल सुलभ एक तौर तरीके होते हैं उनके, कई बार जिद बहुत करने लग जाते हैं, और कई बार हम लोग भी जाने अनजाने उनकी जिद को बढ़ावा देने में सहायक बन जाते हैं। तो भाई,
1: हाँ,
0: बिल्कुल। तो भाई, कहाँ तक उचित है उनकी जिद को पूरा करना, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और एक स्टार्टअप की चर्चा करेंगे, एक रेसिपी जो हम हमेशा बताते हैं, तो गर्मियों की एक ऐसी शानदार रेसिपी बताएंगे कि बस आप अंदर तक ना बिल्कुल ठंडक महसूस करेंगे, एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। और आज बहुत ही ख़ास दिन है, आज हम मना रहे हैं बाल मजदूरी के खिलाफ दिवस, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और इन सारे टॉपिक्स पर बात करें उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं एक गीत।

0: अच्छा वंदना, कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है?
1: मुझे लगता है प्रकृति और हमारे घर में खेलते छोटे छोटे बच्चे,
0: नन्हे मुन्ने बच्चे, या यूं कहें कि हम जो पीछे छोड़ आए हैं, यानी कि हमारा बचपन है ना, हमें बार बार याद आता है। और अब जब हम बड़े हो गए हैं, और बचपन में जब कोई पूछता था ना कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो हम दुनिया भर की चीजें बताते थे। अब लगता है कि आप कोई पूछे कि क्या करना चाहते हो, तो फिर से मन करता है कि भाई वापस
1: बचपन बनना है ना।
0: और कहते हैं कि किसी भी देश की प्रगति के लिए बच्चों का सशक्त होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज का जो बच्चा है वही बड़ा होकर युवा होगा और देश की प्रगति में सहायक होगा, उसके विकास में सहायक होगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। लेकिन विडंबना क्या है वंदना, बहुत ही दुख की बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना बचपन ठीक से जी नहीं पाते।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर बच्चे का वैसे तो अधिकार है, जैसे आपने कहा कि सबसे खूबसूरत ज़िंदगी का पड़ाव होता है बचपन, और मैं मानती हूँ कि हर बच्चे का ही अधिकार होता है कि वो शिक्षा भी प्राप्त करे, खेले कूदे और बहुत अच्छा से अपना बचपन जिए और स्वस्थ जीवन जिए और अपने सपनों को साकार करे। देखिए बचपन में जो छोटी छोटी बच्चों की आंखों में सपने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन हम आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वही है बाल श्रम। तो आज भी हम एक विडंबना जो आपने कही थी अभी, विडंबना वाली बात

0: कि विडंबना है, दुनिया के लाखों बच्चे श्रम करने के लिए मजबूर हैं और गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता इसके बहुत बड़े कारण हैं।
1: हाँ बिल्कुल, गरीबी और जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और अगर हम यूनिसेफ की बात माने तो उनके अनुसार हर 5 में से एक बच्चा किसी न किसी रूप में बाल श्रम का शिकार होता है, बाल श्रम कर रहा है। और बाल श्रम की अगर हम बात करें तो ये उस तरह का एक काम के तौर पर उसको डिफाइन किया जाता है कि जिससे बच्चे का बचपन छिनता है, उसकी क्षमता छिनती है, उसका सम्मान खत्म हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना बच्चे के डेवलपमेंट में, जो ओवरऑल है उसका जो मानसिक और उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट है उसमें ये बाधक बनते हैं,
0: बहुत नेगेटिव इनका प्रभाव होता है। और खतरनाक उद्योगों में जिन बच्चों को जैसे लगाया जाता है उससे उनके जीवन तक को खतरा हो जाता है और शारीरिक मानसिक तो दुष्प्रभाव पड़ते ही हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन भारत में कानून है वंदना कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है ना तो यहाँ पर दंड का भी प्रावधान है। और इसके अलावा ये बात सभी जानते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार नियत किया गया है और इसको पहुंचाने के लिए शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए भी किसी भी तरह के काम को, बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
0: जी हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कही। और ये नियम और कानून जब तक जब बनते हैं तभी कोई चीज़ कठोरता से पालन की जाती है। और एकदम सही बात है कि बाल श्रम बच्चों के बचपन को बिल्कुल छीन लेता है और बचपन ऐसी उम्र है जो दोबारा लौट कर नहीं आती। कम उम्र में काम करने से बच्चों के जो ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते ही हैं और इसीलिए हम आज का दिन 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मना रहे हैं। रंजना जी
1: बिल्कुल, और ये दिन इसलिए मना रहे हैं कि जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें साल 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया था, ताकि उनका उद्देश्य यह था कि 2025 तक बाल श्रम के जितने भी रूप हैं उनको खत्म किया जा सके। और इसकी कार्यवाही पर केंद्रित है आज का दिन। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO ने 2002 में ही कर दी थी। और ILO के हिसाब से इसका जो लक्ष्य है ना वो किसी भी प्रकार के जो बाल श्रम है, जैसे चाहे वो कारखानों में काम करते हो, खनन के लिए हो, इन सभी कामों को खत्म कर देना है। उनका प्रयास है कि इसके लिए जो आम नागरिक हैं वो भी जागरूक हो सकें।
0: जी, तो आपने एकदम सही बात कही रंजना। इसीलिए आज इस दिवस का उद्देश्य जो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हम सब हैं समाज में, उनको जागरूक करना है और बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित भविष्य दिलाने के लिए प्रेरित करना है। और इसके लिए हम सभी का प्रयास लाजमी है, हम सबको प्रयास करना चाहिए, सभी इसके लिए जागरूक होने चाहिए। ये किसी एक दो लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदारी निभाए।
1: अच्छा, जागरूकता अगर आ चुकी है और आप कहीं देख रहे हैं कि कोई बच्चा जो है एक लेबर की तरह काम कर रहा है या किसी ऐसी जगह काम कर रहा है जो उसके जीवन के लिए संकट पैदा कर सकता है, उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन पेंसिल नाम का एक पोर्टल है, वहां पर आप लिखित रूप में शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाइल्ड लाइन में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, नंबर है 1098, तो यहाँ पर भी संपर्क करके आप शिकायत कर सकते हैं और बाल श्रम के खिलाफ इस लड़ाई में साथ जुड़ सकते हैं।
0: अच्छा रंजना जी, मुझे लगता है आप एक बार वो पोर्टल और वो नंबर एक बार फिर से आप बता दीजिए।
1: पोर्टल का नाम है पेंसिल और चाइल्ड लाइन का नंबर है 1098। और इसके इस लड़ाई में ना हमारे साथ बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिनको मैं तो महापुरुष ही कहूंगी कि
0: जो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं,
1: जिनके अंदर इतनी इंसानियत है कि अपने अलावा वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम जो चाइल्ड एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे भारत में सामने आया था, जिन्हें 2014 में शांति का नोबल पुरस्कार भी दिया गया था इसी काम के लिए, और वो नाम है कैलाश सत्यार्थी जी का।
0: जी,
1: इन्होंने पहले अपने आगे आकर के स्वयं ही बहुत सारे काम किए और उसके बाद इन्होंने अपना फाउंडेशन फॉर्म किया और अब तो एक बहुत ही लार्ज स्केल पर ये काम कर रहे हैं। और काम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना जमीन पर, जो ये चमकते हुए सितारे हैं, ये कहीं खो ना जाएं।
0: तो इसके लिए बस मैं चलते चलते अपने श्रोताओं को गीत सुनाने से पहले कहूँगी कि इस अवसर पर आइए हम एक संकल्प लें कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार दिलाने में हम अपना योगदान देंगे, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं।

0: तो वंदना मस्ती वाला ये गाना तो भाई सुन लिया, अब एक कहानी सुनाऊं छोटी सी?
1: बिल्कुल सुनाइए, कहानी सुनने में किसको मजा नहीं आता।
0: तो अकबर बीरबल की एक कहानी है। अकबर जो है जा रहे थे रास्ते में और देखते क्या है कि बीरबल एक छोटे से बच्चे को बहुत डांट लगा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अरे बीरबल क्यों इतने से छोटे से बच्चे को डांट लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बहुत जिद करने लगा है। तो बोले अरे तो बच्चा ही तो है, जिद तो करेगा, बताओ क्या चाहता है ये?
1: बिल्कुल
0: रुको मैं इसको शांत कराता हूँ। तो बच्चे के पास गए और उन्होंने कहा कि बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने इशारा किया एक कुम्हार के पास कि ये वाला मटका चाहिए मुझे। तो भाई राजा तो कुछ भी दिला सकते हैं, है ना। उन्होंने मटका उठाया और दे दिया कि ठीक है बच्चे लो खेलो तुम। वो खेलते रहे। उसके बाद बोला कि उन्होंने देखा कि अच्छा अकबर का हाथी खड़ा हुआ है। उनका मुझे ये चाहिए, उस बच्चे ने बोला मुझे तो ये वाला हाथी चाहिए। तो भाई शहंशाह अकबर के लिए कौन सी बड़ी बात थी, उन्होंने लाओ भाई हाथी लाया जाए। हाथी ले आए और बच्चे को उस पर बैठा दिया। बच्चा थोड़ी देर तो उसने बहुत मस्ती करी, उसके बाद वो नीचे उतरा। उसने बोला कि अब इस मटके में इस हाथी को घुसा दो। अब तो जो अकबर बड़े परेशान की भाई अब क्या किया जाए, और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। तब जाकर बीरबल ने कहा कि महाराज बच्चों की जिद हमेशा पूरी नहीं की जाती है, उन्हें बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, घर में बच्चे धमा चौकड़ी काट रहे हैं और वो बात बात में कोई ना कोई जिद कर बैठते हैं। भाई कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो हम पूरी कर देते हैं, लेकिन हमेशा हर वक्त हर जिद को पूरा करना जो है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। और कई बार तो कई जिद तो उनकी इतनी मासूम प्यारी सी होती है ना कि बहुत स्वीट लगती है, हम उनको कर देते हैं पूरा। लेकिन कई बार उनकी हर जिद जो है, उनकी हर डिमांड को मानने के चक्कर में हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं,
1: बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है कभी कभी बच्चों की इन जिद की वजह से। जैसे कभी मैंने देखा है बच्चों को कि अगर उनकी मम्मा रोटी वगैरह बना रही है तो वो आ जाएंगे कि मुझे भी आप थोड़ा सा आटा दे दीजिए, मैं भी रोटी।
0: बच्चे चूचू बनाते हैं
1: तो वो नहीं, कुछ बच्चे तो चिड़िया वगैरह के लिए आटा छोटा सा लेकर निकल जाते हैं, पर कुछ वही साथ में माँ के खड़े हो जाएंगे कि मुझे रोटी बनानी है। तो अब ये जिद कहाँ तक, मतलब एक रोटी मम्मा बनाएगी तो एक बेटा बनाएगा या बेटी बनाएगी तो ऐसा कैसे चलेगा।
0: चलो ये तो बहुत स्वीट सी एक जिद है कि कोई बड़ा आकर के बच्चे को संभाल लेगा।
1: की बात करी, हाँ, बात
0: लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बच्चे ऐसी ऐसी डिमांड कर देते हैं जो सचमुच पूरी करना अच्छी बात नहीं होती है। और इससे क्या होता है कि जब बहुत चीजें सुलभ मिलने लग जाती हैं बच्चों को तो कहीं ना कहीं वो उनका उतना ध्यान भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वो उनके लिए उतनी वैल्यू नहीं रखती है
1: क्योंकि उनको हर चीज एक बार ही कहने पर मिली जा रही है। और रंजना जी इसमें मैं एक चीज और बोलूंगी कि हर जिद को, हम बात हर जिद की कर रहे हैं, हर जिद को पूरी कर देना ठीक भी नहीं इसलिए होता है क्योंकि इससे बच्चे के जो स्वभाव में ना एक हठीलापन आ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और बच्चा फिर अपने जीवन में ना एक जिंदगी एक दिमाग में गांठ बांध लेता है कि नो किसी बात में नहीं होती है, वो जो भी जिसी से कहे और वो उसको पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा उसका नेचर बन जाता है। और वो इससे क्या होगा, जब वो आगे अपने और जीवन में बढ़ेगा तो कभी ना कभी तो किसी चीज में हार भी मिल सकती है और डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत असफलताओं को भी स्वीकार करें बच्चे, ऐसे हमको उन्हें बनाना चाहिए।
0: हाँ, अब ये बात बहुत सही है कि हम बच्चों को इतने आसानी से चीज़ों को दे देते हैं कि कई बार जब उनको असफलताएं मिलती हैं जीवन में तो वो उनके लिए बहुत अवसाद का कारण बन जाती हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था, उन्होंने तो जब जो चाहा वो उनको मिल गया।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि पेरेंट्स ने, उनके बड़ों ने हमेशा ऐसा किया। तो हमेशा उनकी जिद पूरी करना भी सही बात नहीं है, उन्हें कहें कि वो कोशिश करें और उस काम के लिए एफर्ट्स करें, उसके बाद वो मिल जाएगा उन्हें।
1: हाँ, और मुझे लगता है जैसे बच्चों को एक समझदारी का भी भाव आता जाएगा अगर हम उनसे कहेंगे कि आप सही और गलत में अंतर भी तो पहचानिए, आप जो मांग रहे हैं वो कहाँ तक सही है।
0: बिल्कुल, है ना, कहाँ तक सही है और आपके सामर्थ्य में कितना है।
1: बिल्कुल।
0: कई बार होता है ना कि जो चीज आपके सामर्थ्य में नहीं है वो भी आप डिमांड करते हैं और उसके बाद जिद करते हैं, बच्चे घर में कोहराम मचाते हैं, रोते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तो एक मानसिक समस्या शुरू हो जाती है घर में, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं।
1: अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं आजकल के जो सिनेरियो में बच्चों का जो जिद है वो सबसे ज्यादा किस चीज की होती है, आपने भी देखा ही होगा,
0: मोबाइल। मतलब वो खाना तब खाएंगे जब उनको स्क्रीन देखने को मिलेगी, वो पढ़ाई तब करेंगे जब उनको
1: थोड़ी देर पहले देखने को मिल जाएगा या बात के लिए प्रॉमिस हो जाएगा।
0: हाँ, नहीं, मतलब ज्यादातर तो बच्चे ये होते हैं कि डाइनिंग पर एक तरफ प्लेट होती है, एक तरफ मोबाइल होता है, पढ़ने की टेबल पर एक तरफ उनकी टेक्स्ट बुक होती है, सामने कंप्यूटर होता है। तो ये तो जिद बहुत बड़ी है जो मैं आम देखती आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर रोक लगानी चाहिए। कई बार हम जो है ना, हम पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना, हमें लगता है कि हमें उसको शांत ना कराना पड़े, घुमाना ना पड़े,
1: तो भाई बार बार हमें किसी चीज के लिए बार बार टोके नहीं मम्मा ये मम्मा
0: हाँ,
1: तो हम कह देते हैं ले लो भाई थोड़ी देर एक डेढ़ घंटा आप शांति से बैठोगे। लेकिन ये चीज बहुत गलत है। जिस जिद से बच्चे की सुरक्षा से खिलवाड़ हो या उसकी सेहत से खिलवाड़ हो वो जिद एकदम क्रॉस लगा देना चाहिए, उसको एकदम बंद कर देना चाहिए।
0: अच्छा मैं क्या ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप छोटी छोटी इच्छाएं उनकी, छोटी छोटी जिद उनकी अगर आप पूरी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, है ना, उनका हमारे प्रति प्यार और हमारे प्रति जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो जो मांगे उसको दे देना चाहिए, मगर जो देने लायक चीज है, जो जिद पूरी करने लायक है, उसको कभी कभी पूरा भी कर देना चाहिए।
1: बिल्कुल, जैसे अगर बच्चा किसी क्रिएटिविटी की चीज पे बात कर रहा है या किसी सीखने कलात्मक चीज है, कोई संगीत वगैरह है, कुछ सीखने के लिए जिद कर रहा है, तो अगर आपके घर में वो माहौल नहीं भी है तो भी आप कोशिश करिए कि क्रिएटिविटी है कुछ उसको सीखने में मिलेगा तो आप उसको सिखवाइए, चाहे किसी से भी कह के हेल्प लेनी पड़े आपको। अगर बच्चा ऐसी चीजों के लिए जिद कर रहा है तो आप उसको जरूर पूरा करिए।
0: राइट, और अगर बच्चा इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है तो पूरे दिन में एक आइसक्रीम तो दिलवाई जा सकती है, है ना, लेकिन उसको बताना चाहिए, सीमाएं तय होनी चाहिए कि भाई पूरे दिन में आपको एक मिलेगी, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी, और उसके बाद आपको हरी सब्जियां भी खानी है और आपको फ्रूट्स भी खाने हैं।
1: पॉकेट के अकॉर्डिंग कैसा खर्च हम करते हैं वैसे बताना चाहिए कि भाई मम्मा पापा आपके लिए पॉकेट के अकॉर्डिंग कैसे खर्च करते हैं वो आप भी सीखो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्यार का और डिसिप्लिन का जो एक संतुलन है वो हमें बना के चलना होगा, सही गलत का अंतर समझाना होगा, और कहीं ना कहीं बच्चों में धैर्य वो रखना सीखें ये भी हमें उन्हें बताना पड़ेगा।
1: अच्छा रंजना जी, मैं एक ये भी बात मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कुछ बच्चों को देखकर कि कहीं बच्चे पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए जिद कर रहे होते हैं, कि बच्चे कई बार ऐसा होता है हम बहुत घरों में देखते हैं कि मम्मी पापा को टाइम नहीं है बच्चों के लिए,
0: राइट
1: तो वो बच्चे मम्मी पापा का अटेंशन मिले इसलिए किसी चीज के लिए जिद करते हैं,
0: किसी चीज के लिए जिद करते
1: तो
0: हैं
1: कि हमको
0: कई बार रोते हैं, कई बार खुद को हार्म करते हैं। मैंने एक बच्चे को देखा कि उसको कुछ अटेंशन मतलब सीकर था वो इतना ज्यादा, तो वो क्या करता था कि अपना सर जमीन पर पटकता था।
1: ओहो,
0: तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत समझदारी वाला काम किया उन पेरेंट ने, उन्होंने नीचे कुछ ऐसा मैट बिछा दिया अपने पूरे फ्लोर पर ताकि बच्चे के सर में चोट ना लगे, और अगर वो सर पटक रहा है जमीन पर तो उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए।
1: अच्छा।
0: कि तुम अगर गलत चीज की डिमांड करोगे तो तुम्हारे सर पटकने पर भी वो तुम्हें नहीं दी जाएगी, और जब बच्चा शांत हुआ तो उसको समझाया गया, क्योंकि मुझे लगता है संवाद जो है वो एक बेहतर तरीका है, जब हम बात करते हैं ना तभी बात बनती है।
1: बिल्कुल, हम अपने बड़ों के भी बीच में रिश्ते सुधारने के लिए हमेशा कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, तो उसी तरह से हम बच्चों को भी वो करने के लिए हम। और एक चीज यहां पर मैं आप इसके पहले गाना सुनाएं, मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं डायना बामरिन, इनके एक बात कहना चाहती हूं कि उन्होंने बोला है कि पालन पोषण संबंधी शोध के अनुसार सबसे प्रभावी शैली वो है जिसमें प्यार और अनुशासन दोनों का संतुलन हो, ना कि अधिक कठोरता और ना ही हर जिद को मान लेना उचित है।
0: वाकई बहुत सुंदर और काम की बात है ये, और मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी में अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हर किसी को इस बात को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और फॉलो करनी चाहिए, वो ये कि हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए।
1: हाँ,
0: हम बच्चों से कह तो देते हैं कुछ और करते कुछ और है जाके, तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए एक लाइव एग्जाम्पल बने, हम वही करें जो हम बच्चों से चाहते
1: हैं,
0: है ना। तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: FM 102.2 रेनबो कानपुर के संग इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमनवा। इस प्रोग्राम में आज आपके साथ हूँ मैं वंदना और मेरे साथ मेरी हमनवा हैं
1: रेडियो संगिनी रंजना।
0: तो आपने बहुत ही प्यारा सा गीत रंजना जी सुनवाया कि अब मुश्किल नहीं कुछ भी। तो मुश्किल सच में कुछ भी नहीं है अगर हम ठान लेते हैं,
1: है ना? बात है।
0: तो जो ये गीत अभी आपने सुनवाया, इससे पहले मैं हम लोग बात कर रहे थे बच्चों की जिद की, ठीक है? तो बच्चों की जिद की जो बात हो रही थी, तो उस जिद को कहीं ना कहीं थोड़ा दबाने के लिए मेरे मन में एक और आइडिया आया, एक और विचार आया। वो क्या कि अगर हम उसको एक हेल्दी सा वो दे दे कि हम अपने साथ जैसे बच्चों को सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले जाए तो कैसा रहे, और बच्चे सुबह सुबह की ताजी हवा में सांस भी ले सकेंगे और उनको उनका दिन भी बहुत अच्छा एनर्जेटिक बीतेगा। वैसे तो बहुत एनर्जेटिक होते ही हैं बच्चे, लेकिन जब वो सुबह की मॉर्निंग वॉक सुबह करेंगे और जाएंगे तो उन्हें कुछ अलग से चीजें देखने को मिलेंगी और उससे वो बहुत अच्छा कुछ सीख भी सकते हैं और उनके जीवन में अनुशासन कहीं ना कहीं से तो एंटर कर सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये मॉर्निंग वॉक जो है ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम बड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हमारी इससे जो हमारी सेहत है वो बेहतर हो सकती है कहीं ना कहीं, है ना? क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, जब मैं डॉक्टर के पास गई और मेरा शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया, तो उन्होंने कहा कि दवाइयों को एक साइड कर दीजिए, आप सिर्फ सुबह शाम की वॉक पर जाइए। लेकिन वॉक आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे नहीं आप बस टहलते हुए निकल गए कि गप्पे हाँक रहे हैं सहेलियों के साथ। आप जाइए और ब्रिस्क वॉक करिए, बढ़िया सा जूते पहन करके अच्छे से टहलिए।
0: बैग टांग के निकल गए और आपने सोचा कि डॉक्टर
1: मेरा वॉक हो गया,
0: तो नहीं, आप बैग टांग के निकल

0: थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी करा है, मेरा वॉक तो हो गया है ना। कई
1: हाँ,
0: लोगों
1: तो
0: को कैसे
1: ऐसी
0: सुना होगा हमने कि हम जब दिन भर घर में काम करते हैं तो हमारी वॉकिंग हो
1: हमारी
0: जाती
1: वॉकिंग हो
0: है
1: जाती
0: ना,
1: है, पर
0: ऐसे सुनते
1: एक्चुअली वो
0: हैं।
1: वॉक नहीं है, वॉक आप प्रॉपर तेज
0: प्रॉपर
1: कदमों
0: वॉक
1: के
0: करिए।
1: साथ आप चलिए और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आप अगर तेज नहीं चल सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसी शारीरिक परेशानी नहीं है
0: हाँ
1: जिसके लिए आपको
0: बिल्कुल,
1: वॉक बताई गई हो, तो फिर आप आराम से धीरे धीरे टहलिए, चहलकदमी करिए और प्रकृति का लुत्फ
0: आनंद लीजिए।
1: उठाइए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल। और मॉर्निंग वॉक करने से हमारा जो आजकल तो देखिए हर तीसरा चौथा इंसान डायबिटीज़ का कहीं ना कहीं चपेट में है, तो डायबिटीज़ वगैरह का खतरा भी कम रहता है। और अभी आपने ही बताया कि कुछ शुगर
1: बिल्कुल
0: बढ़ा हुआ था,
1: जी
0: और
1: जी
0: वज़न नियंत्रित रहता है जब हम चलते फिरते रहते हैं, तो हमारे शरीर में एक चुस्ती फुर्ती सी बनी रहती है, आलस नहीं रहता है, और हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, मसल्स हमारे अच्छे होते हैं, और मन भी बहुत शांत रहता है। सबसे बड़ी
1: शुद्ध
0: बात
1: हवा
0: हाँ
1: मिलती है, हम घर
0: बहुत
1: से बाहर निकलते हैं, प्रकृति के सानिध्य में आते
0: सानिध्य में
1: हैं
0: रहते
1: और
0: हैं हम,
1: हमें अच्छी हवा मिलती है, और इससे क्या होता है ना कि मन बहुत अच्छा हो जाता
0: मन
1: है।
0: बहुत अच्छा हो जाता है। और एक चीज़ और है, नींद हमारी जो है वो बहुत क्वालिटी वाली नींद आती है हमें। वैसे जैसे कुछ लोग सोते हैं अधकचरी सी नींद की, कोई जरा
1: बिल्कुल
0: सा खटपट हो गई कि वो उठ के बैठ गए, फिर उन्हें रात भर नींद नहीं आती, तो ऐसी चीज़ें भी नहीं होती हैं। अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा हमारे शरीर के लिए रहता है, बहुत सारी हमारे हमें लाभ दे जाती है मॉर्निंग
1: अच्छा।
0: वॉक।
1: वंदना, मेरा जो मॉर्निंग वॉक का सबसे फेवरेट पार्ट है वो ये
0: हाँ
1: है कि मॉर्निंग वॉक के बाद हमारे पार्क के बाहर ना एक ब्रेड और ब्रेड बटर और मट्ठा
0: मट्ठी की
1: वाला
0: हाँ
1: एक वेंडर होते हैं, तो हम वॉक के बाद अपना ब्रेकफास्ट भी वहीं से करते हुए आते हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: और
0: हाँ
1: इतना टेस्टी होता है, मतलब एक
0: हाँ
1: हेल्दी अच्छा न्यूट्रिशन से भरपूर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं और उसके बाद घर पहुंचते हैं।
0: घर
1: लेकिन
0: पहुंचते
1: यहाँ
0: हैं।
1: पर ध्यान देने वाली बात ये है ना कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, टहलते टहलते हमने पाउच ले लिया, हमने पी भी लिया, कुछ हमने ग्लास में ले लिया और उसके बाद हमने वहीं साइड पर उसको फेंक दिया।
0: फेंक दिया ये,
1: तो
0: हाँ
1: ये
0: ये
1: चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हम
0: बिल्कुल
1: जब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो हमें अपने साथ साथ इको हैबिट्स को भी अपनाना है कि हम
0: बिल्कुल,
1: जहाँ तहाँ कचरा
0: सिविक
1: ना
0: सेंस भी
1: फैलाएं।
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: ज़रूरी है।
1: बिल्कुल
0: और जैसे हम कुछ भी खाएं तो इधर उधर ना फेंक दें, डस्टबिन ढूंढ के ही फेंके उसको, या फिर अपने साथ अपने पास कैरी बैग एक रखें, उसमें रख लें, आप घर आके डस्टबिन में डाल सकते हैं उसको, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, और नहीं तो अगर आप घर नहीं भी आ रहे हैं तो आसपास वहाँ पर इतने सारे
0: डस्टबिन मिल ही
1: डस्टबिन
0: जाएंगे कहीं
1: होते
0: ना
1: हैं, आप
0: कहीं, तो
1: वहाँ पर
0: आप
1: डाल
0: उसको
1: दें
0: डाल
1: या
0: सकते
1: साइड पर उसको
0: हैं।
1: ऐसी जगह पर रखें जहाँ से उसको बाद में सफाई की जा सके। और कई
0: बिल्कुल
1: बार मैंने देखा है ना कि भाई जो युवा हैं वो तो बहुत तेज़ तेज़ चल लेते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो उतनी तेज़ नहीं चल पाते हैं और वो उनके आड़े आ जाते हैं, तो ऐसे में कई बार मतलब बात इतनी बढ़ जाती है कि
0: हाँ
1: लोग
0: हाँ
1: झगड़ा तक करने लग जाते हैं।
0: नहीं
1: तो
0: ये
1: मुझे
0: चीज़
1: लगता है कि
0: नहीं है,
1: थोड़ा
0: मुझे
1: सा
0: लगता है
1: ध्यान दें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, अगर वो बहुत तेज आपकी स्पीड में नहीं चल पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा साइड पर होकर आगे निकल
0: भाई
1: जाएं।
0: देखिए, दिन के किसी भी टाइम पर अगर आप कुछ काम में बिजी हैं और बहुत जल्दी में कुछ किसी से टकरावट या भिड़ंत हो भी जाती है तो थोड़ा सा गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन सुबह सुबह जब हम इतनी फ्रेश एयर में निकले हैं तब थोड़ा सा गुस्सा अच्छा भी नहीं लगता है, और सुबह सुबह दिन भी अपना खराब होता है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: अपना मूड मन प्रसन्न रखना चाहिए, और बुजुर्गों का तो ख्याल रखना
1: रखना ही
0: बनता ही है।
1: चाहिए, और
0: बिल्कुल
1: ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि हमेशा मॉर्निंग वॉक बाहर जाकर करना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य
0: जी
1: के
0: हाँ ये बिल्कुल
1: दृष्टिकोण से,
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मौसम कैसा है, बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया है
0: बिल्कुल।
1: सुबह के टाइम ही, या फिर बरसात में जब जहाँ तहाँ पानी भर जाता
0: अभी
1: है।
0: कुछ ही दिनों पहले रंजना जी पेपर और उसमें न्यूज़ वगैरह में बार बार कहा जा रहा था कि बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब गर्म हो रहा था, तब ये कहा जा रहा था जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनको सुबह एक बार देख कर निकलना
1: देख
0: चाहिए
1: कर
0: कि
1: निकलना चाहिए।
0: बहुत गर्मी
1: बिल्कुल
0: हो रही है,
1: इसी तरह से अगर
0: घर में
1: फॉग
0: या
1: हो रहा है
0: हाँ
1: सर्दियों में या स्मॉग हो गया है
0: बिल्कुल
1: तो भी
0: बिल्कुल
1: आपको बाहर नहीं जाना है क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, बेहतर होगा कि आप घर में ही वॉक करें, और अगर आप बहुत लंबा नहीं चल पा रहे हैं घर में तो आप थोड़ी देर चलें, 10 मिनट की वॉक करें और रिवर्स वॉकिंग कर लें, तो ये उतना ही फायदा करेगी आपको जितना आप पार्क में टहलते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और एक चीज़ और सावधानियों में अगर हम लोग बताएं तो, कि सुबह जैसे बहुत अंधेरा है तो आप अपने साथ कोई स्टिक वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि कभी कुछ जो सड़क पे जानवर वगैरह होते
1: बिल्कुल,
0: हैं वो
1: स्ट्रे
0: पीछे पड़
1: डॉग्स तो
0: जाते हैं,
1: आजकल इतने ज़्यादा हो गए
0: तो
1: हैं कि
0: और कई
1: आप
0: केसेस भी हो चुके
1: बिल्कुल,
0: हैं तो
1: जब
0: रख
1: हम लोग ही
0: सकते
1: सुबह
0: हैं।
1: जब निकलते हैं ऑफिस के लिए तो उस वक्त मिलते
0: बहुत
1: हैं,
0: मिल
1: तो मैं
0: जाते
1: भी अपने
0: हैं
1: साथ एक कैरी करती हूँ छड़ी कि जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ,
0: हाँ
1: इससे
0: सही
1: क्या
0: है
1: होता है कि वो आप पर अटैक नहीं करते हैं,
0: हाँ
1: उसको देख कर ही वो दूर रहते
0: दूर
1: हैं
0: रहते
1: और
0: हैं
1: आप थोड़ा सुरक्षित महसूस करते
0: जी।
1: हैं।
0: और स्कूटर वगैरह में तो ये और ज़्यादा खतरनाक है, जब कुत्ते पीछे भाग लेते हैं तो हम और तेज़ी से अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं और उससे बहुत खतरा रहता है हो। सकता है ऐसा, तो अपने साथ एक स्टिक वगैरह भी रखें और मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है उसके लिए।
1: बिल्कुल, और ये मैं सबको बोलूंगी, मेरे जितने भी श्रोता मित्र हैं उनसे कहूंगी कि मॉर्निंग वॉक जरूर करें। हमारे और बहुत सारे जो रेडियो श्रोता हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपने संदेश हमें भेजे हैं बातचीत के माध्यम से, तो एक

0: वरिष्ठ लेखक हैं और इनकी कविताएं हमने बचपन में किताबों में बहुत सारी पढ़ी हैं। डॉक्टर दिविक रमेश जी, ये एक 80 प्लस के युवा हैं जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और बताते हैं कि वो किस तरीके से मॉर्निंग वॉक पर जाकर एक्टिव रहते हैं।
1: सुबह की सैर मेरा शौक भी है और अब तो डॉक्टरों की सलाह पे भी करता हूँ। सुबह की सैर का एक लाभ जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होता है, ये सब जानते हैं। मेरे संदर्भ में इसके और भी कुछ लाभ हैं। मुझे सुबह पेड़ और पौधों से बतियाना बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर पे जब उन पर फूल खिले होते हैं तो वो अपनी ओर ना केवल आकर्षित करते हैं बल्कि मुझे कुछ कविता आदि लिखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। उनका साथ सचमुच में मुझे एक नए प्रकार का माहौल देता है। जैसे सुबह की सैर शरीर को तरोताजा करती है, ऊर्जा भरती है, नयापन लाती है, उसी प्रकार से ये पेड़ पौधों का जो साथ है ये मानसिक रूप से तरोताजगी भर देता है। और साथ में जो लोग मिलते हैं उनसे एक आत्मीय समुद्र की लहरों का आनंद भी मिलता है। खासकर जब मुझे बच्चे मिलते हैं तो सहसा सहज रूप से मैं उन्हीं की उम्र में जाकर के उन्हीं की तरह हो जाता हूँ। चाहे तो कह लीजिए कि भीतर ही भीतर बच्चों की तरह मैं उछलता कूदता हूँ और वो मानसिकता ऐसी होती है जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि सुबह की सैर मेरी एक आदत भी बन गई है, वो जरूरत भी है, वो मुझे बहुत ही ताज़ा रखने के का एक साधन भी है।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, कानपुर नगर। साथियों, अपने जीवन के दैनिक दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर यदि हम मॉर्निंग वॉक करें तो भविष्य में होने वाले तमाम शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से मुक्ति पाई जा सकती है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। सुबह की सैर करने से शरीर की लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ती है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है, ब्लड शुगर नियंत्रित होता है, शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तनाव और डिप्रेशन कम होता है क्योंकि मॉर्निंग वॉक से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। शरीर का हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में यह बहुत सहायक है। सुबह की सैर जैसी प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक व्यवस्थाओं का हमें लाभ जरूर उठाना चाहिए, जिससे हमारी जीवन शैली उत्कृष्ट रहती है और इससे अनुशासित एवं संयमित जीवन की शुरुआत होती है।
3: नमस्कार श्रोताओं, हम सुरेश चंद मिश्रा, हमारी उम्र 72 वर्ष है। मैं लगभग 18 वर्ष से मोती झील का मॉर्निंग वॉकर हूं। हमारे साथ हमारी पत्नी मंजू मिश्रा सुबह मोती झील जाकर लगभग 5 किलोमीटर का नित्य भ्रमण करती हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर से पैदल जाते हैं और वापस पैदल आते हैं और एक चक्कर लगाते हैं। लगभग 6-7 किलोमीटर का हम लोग ये सफ़र करते हैं। इसके फायदे ये हैं कि हम लोग डायबिटिक हैं और उसके साथ साथ हम लोग सब खाते पीते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं
4: है। हम मंजू मिश्रा बोल रहे हैं। मॉर्निंग वॉक के ये फायदे हैं कि हमारी वजन कम हुआ है, हम स्वस्थ हैं और इसी वजह से स्वस्थ हैं कि जो हम सुबह टहलते हैं इससे हमें बहुत फायदे हैं। तो आप लोगों को भी टहलना चाहिए, वजन भी कम हुआ है और हमें कोई बीमारी नहीं हुई और हमारी चाल में जो है बहुत फर्क है, हम तेज चलने लगे हैं। तो आज इस रेडियो मंच से, रेमबो कानपुर के मंच से आप सभी को कहना चाहते हैं कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक जरूर करिए और अपने समय समय पर

0: अपनी टेस्टिंग जरूर कराइए, इससे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि हम कितने स्वस्थ हैं और हमारे खाने पीने का भी हमारा रूटीन बन जाता है। धन्यवाद।
1: तो भाई अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक करिए ना वंदना, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पैरों में अच्छे फुटवेयर्स पहनिए, अच्छे किस्म के जूते पहनिए जो कंफर्टेबल हों, जो आपको सपोर्ट करते हों। और ऐसा ही एक स्टार्टअप शुरू किया है कानपुर में, ये एक इस तरह के डिज़ाइनर फुटवेयर्स हैं जो स्टाइल के साथ साथ ना कम्फर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, और इन्हें तैयार किया है शशांक।

0: जरूर करिए, लेकिन जब मॉर्निंग वॉक करिए ना वंदना, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पैरों में अच्छे फुटवेयर्स पहनिए, अच्छे किस्म के जूते पहनिए जो कंफर्टेबल हों, जो आपको सपोर्ट करते हों। और ऐसा ही एक स्टार्टअप शुरू किया है कानपुर में, ये एक इस तरह के डिज़ाइनर फुटवेयर्स हैं जो स्टाइल के साथ साथ ना कंफर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, और इन्हें तैयार किया है शशांक खंडेलवाल ने। बहुत खूबसूरत से स्नीकर्स हैं, मैंने देखे हैं वंदना, ये इनके ऊपर ना क्वर्की सी डिज़ाइन होती है, मतलब बहुत फंकी स्टाइल की डिज़ाइन होती है। इसके ऊपर बहुत सारे कोट्स लिखे होते हैं, जैसे कि सफ़रनामा, जैसे कि ज़िंदगी चलने का नाम है, कार्टून प्रिंट्स होते हैं इस पर, फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, मतलब इस तरह के फुटवेयर्स जो शायद आपने कभी सोचे नहीं होंगे। हर तरह की डिजाइन और पैटर्न्स की संभावनाएं यहाँ पर मौजूद
1: मिल जाएंगी आपको।
0: तो खूबसूरत जूतों के साथ साथ इसमें कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है, और यही आज का हमारा स्टार्टअप है जो मैं अपने सभी श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती थी। और अब शेयर कर लेती हूँ एक गीत।

0: फ्रूट्स आ गए हैं, शेक्स बनाइए। और अगर आप पानी और ज़्यादा नहीं पी पा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को किस तरीके से हाइड्रेट करें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे फ्रूट्स खाइए जिनमें पानी का ज़्यादा
1: बिल्कुल,
0: होता
1: हाँ
0: है ना।
1: तरबूज गर्मी में ऐसे आते भी हैं फ्रूट्स, जैसे तरबूज है, खरबूजे है, और खीरा ककड़ी, ये सब बहुत अच्छे फल हैं,
0: बिल्कुल,
1: खाने की
0: सब्जियां
1: जरूरत।
0: भी देखो, लौकी,
1: हाँ
0: तरोई, इन सब में भरपूर मात्रा में पानी होता
1: और पेट
0: है।
1: को बहुत ठंडक देते हैं ये, गर्मियों के लिए बहुत अच्छे। कई बार मैंने सुना है लोगों को कि अरे कहते हैं अरे भाई तरोई लौकी खा खा कर उग गए, लेकिन गर्मियों में ये बहुत समझ लीजिए सुपर फूड है,
0: सुपर फूड्स
1: सुपर
0: हैं।
1: फूड है
0: और हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते भी रहे हैं ना कि मौसमी चीजों को खाइए,
1: बिल्कुल।
0: है ना, मौसमी
1: हाँ
0: फल खाइए, मौसमी सब्जियां खाइए, क्योंकि ये उगते ही उस मौसम में इसलिए हैं ताकि आपके स्वास्थ्य को ठीक रख सकें, आपके शरीर को ठीक रख
1: बिल्कुल,
0: सकें।
1: कुदरत तो हमसे ज्यादा ही सोच सकती है, तभी तो इस मौसम में इन चीजों की पैदावार होती है ना।
0: हाँ, और एक जैसे मैंने बोला कि मैं पानी बहुत नहीं पी पाती हूँ, मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे जो नहीं पी
1: हाँ
0: पाते
1: हाँ
0: होंगे, तो
1: बिल्कुल
0: हम पतला पतला ना मट्ठा पी सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: छाछ जिसको
1: हाँ
0: कहते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: तो दही का सेवन कर सकते हैं, नींबू पानी, जैसे कि शिकंजी तो मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, नारियल
1: और
0: पानी।
1: गर्मियों का एक बहुत अच्छा मिंट जो है वो, उसको तो बहुत
0: हाँ,
1: यूज करना,
0: मतलब किस तरीके
1: पुदीना,
0: से आपको,
1: धनिया,
0: आप उसको शिकंजी में डाल लीजिए, आप उसको रायते में डाल
1: चटनी
0: लीजिए,
1: बनाइए
0: आप
1: या
0: सिर्फ
1: कुछ
0: पुदीने
1: भी,
0: का शरबत पी
1: स्मेल ही
0: लीजिए।
1: उसकी ऐसी लगती कि लगता है कि पेट बिल्कुल
0: हाँ
1: नरम हो
0: हाँ हाँ मतलब वाकई
1: चुका
0: पुदीने का जो फ्लेवर है
1: फ्लेवर
0: ना,
1: है,
0: वो आता है आपके नाक में, और नाक, आपके नाक से
1: भूख
0: वो
1: लगना शुरू हो जाती है ऐसा
0: मुंह से
1: लगता
0: नहीं
1: है।
0: जाता, वो तो
1: हाँ
0: नाक से ही आपके पेट के अंदर
1: हाँ
0: जाने लगता है, और आप अंदर से ही एकदम तरोताजा
1: तरोताजा हो जाते
0: महसूस
1: हैं और
0: करने लगते
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: एक और बहुत जरूरी चीज ये है गर्मियों में जो हम लोग कई बार ना बहुत ज्यादा अवॉइड कर देते हैं, मेरे जैसे लोग, तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई कोई एक जना है और कुछ ना कुछ हमेशा खाना बच जाता है, उसको उठा के टिफिन में पैक करके फ्रिज में रख दिया और दोबारा खा लिया। तो
1: नहीं, गर्मी
0: कोशिश
1: में
0: ये होनी
1: बचना
0: चाहिए,
1: चाहिए बासी खाने से।
0: कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई आप उतना ही खाना बनाएं जितना आपको खाना है, और खाना सही समय पर खाएं,
1: सही समय पर
0: है ना,
1: खाएं
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: नहीं कि कभी भी खा लिया तो उससे क्या होगा कि अपच होगी और उसके बाद
1: बिल्कुल।
0: आपको पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी।
1: और चाय कॉफी भी और तला भुना मसालेदार इन सब चीजों से तो बहुत ही दूर
0: बिल्कुल,
1: रहना
0: बहुत
1: चाहिए, बहुत गलत है ये
0: नहीं
1: चीजें।
0: लेना चाहिए,
1: हाँ
0: हालांकि हम कनपुरी हैं तो चाय बिल्कुल छोड़ नहीं पाते हैं, पर चाय के बहुत सारे ऑप्शन है हमारे
1: हाँ
0: पास, है ना,
1: हाँ बिल्कुल।
0: दालचीनी की चाय आप ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते
1: थोड़ी
0: हैं,
1: चाय
0: वैरायटी ऑफ
1: कम
0: ना
1: की जा
0: जैस्मिन
1: सकती है,
0: टी।
1: जैसे जो लोग इन सब तरीकों की चाय नहीं लेते हैं वो अपनी चाय की क्वांटिटी, हाँ अगर आपको दिन में 3-4 बार चाय पीने की आदत ही है तो अपना कप छोटा कर लीजिए, वो भी
0: कप
1: एक
0: छोटा कर लीजिए
1: तरीका
0: और
1: है।
0: चाय बदल दीजिए, अपराजिता की चाय पीजिए,
1: हाँ
0: है ना, हर्बल टी कितनी सारी
1: बिल्कुल,
0: है हमारे
1: हर्बल
0: पास।
1: टी।
0: मतलब मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि जो आप कड़क दूध वाली चाय पीते हैं ना, ढाबे स्टाइल की, वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है,
1: हाँ
0: वो
1: गर्मियों में
0: गर्मी और ज़्यादा बढ़ाती है, एसिड ज़्यादा बढ़ाती है आपके शरीर में। तो हल्का भोजन आप करेंगे बस, उसके बाद क्या है, गर्मी से आप
1: तो
0: एकदम फाइट
1: पेट
0: कर
1: को
0: लेंगे।
1: ठंडक रखने वाली या शरीर को ठंडक देने वाली तो चीजें हम बात कर ही रहे हैं रंजना जी, इसी के साथ साथ जरा कुछ अच्छी सी रेसिपी आज क्या बताएंगी।
0: रेसिपी बता दूं
1: हाँ
0: भाई,
1: बिल्कुल
0: गर्मियां जब शुरू होती है ना, तो
1: हाँ
0: एक चीज जो है वो हमारे दिलो दिमाग में इस कदर आ जाती है कि जैसे महबूबा का नाम और जानते हो वो क्या है, वो है ठंडा ठंडा फालूदा,
1: अरे वाह।
0: है ना। और ये जो फालूदा है वो असल में इंडियन है ही नहीं, ये एक पर्शियन डिश है, इसे ईरान से लाया गया था जब मुगल्स यहाँ आए थे ना,
1: जी
0: 16वीं सदी के आसपास की बात है ये, तब वो इसको लेकर आए थे, और हम भारतीयों को ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसको अपनी रंग ढंग में ढाल लिया, और
1: वैसे
0: ये
1: भी हम
0: हमारी
1: भारतीय
0: संस्कृति
1: वैसे भी
0: का
1: दिल के बहुत बड़े हैं, हर चीज को हर एक को एक्सेप्ट कर लेते
0: हाँ, और अब
1: हैं।
0: देखो ना, हमारे खान पान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है ये, और ये बहुत आसान है इसको बनाना, हम जब बाजार में लेते तो हमें लगता है बहुत मुश्किल होगा, पर ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान
1: तो
0: है। करना
1: बता
0: क्या
1: दीजिए
0: होता है,
1: फटाफट से।
0: बिल्कुल मैं एकदम एक सांस में बताने जा रही
1: अरे नहीं, सांस ले लीजिएगा
0: हूँ
1: और आराम से बताइए ताकि
0: तो
1: मेरे श्रोता आराम से समझ सके।
0: सबसे पहले हमें करना क्या है कि कस्टर्ड बनाना है, उसके लिए आधा लीटर हम दूध लेंगे, इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी मिलाएंगे और इसे उबालेंगे, फिर इसमें मिला देंगे थोड़े से ठंडे दूध में मिक्स किया हुआ कस्टर्ड, कस्टर्ड पाउडर हमेशा ठंडे दूध में मिलाते हैं क्योंकि उसमें लम्ब्स पड़ जाते हैं अगर हम गर्म दूध
1: हाँ
0: में डालते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: अब दूध में लगातार चलाते हुए हम 3-4 मिनट उसको उबालेंगे, गर्म करेंगे, दूध इतने में गाढ़ा हो जाएगा, कस्टर्ड बन जाएगा, अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। रोस्टेड सिवैयों को भी हम उबाल कर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, थोड़े से सब्जा के सीड्स और गोंद कतीरा को भी हम भिगो देंगे, इन सब को हम अपने फ्रिज में रख देंगे, आप रात में रख देते हैं, रख सकते हैं इसको, सुबह तैयार कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ एकदम जब ठंडा हो जाए, बिल्कुल चिल्ड, तो एक लंबे ग्लास में हमें क्या करना है, सबसे पहले डालना है, डालेंगे हम सिवैयां, थोड़ा सा रोज सिरप उसके ऊपर, थोड़े से सब्जा जो हमने भिगोए हैं और गोंद का तीरा, उसके बाद हम डालेंगे कस्टर्ड और उसके ऊपर हम डालेंगे कतरे हुए ड्राई फ्रूट्स, आप मौसमी फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जैसे कि केला, जैसे कि आम, उसमें डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और उसके टॉप पर रखेंगे आइसक्रीम सजाने के लिए, इसके ऊपर आप चेरी डालिए, रोज सिरप डालिए थोड़ा सा और बस ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। इसमें आप अपने हिसाब से सामग्री को बदल सकते हैं, कुछ और फ्लेवर्स और ऐड कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लजीज आपने रेसिपी बताई।
0: स्वाद आया ना?
1: हाँ बिल्कुल आ गया, यहीं पर स्वाद आ गया। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी आज आपने और पेट को ठंडा ठंडा कर दिया।
0: बिल्कुल, तो स्वाद के सफर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वापस चलते हैं संगीत के सफर पर।
1: बिल्कुल।

0: भाई गर्मियों में हवा तो बहुत ज़रूरी है वंदना, लेकिन हवा के साथ साथ ज़रूरी है पानी।
1: बिल्कुल, पानी की, पानी के बिना कैसे है? गर्मी तो हम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते गर्मी में बिना पानी के।
0: नहीं,
1: गर्मी हो
0: बिना
1: या सर्दी,
0: बिना
1: पानी तो
0: पानी
1: बहुत
0: के तो हम
1: ज़रूरी है।
0: कभी भी नहीं सोच सकते हैं,
1: हाँ,
0: क्योंकि जल ही जीवन है।
1: पर गर्मियों
0: लेकिन
1: में बहुत
0: गर्मियों में जो
1: ज़्यादा
0: हमारा शरीर है वो पानी की और ज़्यादा डिमांड
1: डिमांड करता
0: करता
1: है।
0: है,
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कह
0: बहुत
1: रही
0: ज़रूरी हो जाता है कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो। उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। हमारे खान पान का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पानी हो, 3 से 4 लीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पी सकते हैं तो पीते रहें। अलग अलग फॉर्म में अगर आप पानी नहीं पी पाते हैं, जैसे वरना मैं ज़्यादा पानी नहीं पी पाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ फ्लेवर ऐड कर लेती हूँ। कभी उसमें नींबू डाल लिया,
1: नींबू पानी,
0: कभी जीरा डाल लिया, कभी
1: हाँ
0: दालचीनी ऐड कर दिया, तो वो जो फ्लेवर्स आ जाते हैं उसके सहारे मैं पानी को पी लेती
1: पी
0: हूँ।
1: लेती
0: और
1: हैं।
0: आजकल तो भाई गर्मियों में तो शिकंजी बनाइए, शरबत बनाइए, तरह तरह के, है ना,
1: हाँ
0: इतने सारे

0: और इसके साथ ही दोस्तों हमनवा यहीं पूरा होता है। अब तक मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आरजे वंदना आपके साथ जुड़ी रहेंगी, लेकर आएंगी क्या क्या प्रोग्राम्स,
1: म्यूजिकर और पसंद आपकी यानी आपकी पसंद के गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद, तो सुनना मत भूलिएगा मेरे यानी वंदना के साथ। फिलहाल दीजिए हमनवा कार्यक्रम से हम दोनों को इजाजत।
0: श्रोताओं को टाइम ही बता दो भाई। हाँ, दिन में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक।
1: जी हाँ, 3 बजे से 5 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ। और फिलहाल हम चाहते हैं इजाजत कार्यक्रम हमनवा से। नमस्कार,
0: बाय बाय।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो वेस्ट, गाजियाबाद, दिल्ली तक ई सिटी बसों का संचालन हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। परियोजना के तहत 510 ई सिटी बसों का संचालन होना है, लेकिन प्रथम चरण में सिर्फ 110 सिटी बस संचालित होंगी, जिसे तीनों प्राधिकरण मिलकर संचालित कराएंगे। इसके बाद 100 ई सिटी बस मुख्यमंत्री ई सिटी बस योजना के तहत 4 से 5 माह में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुबह लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोकभवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा सुशासन के सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहते हुए 140 करोड़ भारतीयों के 12 वर्षों की निरंतर सेवा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में मीडिया से संवाद करेंगे। वे मोदी सरकार के अंतर्गत जन कल्याणकारी पहलों, अवसंरचना, विकास और भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दिए गए सम्मान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। पिछले 12 वर्षों के दौरान देश की विकास यात्रा को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। सौर ऊर्जा आधारित औद्योगिक मॉडल भविष्य की आवश्यकता है, जो उद्योगों को लागत में राहत देने के साथ आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। भारत के दिग्गज निशानेबाजी कोच और पूर्व स्टार शूटर जसपाल राणा का कल देर रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। उनके निधन से भारतीय खेल जगत, विशेषकर निशानेबाजी समूह में शोक की लहर है। जसपाल राणा भारतीय निशानेबाजी के सबसे प्रभावशाली नामों में गिने जाते हैं। कोच के रूप में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया। उनके मार्गदर्शन में मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:04, 55 सेकंड और बढ़ते सेकंड करते करते 12:05 हो गए। 107 FM रेनबो पर शिल्पी आ चुकी है आपके लिए प्रोग्राम स्वयं सिद्धा लेकर। फ्राइडे का दिन स्पेशल होता है और हम किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं जिनसे बातचीत की गई बातचीत आपको इंस्पायर करे या फिर आपको उनकी बातचीत सुनकर बहुत अच्छा लगे। और आप जाहिर सी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और एक थोड़ा सा नहीं कहते थोड़ा सा कोई धक्का दे दे, तो बस वो चीज़ें होती हैं कि

अगर थोड़ी सी भी किसी की बात से हम बहुत अपने आप को ऐसा महसूस करें कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो ऐसी ही शख्सियत को लेकर आते हैं हम प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में। और आज का दिन भी बहुत खास है, आप आज जानते हैं कि आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जी हाँ, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं कि इन बच्चों को बचपन में ही मजदूरी करनी पड़ती है, इनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, वे सिर्फ खिलौने देखकर, उन्हें दूर से देखते हैं, उनके हाथों में कुछ और होता है जो उनके हाथों में नहीं होना चाहिए, यानी बचपन से वो काम करने लगते हैं। और आज हम इस विषय में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जिनसे आपकी बात कराएंगे प्रोग्राम स्वयं सिद्धा में, उन्होंने बच्चों के लिए ही कुछ खास काम किया। वो क्या काम है वो सब हम जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आए। लेकिन उस सबसे पहले प्रोग्राम स्वयं सिद्धा की शुरुआत एक खूबसूरत से गाने से कर देते हैं। इंजॉय कीजिए और बस इंजॉय कीजिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
5: जी हाँ, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और भाई दोस्तों, और हमारी लेडीज जो हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं या फिर कहीं भी हैं, काम पर हैं, तो भी मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगी। और वो बात ये है कि आप सुबह हड़बड़ी में अक्सर होता है सर ब्रेकफास्ट को मिस कर देती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आप ऑफिस जाती हैं तो वहां के कामों में फंसकर खाना भी आपका ऐसे ही वैसे रहता है। मतलब आप सिर्फ चाय पीकर या फिर कुछ ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर पूरा दिन ऐसे ही बिता देती हैं। तो अगर आप भी इनमें से हैं कि आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होने की बात है, क्योंकि हम अक्सर आपसे कहते रहते हैं कि अपनी सेहत को प्रायोरिटी पर रखिए और अपनी सेहत का खास ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम इसे इग्नोर करते हैं तो फिर हमारी बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है और फिर हमें बहुत सारा समय अपने शरीर को देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समय अपने शरीर को देते रहिए। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं, आपको 10 बार चीज़ें बताई जाती हैं, आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, आप हमारे थ्रू कई सारी बातें जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई सारी बातें इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज की बात हम करते हैं, और एक्सरसाइज ऐसा होता है कि एक्सरसाइज हम में से बहुत कम लोग उसको बिल्कुल एक रूटीन की तरह फॉलो कर पाते हैं। यानी हम सोचते हैं कि चलो 4 दिन कर लिया, अच्छा आज थक गया, आज नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अपने शरीर के लिए आपको समय निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जो आजकल काम है आप कंप्यूटर्स पर बैठ के कर रहे हैं, तो फिर बैठे बैठे आपका बहुत सारा समय गुजर जाता है, जिस वजह से आपको ये एक्सरसाइज अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए ज़रूर करनी है। और बाकी आपका दिमाग फिट रहे, हेल्दी रहे और खुश महसूस करना है अपने आप को, मतलब आप अपने आप से कोई भी ऐसे नेगेटिव टॉक्स नहीं करेंगे जिससे कि आप बहुत परेशान हो जाएं। ऐसी बातें करनी है जो आपके दिमाग को अच्छे लगे और आप हंसते मुस्कुराते रहिए। कहते हैं मैं जो चेहरा होता है उस पर एक जो स्माइल होती है उससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। आप करके देखिए, यानी आप स्माइल के साथ लोगों से मिलिए, स्माइल रखिए दिन भर चेहरे पर, फिर देखिए कि उस दिन का दिन आपका कैसा बीतता है। और मैं ये सिर्फ यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ कि मुस्कुराहट जो होता है वो आपकी खूबसूरती का सबसे प्यारा गहना होता है। सो कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो।

0: से कहा था कि हम बातचीत आपकी कराएंगे किसी खास शख्सियत के साथ, और हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो समय समाज के लिए समर्पित करते हैं अपना जीवन, यानी समाज में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो समाज के लिए हितकारी हो और लोगों के लिए भी हितकारी हो। और इसी जो आपको बातें बता रहे हैं उन्हीं में से एक है अनन्या जी, विज्ञान फाउंडेशन से कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी अनन्या जी। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, तो कई बच्चे होते हैं जो बचपन की उड़ान भरने से पहले ही उनको रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप काम करो क्योंकि पैसे की ज्यादा जरूरत होती है ना। और आपने जो है वो सबसे पहले हमें बताइए कि कब आपको लगा कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम अक्सर चीजों को देखते हैं कि बिखरी हुई है लेकिन उन्हें समेटने की कोशिश ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने अपने आप को रोका और ऐसी समाज की बिखरी हुई चीजों को समेट।
1: देखिए मैं काफी मतलब लाड से पाली हुई एक व्यक्ति हूँ, तो मैंने वो नजरिया कभी बनाया ही नहीं था कि बच्चों को काम करना पड़ता है। मैंने तो घर के भी काम कभी नहीं किए थे
0: जी।
1: और उसी धर्रे पे चलते हुए मैंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। मैंने कॉर्पोरेट में, मैं एचआर सेक्शन में काम करती थी
0: जी।
1: तभी लगा कि यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो हमने देखा इधर उधर कई संस्थाएं काम कर रही थी
0: जी।
1: तो हमने संस्था में अप्लाई किया और उन्होंने अपने काम के सिलसिले में मुझे भेजा सीतापुर जिले में
0: जी।
1: सीतापुर जिले में उनका एक स्कूल चलता था जहाँ पे वो फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे
0: जी।
1: और फ्री में पढ़ाने के बावजूद वहां पे बच्चों की संख्या बहुत कम थी
0: जी।
1: जब हम गांव के अंदर अंदर गए और जाके उनसे बातचीत करी कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि बच्चे काम कर रहे हैं, जब अपना काम नहीं भी करे तो घर के घर से जुड़े जो खेती का काम है या घर से जुड़ा हुआ जो भी उनके माता पिता जिस भी तरीके का काम कर रहे होते हैं
0: जी।
1: उसमें वो हाथ बता रहे हैं। और उसी धर्रे पे वो चलते चलते खुद से इंडिपेंडेंटली भी वही काम करने लगे और शिक्षा उनकी छूट गई
0: जी।
1: तो अब प्रिविलेज समझते हो ना
0: जी जी।
1: हम जिस प्रिविलेज के साथ बड़े हुए हैं वो प्रिविलेज मुझे अपना प्रिविलेज बहुत मतलब एकदम ऐसे तरीके से दिखने लगा कि फिर अपने इस तरीके के बड़े होने का गिल्ट होने लगा
0: जी।
1: तो तब लगा कि अगर ये हो रहा है तो इस पे काम तो करना बहुत जरूरी है। और ये 2015 की बात है और आज हम 2026 में खड़े हैं, हम आज भी यही काम कर रहे हैं
0: जी। तो बेसिकली आप बच्चों को पढ़ाई के प्रति इंस्पायर करते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें क्योंकि उनकी उम्र पढ़ाई करने वाली है ना कि काम करने वाली।
1: बिल्कुल। मेरा इस वक्त जो काम है, विज्ञान फाउंडेशन एक संस्था है जो उत्तर प्रदेश के 6-7 जिलों में काम कर रही है
0: जी।
1: और आज की डेट में मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ और मेरा काम किशोरियों के साथ है
0: जी जी।
1: किशोरियों का काम थोड़ा सा और उलझा हुआ होता है, वो केवल बाहर के काम नहीं वो घर के भी कामों में इतना उलझ जाते हैं कि उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता है और एक्चुअली उनको समय नहीं मिलता है। वो कभी अपने माँ का हाथ बटा रही होती है, जो माँ घरेलू कामगार है उनके साथ काम पे जा रही होती है, पिता चले गए हैं तो सारा जो काम का बोझा है वो माँ और बच्चे पे है तो तब भी वो हाथ बटा रहे होते हैं। तो अगर वो काम कर भी रहे हैं तब भी इनकम उनके हाथ में नहीं आ रही है लेकिन वो पूरा दिन व्यस्त है
0: जी।
1: तो उस व्यस्तता में से जब उनसे कुछ अच्छे से बात करने वाले, कुछ उनको इंसान समझ के बात करने वाले 4 लोग मिल जाते हैं तो वो लोग
0: आपका सहयोग देना शुरू करते हैं।
1: नतीजा आपके सामने, इस वक्त लखनऊ में लगभग 1400 लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं।
0: जी जी जी। चलिए अनन्या जी और भी आपसे बातें करेंगे क्योंकि ये सफर जारी है, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक खूबसूरत सा गीत जानना चाहते हैं कि आप भी सुनिए और हमारे तमाम लिसनर्स भी सुने।
1: तारे जमीन पे सुन सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाने में जो बात कही गई है वो आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है। चलिए एंजॉय करते हैं ये ट्रैक 100.7 FM रेनबो पर।

0: प्रकृति की बनाई हर चीज बहुत खूबसूरत होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या प्रकृति में रहने वाली कोई भी चीज। अनन्या जी जुड़ी हुई हैं एक ऐसे काम से जो उनके लिए शुरुआत में बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस काम को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बहुत आसान बना दिया। अनन्या जी, हेलो
1: जी,
0: अनन्या जी, ये काम वाकई में इतना आसान नहीं था कि बच्चियों को प्रेरित करना शिक्षा के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो लोगों को लगता है कि अरे हमारे तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, हम कैसे क्या करेंगे और पढ़ लिख कर हमें क्या करना। ऐसे में उनको इंस्पायर करना, उनको प्रेरित करना बहुत बड़ा टास्क था। तो इस चीज की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आप, कौन सी चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं हमें तो करना ही है बच्चों को इस क्षेत्र में, क्या चीज थी ऐसी?
1: बराबर है, हम जब बच्चों की बात करें तो हर बच्चा बराबर है और बस उसको एक मौके की तलाश है।
0: जी,
1: हमारी संस्था विज्ञान फाउंडेशन इस वक्त आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 4,000-5,000 बच्चों के साथ काम कर रही है।
0: जी,
1: और हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि उनको शिक्षा से जोड़े, क्योंकि जैसे ही वो शिक्षा से छूटते हैं वो काम पे लग जाते हैं। और घरों की स्थिति ऐसी है जहाँ पे हम जिन समुदायों में देख रहे हैं वहाँ पे छोटे 8-9 साल के लड़के भी जो है वो काम सीखने चले जाते हैं, तो भले वो ज्यादा कमा नहीं रहे लेकिन वो आगे चल के कमा सके उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो मतलब हमको ये दिखता है कि उनके हाथ से कौन से मौके छूट जा रहे हैं जब वो इस तरह के कामों में, कोई पंचर बनाना सीख रहा है, कोई लकड़ी का काम सीख रहा है, कोई यहाँ लखनऊ में चिकनकारी का काम सीख रहा है, छपाई का काम सीख रहा है। तो मतलब मोटिवेशन उनका पढ़ाई की तरफ है ही नहीं,
0: जी
1: तो उनको वो मौके दिखाने पड़ते हैं। और जब अगर पढ़ाई में एक बार मजा आ गया तो फिर वो, मतलब हम उनसे ये नहीं कह सकते कि तुम अपनी आमदनी छोड़ दो, क्योंकि घर चलता है उससे,
0: बिल्कुल
1: सबसे
0: बिल्कुल,
1: पहले तो पेट में खाना होना जरूरी
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल
1: लेकिन हाँ, अगर अगर उनको उस चीज में एक बार मजा आ गया तो फिर वो उसमें से भी समय निकाल के पढ़ाई
0: बिल्कुल
1: करने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: रास्ते
1: ये तो
0: आपको
1: मैं अपने
0: निकालने
1: अनुभव
0: पड़ते
1: से
0: हैं,
1: ही।
0: दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी तो आप रास्ते उसके लिए निकाल ही लेते हैं। क्या
1: बिल्कुल
0: इनके
1: वही बात
0: क्लासेस वगैरह आप शाम को कराते हैं?
1: है। हमारे क्लासेस जैसे अलग अलग समुदाय में अलग अलग समय पे क्लासेस
0: जी
1: चलती हैं
0: जी जी
1: जब ये लोग उपलब्ध हो पाते हैं,
0: जी
1: तो हमने अपने टीचर्स को भी उसी तरीके से एंगेज किया है कि जहाँ पे दोपहर में क्लास हो सके वो वहां पे दोपहर में क्लास ले, जहाँ पे शाम को हो सके वहां पे शाम मिले, या जो घर घरेलू कामगार है वो जैसे 11 बजे लौट के आती हैं घर, तो
0: जी
1: उनकी
0: जी
1: 12 बजे से 2-2.5 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो हमको केटर करना पड़ा है, वो जिस समय जो उपलब्ध होता है उस समुदाय के हिसाब से हमको वहां
0: हेलो, हाँ अनन्या जी,
1: क्लासेस
0: हाँ
1: ज्वाइन
0: जी जी
1: करना
0: जी
1: पड़ेगा, क्योंकि मौका अगर देना है तो फिर देना ही है।
0: बिल्कुल देना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण काम आज आप कर रही हैं, आपकी संस्था कर रही है और तमाम लोग इस कार्यों से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी सेट होंगे जिनको आप बता सकते हैं कि भाई देखिए उसने अपनी पढ़ाई करी और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आपके यहाँ हुए हैं कुछ ऐसे पढ़ाने से बच्चों
1: जी
0: को कुछ
1: बिल्कुल,
0: है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ हुए हैं। हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई थी, वो राजाजीपुरम साइड की बच्ची थी,
0: जी
1: लखनऊ की राजाजीपुरम साइड की बच्ची थी। वो दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती थी, और फिर उस आज की डेट में वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, उसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और होपफुली वो ग्रेजुएट होके, उसने दिल्ली में एक नौकरी ज्वाइन करी है जो इस शर्त पे है कि उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। तो उनकी ग्रेजुएशन पूरा जब वो कंप्लीट कर लेंगी तो फिर वो दिल्ली के जॉब को अपने कंटिन्यू करेंगी।
0: जी
1: तो
0: अनन्या जी, बहुत
1: एग्जाम्पल्स कैसे
0: बहुत
1: होते हैं।
0: बड़ा, बहुत बड़ा ये सहयोग होता है उन लोगों को जो अपने हाथों में कलम थामना चाहते हैं लेकिन उनकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं होता है, और आप ऐसे लोग की उंगली पकड़कर उन्हें आगे बढ़ा रही हैं, उन्हें रोशनी दिखा रही हैं। वो भी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की रोशनी आप दे रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे कार्य करते रहें, लोगों के जीवन में रोशनी बिखेरते रहें। हमसे बात करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जो जो तो भाई ये अनन्या जी थी विज्ञान फाउंडेशन से, जो बच्चों के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, उनको शिक्षा की रोशनी प्रदान कर रही हैं ताकि वो शिक्षित होकर समाज के लिए कुछ कर सके। और अनन्या जी से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक और गाना हमसे बताया था, और वो गाना भी हम प्ले कर देते हैं। एंजॉय कीजिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम स्वयं सिद्धा, आज शिल्पी के साथ।

0: कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

बहुत प्यारी सी बातचीत, क्योंकि आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, तो बच्चे ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को बचपन की उड़ान दे दो, मजदूरी लोग को उनके चेहरे पर मुस्कान दे दो। ये तो बातें सब हो गई, और अब एक बात आपके घर पे रहने वाले बच्चों की, जिनकी आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही, और जब ये गर्मी की छुट्टियां चलती हैं तो बच्चे या तो घूमे फिरे, और या फिर वो क्या करते हैं ना, पूरा समय उनका कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल्स पर बीतता है, और वो किसी ना किसी बहाने से आपकी ये जो डिवाइस है उसको अपने पास रख लेते हैं, और आप भी सोचती हैं ठीक है भैया क्या करें, जाने दो। लेकिन अगर आपका भी ऐसा एटीट्यूड है तो प्लीज़ इसे बदलिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरे टेंशन ख़त्म हो, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि इन सबको अगर आप दे रही हैं तो आगे आने वाली टेंशन आपके लिए बहुत बड़ी होने वाली है। एंड बच्चा पार्टी, प्लीज़ अगर आप भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक डिसिप्लिन जो होता है किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं, तो अगर आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है तो भाई कुछ एक आध दिन आप इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं, यानी एक आध दिन तो एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भाई कायदे से आपको छुट्टियों में एक रूटीन होना चाहिए। सुबह उठिए, सुबह की ठंडी हवा का आनंद लीजिए, क्योंकि नॉर्मल डेज में होता है कि आप फटाफट स्कूल के लिए निकल जाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आज के जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा, सुबह आप खेल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी को एक नया आयाम दे सकते हैं, जिसमें अक्सर आपसे पेरेंट कहते हैं भाई जल्दी उठ के आप ये सब करिए, लेकिन आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना अपनी मर्जी की है। तो जब अगर ये आपके अंदर फीलिंग है तो इसको आपको चेंज करना, ठीक है। और पेरेंट्स भी खास ध्यान दें, थोड़े से इंडोर गेम्स जो है बच्चों के साथ आप भी खेलें जिससे उनका मन लगे, क्योंकि भाई किसी न किसी चीज़ में तो उनका मन लगना ज़रूरी है। बच्चे हैं, वो आपकी तरह थक के सो नहीं सकते, उनमें तो भरपूर ऊर्जा होती है, तो इस भरपूर ऊर्जा का अच्छी जगह इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल 12:39 हो गए, स्वयं सिद्धा प्रोग्राम आप इंजॉय करें 100.7 FM रेनबो पर। एक खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए, एंजॉय कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
3: विरासत और स्वस्थ मनोरंजन की अनूठी पहचान,
2: आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे, इसी आशा के साथ मैं SR बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:48 हो गए हैं, ढेर सारी बातें हैं आपसे करने को, और आप भी अपना ख्याल रख रही हैं कि नहीं पहले बताइए। मैं तो हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छा भाई, ये जो आप सुबह से उठकर काम में लग जाती हैं, इस दौरान भागते दौड़ते आपको कभी स्ट्रेस फील हो तो आपको बस एक काम करना है, और वो क्या काम है कि ये जो बच्चे नन्हे शैतान घर पर आजकल बैठे हैं, इनके साथ थोड़ा समय आपको स्पेंड करना है। वर्किंग लेडीज के लिए अक्सर दिक्कत हो जाती है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे संडे आपके पास है, सैटरडे संडे इन लोगों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना लीजिए, घूमिए फिरिए, इन लोगों को भी ऐसी चीज़ें दिखाइए जो आप भी साथ में घूम लेंगे, और सबसे बड़ी बात है ये जो बच्चे हैं इनको भी इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आएगा। तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा समय जो आपका डेली रूटीन होता है उससे हट कर आप अगर निकालेंगी अपने लिए अपने बच्चों के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यानी कि जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपकी शरीर भी उसी तरह अच्छा अंदर से फील करता है। तो बस कुछ चीजों का मैनेजमेंट जरूरी है, और फिर देखिए कैसे आप नाना करते करते इन बच्चों से प्यार कर बैठेंगी। प्यार बहुत करते हैं लेकिन गुस्सा बहुत आता है जब आपका ये कहना नहीं सुनते हैं, लेकिन ये भी क्या करें। तो भाई इन गर्मी की छुट्टियों में इनके साथ आप थोड़ा समय, जितना भी समय आप निकाल सकती हैं उनके साथ स्पेंड कीजिए, यकीन जानिए आप भी बहुत बेटर फील करेंगी।

जी तो इतनी सारी बातें करने के बाद अब आपको बता दें कि 12:56 हो गए, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। तो बस आपसे लेती हूँ इजाजत इस प्रोग्राम से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम यानी होठों पे तेरी बात में एक बार फिर मेरा आपका होगा साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू 107 FM रेनबो।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर गौतम बुद्ध नगर होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। आज उत्तर प्रदेश के 4 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। ये परिवर्तन 9 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। सौर ऊर्जा आधारित औद्योगिक मॉडल भविष्य की आवश्यकता है, जो उद्योगों को लागत में राहत देने के साथ आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस पहल के तहत हवाई अड्डे से सीधे उत्तर भारत के प्रमुख शहरों के लिए अंतर शहरी बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये भारत में किसी हवाई अड्डे और बस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के बीच अपनी तरह का पहला समझौता माना जा रहा है। इस साझेदारी का उद्देश्य यात्रियों को हवाई यात्रा के साथ साथ सड़क परिवहन की भी सहज और पारदर्शी सुविधा प्रदान करना है। नई व्यवस्था के तहत आगरा, मथुरा, लखनऊ, देहरादून और चंडीगढ़ सहित 20 से अधिक शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। पीलीभीत जिले में गन्ने की मिठास के साथ अब खेतों में गेंदे की खुशबू और रंगत भी देखने को मिल रही है। इससे किसानों का लाभ हो रहा है और वे समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं। जिले में काफी किसानों ने मिलवा खेती के रूप में गन्ने के खेतों में गेंदा लगाया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने खेत पर पहुंचकर किसानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी में निरंतर वृद्धि हो रही है। केंद्रीय मौसम विभाग के विस्तृत अपडेट के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 जून तक आंधी पानी का मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली और मुरादाबाद समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: हंड्रेड और सेवन एफ एम रेनबो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करने के लिए हाजिर हो चुकी है आपकी अपनी दोस्त शिल्पी। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेल, होठों पे तेरी बात प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम कोई ना कोई टॉपिक आपसे देते हैं और आपसे बातें करते हैं, और सबसे पहले आपके पास एक खूबसूरत सा गाना आता है और उसके बाद आप इलाकाई खबरें सुनते हैं और उसके बाद होठों पे तेरी बात का सफर रहता है जारी। तो आज भी भाई हमने सोचा आपसे क्या बात की जाए। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई हम आपसे क्या बात करें और किस तरह की बात करें जो आपको मजा भी आए और आप अपने विचार भी हमसे साझा करें। तो भाई आज हमने आप सबके लिए एक चीज बताई है जो आपके दिल के बेहद करीब है, वो चीज जो आपको सबसे प्यारी है, वो चीज जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो है आपका प्यारा मोबाइल। तो आपको बताना है कि अगर एक दिन आप बिना मोबाइल के हो तो वो दिन आपका कैसा होगा। आपको दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन सोचना है सिर्फ आपको कि वो एक दिन बिना मोबाइल का कैसा होगा। और ये आपको हमें बताना है कहाँ, आप जानते हैं, आपको हमारा ईमेल आईडी पता है, फिर भी हम बता देते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर हमें बताइए और हम भी आपकी मजेदार बातें अपने जो लिसनर्स हैं उन तक शेयर, और हम आपसे मुलाकात करेंगे इलाकाई खबरों के बाद।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत पहली बार 28 रियासतों और 5 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंतज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहड़ी ने कहा कि नीति आयोग ने मीटिंग के दौरान वज़राए आला के दूरंदेश तबसरों और उनकी रियासतों में किए गए कामों से फ़ायदा उठाया। खिदमत, गुड गवर्नेंस और लगन को वक्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खिदमत के 12 बरस मुकम्मल होने के ज़िम्न में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वक्त

0: तो लोक भवन में मीडिया से खिताब कर रहे हैं। इससे कबल कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वजीर आजम के विजन के को तरक्की की बुनियाद बनाकर एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में फ़ाल किरदार अदा कर रही है।
1: नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान कल मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात प्रदेश में मौसम जनित मृत्यु का प्रमुख कारण रहा है। उन्होंने वज्रपात से होने वाली जनधन हानि की रोकथाम के लिए प्रदेश में एक डेडिकेटेड सैटेलाइट उपलब्ध कराने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में एक एक एम्स स्थापित किए जाने के साथ ग्रेटर नोएडा में एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत का पुनरीक्षण किए जाने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रीमियम राशि को बढ़ाने समेत अन्य मांगों को नीति आयोग के समक्ष रखा और इन्हें पूरा किए जाने की मांग की। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नोएडा इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरा है, यहाँ माहौलियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट लाजमी है। वो SRTC की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का इफ्तिताह करने के मौके पर बोल रहे थे। गौरतलब है कि जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली तक में 15 जून से ई-सिटी बसें चलाई जाएंगी। प्रोजेक्ट के तहत 510 बसें चलाई जाएंगी, लेकिन पहले मरहले में सिर्फ 110 सिटी बसें चलेंगी। इसके बाद 100 ई-सिटी बसें वजीर आला ई-सिटी बस स्कीम के तहत 4 से 5 महीने में दस्तियाब कराई जाएंगी। गुज़िश्ता 12 बरसों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर भारत में काबिले ज़िक्र तरक्की हुई है। हुकूमत की जानिब से गरीबों की फलाह बहबूद के लिए उठाए गए इकदामात पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: मरकजी हुकूमत ने साइबर मुजरिमों की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम और मालियाती ढांचे को लाहक बढ़ते हुए खतरे के बारे में एक अलर्ट जारी किया है। वजारत दाखला के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक साइबर मुजरिम माली और जाती फ्रॉड के लिए AI से चलने वाली डीप फेक वीडियोज़ का तेज़ी से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वह अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, मशकूक लॉगिन की कोशिशों से चौकन्ना रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या SMS नोटिफिकेशन की बाकायदगी से निगरानी करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी मशकूक मालियाती लेनदेन की इत्तला फौरी तौर पर दें। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर आज लखनऊ में महकमा मेहनत और रोजगार एक खसूसी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद चाइल्ड लेबर के खात्मे के बारे में अवामी बेदारी को बढ़ाना और माशरे के बच्चों को तालीम, तहफ़ और मजमू तरक्की के हकूक के बारे में आगाह करना है। प्रोग्राम में तकरीबन 800 शुरा की शिरकत मतवक़ है। कल रियासत के अक्सर ज़िलों में तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली। अमरोहा में कल रात से मूसलाधार बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि पीलीभीत ज़िले में भी रात से सुबह तक बारिश जारी रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ समेत रियासत के बेशतर अज़ला में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।

0: अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ के प्रथम समाचार वाचक।
1: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के लिए यज्ञदेव पंडित की हार्दिक बधाई।
2: इलाकाई खबरों के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 107 FM रेनबो पर। जी तो आज भाई प्रोग्राम होठ पे तेरी बात में हमने आपसे कहा कि मोबाइल के बिना एक दिन कैसा हो सकता है आपका, इमेजिन करके हमें आपको बताना है और हमारे पास मेल करना है। तो भाई मेल हमारे पास आए हैं और पहला मेल हम जिनका पढ़ने जा रहे हैं वो है विकास संडीला से। विकास बहुत ही प्यारी बात लिख रहे हैं कि बिल्कुल मैं ईमानदारी से और सच्ची बात कहूंगा कि बिना मोबाइल के मैं अपने दिन की और अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। हाँ, पूरे दिन में जो मैं मोबाइल यूज करता हूँ वो थोड़ा उसकी अवधि कम कर सकता हूँ, यानी टाइम लिमिट जो है वो कम कर सकता हूँ कि मैं जैसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ तो मैं वो कुछ कम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहिए कि भाई मैं छोड़ दूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है, और ऐसा होना मुझे लगता है शायद किसी के साथ भी मुमकिन नहीं है। तो विकास जी ऐसा तो ना कहिए, हो सकता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, मतलब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जी तो भाई अब हमारे पास सोनू जी का मेल आ गया और ये लिख रहे हैं मैं गाना सुना दीजिए। तो भाई अभी मैं बताऊं कि प्रोग्राम चला होठों पे तेरी बात और अभी इस गाने के प्रोग्राम का टाइम आपका नहीं हुआ है, वो हॉट मेल होगा, वो 2 बजे से आप सुनेंगे होठों पे तेरी बात। इस प्रोग्राम का आज का टॉपिक, एक दिन आपके पास मोबाइल नहीं हुआ तो आपको कैसा लगता है, हमारे पास एक दिन क्या 10 मिनट भी मोबाइल रहा तो हमको कुछ तो गुम हो गया ऐसा मालूम होता है। वैसे हम अपने आकाशवाणी के प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते, हम 5 मिनट भी मोबाइल अपने पास से दूर नहीं कर सकते, ऐसा लिखने वाले हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली सानवी, कल्पना जी, ग्राम पंचायत काला गांव और जाफराबाद मराठवाड़ा से आपने हमें मेल किया। गुलफशा सिद्दीकी आ गई, गुड आफ्टरनून मैम। सो गुलफशा लिख रही संडीला से, मैम मोबाइल की अगर एक दिन मोबाइल के बगैर रहना पड़े तो फिर FM से कैसे जुड़ूंगी, कॉल या फिर मैसेज कैसे करूंगी, और तो सब ठीक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस FM पर एक दिन बात नहीं कर पाऊंगी। गुलफशा जी ये आपका प्यार है हमारे लिए। वैसे मैं तो कहनी थी आप इमेजिन करके देखिए और बताइए, मतलब एक इमेजिनेशन होती है ना हर इंसान की, अगर ये चीज मेरे पास ना हो तो कैसा हो। लेकिन चलिए हर इंसान अपने विचार रख सकता है। जैसे कि ये हमारे पास मेल आया महेंद्र देपन का, राजस्थान के नागौर जिले के रोड़ गांव से, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि न्यूज़ ऑन AIR ऐप के थ्रू हमसे लोग इतनी दूर से जुड़े हैं और अपना प्यार हमसे यूं ही बरकरार रखिएगा, इस बात को हम यहाँ पर जरूर बताएंगे। और लिखा है आपने कि विषय बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार है। तो भाई सच कहूँ तो मेरे लिए कल्पना करना बेहद मुश्किल है, मोबाइल का मुझे ज्यादा शौक नहीं है लेकिन प्रोग्राम FM रेनबो मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया और इसके बिना दिन काटने का ख्याल भी डरावना लगता है। जैसे ही कोई अच्छा टॉपिक मिलता हाथ खुद ब खुद मोबाइल की ओर बढ़ जाता है ताकि आप तक बात पहुंचा सकूं। अगर एक भी दिन ये नहीं रहा तो मैं आप लोगों से जुड़ने और रेडियो पर पसंदीदा धुनें सुनने से वंचित रह जाऊंगा, जो मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। तो भाई अब हम क्या कहें, लोगों की बातें हम सुन रहे हैं और हमें बहुत एंटरटेनिंग लग रही, बहुत अच्छी लग रही हैं। बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये तो ठीक है कि आप हमसे नहीं जुड़ पाएंगे एक दिन, लेकिन जरा सा एक इमेजिनेशन होती है, आप इमेजिन करके बताइए कि अगर ऐसा हो तो क्या हो सकता है। मतलब ये तो आप गाने सुन रहे हैं या प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अक्सर होता है कि आप लेटे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका हाथ कुछ ढूंढ रहा होता है कि आप मेरे पास है ना, है ना। यानी मैंने जो आपसे शुरू में जिक्र किया कि भाई कोई चीज़ है जो आपके बेहद दिल के करीब है, आप उसे अपने पास हमेशा रखते हैं और वो ऐसी डिवाइस है जिससे आप डिस्कनेक्ट नहीं रह सकते। तो अगर आपको डिस्कनेक्ट होना पड़े तो आप क्या करेंगे। फिलहाल अभी तो हम आपसे डिस्कनेक्ट नहीं, हम आपसे कंटिन्यूसली जुड़े 100.7 FM रेनबो पर और एक बढ़िया सा गाना प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए, एंजॉय कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: जी तो भाई, हमने आपसे पूछा था होठों पे तेरी बात में कि भाई मोबाइल के बगैर आपका कैसा दिन होगा, एक दिन अगर सोचिए मोबाइल आपके हाथ में ना हो। तो भाई हमारे पास ये मेल किसका आया है, गणेश आय नमा, होठों पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले लिखा है नमस्कार। तो भाई आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार, और हमारे जो आज का टॉपिक उस पर आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम मोबाइल के बिना रह सकते हैं लेकिन रेडियो के बिना नहीं रह सकते। तो ये जो मोबाइल रिचार्ज सिर्फ रेडियो की वजह से कराते हैं, नहीं तो हम कैसे सुनेंगे ये प्रसारण आपका। तो भाई आप रेडियो भी ले सकते हैं और रेडियो उस पर भी इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अहमद नवाब जी ने लिख दी कि इनका आज गिफ्ट आया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दो गिफ्ट, और पहला गिफ्ट जो आप आए, आहा शुक्रिया, और दूसरा गिफ्ट मेरा नया रेडियो है। उसके लिए आपको भाई कंग्रेचुलेशंस कि आज आपका नया नया रेडियो आया है। आप लिख रही हैं, आती हूँ टॉपिक पर, अगर एक दिन मोबाइल ना हो तो बस सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी, ईमेल कैसे करूँगे, और अगर ईमेल नहीं करना है तो मोबाइल हो या ना हो। वैसे भी कह रही है मेरा मोबाइल इधर उधर पड़ा रहता है और मैं रेडियो पर FM रेनबो लखनऊ सुनती हूँ, तो रेडियो पर ये सुनती हैं। और लिखती हैं, अगर नहीं होगा तो मेहंदी लगाऊंगी, कोई ऑर्डर है तो वो लगा लूंगी, बढ़िया रेडियो पे सुनते हुए मैं पूरा मजा लूंगी। इसके अलावा हमारे पास किसका मिला है, पिंकू सोनी जी का आया गया, टिकैत नगर बाराबंकी से। कैसी हैं पिंकू, आई होप आप बहुत अच्छी होंगी। लिखा है, सबसे ज्यादा आजकल लोग मोबाइल फोन से कनेक्ट रहते हैं पर सबसे ज्यादा रेडियो सुनने के लिए बार बार देखते हैं हम कि मोबाइल इम्पॉर्टेंट लगने लगा है। अब मैं कुछ रेडियो दोस्तों से भी जुड़ी हुई हूँ तो इसलिए मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगता है। सच की बात अलग अलग है और दिल की बातें लोग हमसे शेयर कर रहे हैं, ये ख़ास बात है। अहमद नवाब, आज आपका नया रेडियो आया है। और रोशनी रावत जी का मेल आ गया है, वाह वाह क्या बात है, बहुत प्यारा सा उन्होंने एक फोटो बना के भेजी है, इमेजिन करी है, और उसके बाद लिखा है, स्मार्टफोन छूटे तो क्या, हमारे पास कंप्यूटर का संसार है और हमें FM रेनबो से बहुत प्यार है। उन्नाव की रोशनी अब चंडीगढ़ में बिखेर रही है अपनी चमक, बिना फोन के भी रेडियो पर गूंजेगी उनकी खनक, अरे वाह। और ये गांव बमना, तहसील सफेपुर, जिला उन्नाव से, और चंडीगढ़ से ये सुन रही है, लिख रही हैं कि खास संदेश ये है कि एक दिन के लिए मेरा फोन ले लीजिए, मैं बिना फोन रह लूंगी क्योंकि मेरे कंप्यूटर में सब कुछ है। मतलब डिवाइसेस जो है उनसे आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, ऐसा शायद वो कहना चाहती हैं। आप सब हमें मेल कर रहे हैं उसका दिल से शुक्रिया। और अब आपसे मैं एक बात और कहूंगी कि भाई अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं और लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं इमेजिन करके कि भाई एक दिन बिना मोबाइल के उनका कैसा होगा, तो आप हमें बता सकते हैं fmakashwanilakhnau@gmail.com पर। और फिलहाल हम एक बढ़िया सा गाना प्ले कर देना, बहुत अच्छा गाना है एंड रियली आपके दिल में उतरने वाला सॉन्ग है, मुझे तो बहुत पसंद है। और एंजॉय कीजिए 100.7 FM रेनबो पर, उसके बाद आपके और मेल्स हम लेंगे, हमें लगातार मेल्स मिल रहे हैं जिसके लिए आपका दिल से शुक्रिया।

जी भाई, तो हमारे पास इस समय मेल जो है वो नीलू शर्मा जी का रूपपुर चंदेला से आ गया है और इन्होंने टाइपिंग एरर हो गई थोड़ी, तो शिल्पी मैम को उन्होंने शिल्पी मामू लिख दिया। तो भाई चलिए नमस्कार, मैं आपका स्वीकार कर रही हूँ। और लिखा है, इसी हफ्ते मैम मेरे गाँव में 4 दिन लाइट नहीं आई और मेरा फोन स्विच ऑफ था एक दिन। क्या मैं हर दिन बिना मोबाइल के रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल का शौक नहीं। और जहां तक बात रेडियो सुनने

की है। तो भाई रेडियो मेरे पास हर वक्त होना चाहिए, और ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। एम के राज जी, यानी मुनेश कुमार राज, ग्राम भानपुर हरौवा जिला लखीमपुर खीरी से शुभ दोपहरिया लिख रहे हैं। तो भाई आपको भी शुभ दोपहरिया लिख रहे हैं। हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल, वाह वाह क्या बात है। और आगे लिख रहे हैं शिल्पी मैम जी, कोई टेंशन नहीं, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं होगा तो हम रेडियो लाएंगे, ट्यूनिंग करेंगे और चिट्ठियों के जरिए आप तक पहुंचेगी। और आगे बहुत प्यारा सी चीज लिखी, बहुत प्यारी सी बात लिखी, आपका पक्का श्रोता मुनेश कुमार राज, थैंक यू सो मच। रामेश्वर जी लिख रहे हैं, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को सप्रेम नमस्कार, प्रोग्राम आपका बराबर सुन रहे हैं, और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम मोबाइल बिन रह ना सकेंगे, क्या हमारा मोबाइल है, मेरा टाइम पास होता है, और हम आपको मेल कैसे करेंगे। और ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से लिख रहे हैं, और समस्त कठेरिया परिवार है जिसमें नाम लेना बहुत ज़रूरी है, रामेश्वर जी, उमा कांति, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू कठेरिया और सारा कठेरिया परिवार। अब देखिए, ओके, विनीत कुमार जी का मेल आया, विनीत कुमार जी का मेल आया, अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, और देखा होठों पे तेरे बात प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाली बहन को गुड आफ्टरनून, आज का मौसम सुरीला मीठा अनुकूल है, मोबाइल के बिना अब आदमी का कोई काम नहीं होता, सब चीज मोबाइल पे डिपेंड है, तो इसके बिना वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी हम डिवाइसेस के बहुत गुलाम हो चुके हैं, ऐसे आप सबकी बातों से। लिखा है प्रकाश पांडे जी का मेल आया है, और लिखा है बहुत अच्छा टॉपिक है, और लिख रहे हैं कि अगर मैं एक दिन नहीं यूज करी तो वो दिन डेडिकेटेड हुआ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, जबरदस्त एंजॉय करता हूँ, और ये हम लोग हमेशा करते रहते हैं, वे एंजॉय योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम जब इससे डिसकनेक्ट होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों से अलग होते हैं तभी हम कुछ कर सकते हैं। यानी हम आपसे रोज़ अलग होने को कहीं नहीं रहे, हम तो आपसे कह रहे हैं सिर्फ एक दिन अगर ना हो तो बताएं। तो बातें अभी और होती रहेंगी, लेकिन और भी गाने हमने क्यू कर रखे हैं जो आपके लिए प्ले कर रहे हैं। फिलहाल जावेद अख्तर जी, आपका मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन इस ट्रैक के बाद एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर, प्रोग्राम कौन सा है, होठों पे तेरी बात के साथ।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: दरगन लखनऊ के 100.7 एफएम रेनबो शिल पे आपके साथ है, प्रोग्राम चल रहा होटल पे तेरी बात। और आज टॉपिक ये था कि भाई एक दिन बिना मोबाइल के कोई रह नहीं पा रहा मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे मेल्स कह रहे हैं। आप देखिए हमारे पास इस समय किसका मेल आ गया, मैं पढ़ती हूँ। और ये मेल हमारे पास आया सुल्तान रजा साहब का, अस्सलाम वालेकुम, लिख रहे हैं कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से। और सुल्तान रजा जीशान रजा अफजाल रजा इकबाल रजा सादिक रजा, मैम हम मोबाइल के बिना तो रह लेते हैं लेकिन 100.7 एफएम रेनबो तो हमारे दिल अजीब सा लगता है, अगर मैं ना सुनूं तो क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता पर रहा नहीं जाता, इस कदर मोहब्बत हो गई एफएम रेनबो से किसके बिना नहीं रहा जाता। अरे जी मैं कब कह रही हूँ किसके बगैर रहिए, इससे ज़रूर जुड़े रहिए और अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिए। इसके बाद हमारे पास मेल आया जितेंद्र नामदेव जी का, और बबलू अंजू खनक आरूही नामदेव सौम्या नामदेव, इनका शहडोल मध्य प्रदेश से आया, लिखा है प्रोग्राम में टॉपिक बहुत अच्छा है, मोबाइल के बगैर तो हम रह सकते हैं लेकिन मेरी टेलरिंग शॉप है तो कस्टमर मुझे परेशान करते हैं और दूर दूर से कस्टमर जुड़े हुए हैं इसलिए मोबाइल रखना जरूरी है। ये आपने मुद्दे की बात बताई कि बगैर नहीं होगा तो काम धंधा थोड़ा बंद होने की उम्मीद है, यानी कि लोगों को कॉन्टैक्ट चाहिए। तो हम आपसे एक बात कहें, है ना जितेंद्र जी, कोशिश कीजिए, कह दीजिए कि जैसे आपकी हर दिन तो शॉप खुली नहीं रहती होगी ना, एक दिन बंद रहती होगी, तो उस दिन आप ये कह सकते हैं कि भाई आज मोबाइल बंद एंड शॉप बंद, दोनों चीज़ों को आप बंद कर दीजिए और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। करके देखिएगा बताइएगा फिर।

ये तो मैं आपको बता रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा। सतीश शनेजा जी का मेल आ गया है और लिखा है, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, रेनबो लखनऊ से बेशुमार मोहब्बत है। और लिखा है, मैं अधिकांश समय पहाड़ों में रहता हूँ, मोबाइल पे ऐप के जरिए रेनबो को हम सफर बना रखा है, जो सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है, और आवाज़ के जरिए ये मिली मोहब्बत बहुत मजबूत है और बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल बरकरार रहेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो धागा यानी ये जो हमारा जो कनेक्शन है वो कभी नहीं टूटेगा। अरुण कुमार कुशवाहा जी हरदोई से, घमोइया हरदोई से लिख रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार, मैम आप एक दिन की बात कर रही हैं, अरे मोबाइल एक घंटे के लिए दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है इस दुनिया से हम बिल्कुल अलग अलग हो गए, क्योंकि सारे प्रोग्राम सुनते

और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो धागा यानी ये जो हमारा जो कनेक्शन है वो कभी नहीं टूटेगा। अरुण कुमार कुशवाहा जी हरदोई से, घमोइया हरदोई से लिख रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार मैम, आप एक दिन की बात कर रही हैं, अरे मोबाइल 1 घंटे के लिए दूर हो जाता है तो ऐसा लगता है इस दुनिया से हम बिल्कुल अलग अलग हो गए, क्योंकि सारे प्रोग्राम सुनते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें मोबाइल के थ्रू कनेक्ट रखती हैं, तो इसलिए मुझे तो 1 घंटे क्या 1 मिनट के लिए भी मोबाइल से दूर ये नहीं रह सकते हम। और साथ ही भाई अमन नवाब जी का मेल फिर क्या आ गया है, और ओ हो, इन्होंने अपने मोबाइल अपना जो रेडियो खरीदा है, बहुत प्यारा सा रेडियो है, उसकी फोटो भेजी है और साथ ही मिठाई भी भेजी है कि आप बिल्कुल इसका स्वादन, मतलब आप इसका स्वाद ले लीजिए भाई, बहुत बहुत बधाई हो। और साथ ही हमारे पास एक और बहुत अच्छा मेल आया, और ये मेल आया है हमारे पास निहाल वर्मा का। निहाल वर्मा ने हमें मेल किया है चिनहट से, लिख रहे हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर हम चाहें किसी भी डिवाइस से डिस्कनेक्ट होना 1 दिन के लिए तो रह सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर है, यानी हम बहाने कई सारे बना लेते हैं लेकिन अगर कोशिश करें तो उससे डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को न्यू बिता सकते हैं जैसे पहले रहा करते थे। तो अगर आप चाहते हैं तो 1 दिन इसे छोड़ सकते हैं, यानी 1 दिन इस डिवाइस को त्याग सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रकाश पांडे लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि कभी कभी सिर्फ अपने मोबाइल डेटा को बंद करें, पर और सिर्फ फिर स्क्रॉलिंग की दुनिया से निकलकर अपने रिलेशनशिप को स्क्रॉल करिए, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात प्रकाश जी, आपने कहाँ से मेल किया ये भी लिखते तो अच्छा लगता, लेकिन बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इतनी सारी बातें सुन के हमें क्या कहना है, हमें कुछ कहना है लेकिन हम नहीं कहेंगे, एक गाना है आपके लिए हमने क्यू अप कर रखा है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए।

और चलते चलते देखिए हमारे पास मेल है जावेद अख्तर साहब का, और लिख रहे हैं कि भाई होठों पे तेरी बात प्रोग्राम में जो आज आपका टॉपिक पे इसके बारे में लिख रहे हैं कि अगर एक दिन कोई मोबाइल ले लेगा तो हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि एफएम रेनबो के सभी कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं, मैसेज भी करते हैं क्योंकि रेडियो मेरे लिए सच्चा जीवन साथी है। रश्मि नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें मेल किया है। और भाई ये बात तो ठीक है कि आप इसे जुड़ते हैं और सब चीजें हैं, लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि भाई चलिए आपने रेडियो पे गाना बजा दिया और आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप अगर कुछ समय के लिए, ऐसा होता है केवल रेडियो नहीं सुनते होंगे और बहुत सारे काम होते होंगे बीच बीच में और कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ आप रेडियो सुनने के लिए करते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी एक आदत बन गई, हमारी लत बन गई है, और ऐसा हम सभी कर रहे हैं। और हम कभी कभी लगता भी है कि हम शायद ये चीज़ें ना करें लेकिन इनसे हम निकल नहीं पाते। तो भाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करें, और डिजिटल डिटॉक्स करने के लिए थोड़ा सा समय अपनी और अपनी फैमिली के जरूर निकालें। फिलहाल 1:55 हो गया, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। इजाजत दीजिए शिल्पी को प्रोग्राम होटो पे तेरी बात से, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपका बेहद फेवरेट है, जी प्रोग्राम हॉटमेल, जिसमें आप अपनी पसंद के गाने हमें लिख कर भेजते हैं और हम आपकी पसंद के गाने प्ले करते हैं। तो बस उन गानों को सुनने के लिए और मेल करने के लिए हो जाइए रेडी। बस कुछ ही पलों में आते हैं हॉटमेल के साथ एक बार फिर से। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के

0: माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा, उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है, मध्य एशिया एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के

0: असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल और ढेर सारे मेल्स के साथ आपके साथ हाजिर है शिल्पी और मेरे साथ हैं आपके मेल। सत्यनारायण कुरील जी ने भेज दिया झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मेल और लिखा प्यार भरा नमस्कार राधे राधे, जिस तरह से प्रोग्राम पेश कर रही हैं उससे लगता है स्वस्थ और मस्त होंगी और मैं भी ठीक हूँ और साथ ही अपनी रिक्वेस्ट भी आपने लिखी है भेजी है। इसके बाद हमारे पास मेल आया है हनुमंत शिंदा जी का, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा जी का, और ये मेल इन्होंने हमें भेजा है ग्राम शिरोटे जिला सांगली से, बहुत दूर से आपने मेल किया। तालिब अंसारी जी कैसे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से मेल किया है और लिखा है मेरा मेल पढ़ दीजिए, ध्यान से सुनिए तालिब अंसारी जी मेल हमने आपका पढ़ दिया। वारिस अली खान साहब का मेल आ गया है, लिख रहे हैं मौसम तो चाहे जितने भी रंग बदले लेकिन इंसान के रंग बदलने जैसा हुनर तेरे पास नहीं है, आपसे गुजारिश है कि फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से आपका मेल आया है। सफीउद्दीन अंसारी साहब का मेल आ गया है और ये शरफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू और डुमराव बिहार से, डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अरीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, साथ ही सहारनपुर बक्सर से राजश्री अंसारी, आसमा खातून अंसारी। शैलेश कुमार जी ने नीलू शर्मा रूपपुर चंदेरा से, शिल्पी दीदी क्या मेरी पसंद का एक गाना सुना देंगी, और मेरा नंबर कभी जल्दी आता नहीं है इसलिए गाना सुनवा दीजिए। पीहू नीलू जी बहुत सारे जो हैं वो हमारे पास मेल्स होते हैं और हमको बहुत मुश्किल होता है उसमें से इतने सारे लोग की हम पसंद का गाना तो नहीं बजा सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भाई आप में से लोग ही पसंद का गाना जल्दी जल्दी शामिल करें, क्योंकि हमें नाम भी पढ़ने पड़ते हैं, किसी भी गीत में शामिल करने की लिख के भेज रहे हैं हमें। नागपुर नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल ढाक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजन कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, मोहम्मद शादा विलेज विलई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई, गुड आफ्टरनून मैम कैसी हैं आप, बिल्कुल अच्छी हूँ, और इन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट लिख के भेजी है। दिग्दर्शन कौर जी, कविता, राधा नामदेव, संजय ढिंगिया, संदीप मकड़, अनिल जर, दर्शन भाई को मेरठ कैंट से मेल किया है, किसने, यही नाम है दिग्दर्शन कौर जी हैं। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमाश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गुगावा से हाजी शाहक लोलामनी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ ये लिखते हैं पाकिस्तान रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। उत्तम कुमार भगत जी का मेल आ गया पाकुड़ झारखंड से, श्वेता भगत, किसुता स्वर्ण आनंद, सत्यानंद, बोड़ागाची पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, लिखा है क्या बात है दीदी मेरा मेल छुप गया था। जी हाँ छुप गया था, क्योंकि भाई उत्तम भगत जी में लगातार मेल कर रहे हैं तो यही होता है कि जब आप बार बार मेल करते हैं तो मेल छुप जाता है। श्वेता मोहित अर्णा फ्रॉम हरिद्वार, प्रोग्राम बेहद खूबसूरत है, आवाज भी बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच, और इन्होंने अपना गाना भी हमें लिख दिया है और लिखा है प्लीज प्ले कर दिएगा, जरूर कोशिश करते हैं पूरी तरह। प्रकाश बोरगांवकर जी का मेल आ गया है, छत्रपति संभाजी नगर, सूर्यवाड़ी, सुषमा, प्रकाश, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, अंशुमन, दिल से शुक्रिया भी कह दिया है और लिखा गीत हमें पसंद आ रहा है, हमें शामिल कीजिए। तो चलिए अब बिना देर के हम गीत प्ले कर देते हैं एंड आई होप आई भी दूसरों की पसंद में भी अपनी पसंद देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जिनका मेल आज शामिल हो रहा सकता है उनका पसंद का गाना कल ना बजे। सुनते रहिए हॉटमेल 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: 2:46 हो गए हैं, बहुत थोड़ा सा वक्त हमारे पास है और आपके ढेर सारे मेल हैं, उसमें से वो मेल्स भी हैं जो हमें कुछ लिसनर्स बार बार भेज रहे हैं। मुनेश कुमार राजी ग्राम भानपुर हरावा जिला लखीमपुर खीरी से, शुभ दोपहरिया, और लिखा है हर कार्यक्रम बेसमाल सुनते सुनते हो गए कई साल, और लिखा है मैसेज को इग्नोर मत कीजिए, प्लीज गाना बजा दीजिए क्योंकि कम से कम

दो हफ्ते में एक बार मेरी पसंद का गाना बजाना तो बनता है। ये आपके लोग जो लोग के आपके हक होते हैं ना, हक से आप बात कर देते हैं, ये हमको बड़ी अच्छी लगती है। रिस्पेक्टेड होस्ट जी, प्यार भरा आदाब। लिखने वाले गांव नथारा पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। दीपेश वर्मा जी का मेल आ गया ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। दीपेश, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और जॉन डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। मूसा शेख जी, हम आपका नाम ले चुके हैं। और साथ ही हमारे पास अब्दुल गफार जी का भी मेल आ गया और हम ये मेल आप

कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी का मेल हमारे पास पहुंच गया है। रामराज जी, जी जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार और फिर गाने की रिक्वेस्ट। विजय जी, विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी कोसलोनी और पेंटर बाबू, शिवपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया, फिल्म का गीत लिखा है गीत को सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामगंज खंडवा से लालगिरी जी का मेल आ गया। नमस्कार दीदी, सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कोई भी सॉन्ग में हमें शामिल कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब प्रोग्राम में आपकी प्रस्तुति सुनते हैं। लालगिरी जी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी, रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से, थैंक यू सो मच लालगिरी जी। डीके यानी न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, वो रिक्वेस्ट भेजिए। श्वेता सारस्वत जी और लिखा है थैंक यू दी। और साथ ही हमारे पास जगदीश जी का मेल आया है। जगदीश धाकड़, नायमा जी, रंजू भाई धाकड़, नायमा, युवराज सिंह धाकड़ जी, शिवांगी धाकड़ जी, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, कार्यक्रम नियमित सुनते हैं। फरमाइश करता है मालवा रेडियो श्रोता संघ, हिंगड़ी, अलोट, जिला रतलाम, MP से। हीरा मणि वर्मा जी, पारस मणि वर्मा जी, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, रोखेलाल वर्मा, दत्तरोहिंगी, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से। प्रसारक शिल्पी जी प्रणाम और साहिब आलम है बब्बन भाई, समीर अहमद, एवरेडी तिराहा, अम्बेडकर नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। क्राउ फ्रांसिस हिहार से राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार दूधी। विजय महोबिया जी कह रहे हैं कि सभी गीत लाजवाब सुरीले चल रहे हैं, सुंदर प्रस्तुति और जानदार पेशकश को सैल्यूट करते हैं, सुंदर महफिल में हमारा भी नगमा सुना दीजिए। चलिए भाई, आपका ही नगमा हम सुनवाएंगे बस कुछ ही देर बाद, आपका नगमा आज शामिल होने वाला है। शरुण अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, बहुत ग्राम अपो, सररपुर, मटकली, जिला बरेली से गीत सुनवा दीजिए। और 2:49 पर दो गीत आएंगे बैक टू बैक, आप एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम हॉटमेल शिल्पी के साथ।

जी साई गायकवाड़ का मेल आ गया है, नारायण गायकवाड़, दयानंद जी, ओमकार और साई गायकवाड़ जी। हम आपको बता दें, आप भी आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट करी कहो ना प्यारे, वो ऑलरेडी प्ले हो चुका। दिलीप रामेकर जी का मेल आ गया है, राहत गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, और 2:56:44 हो गए, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है। इजाजत दीजिए अपने दो शिल्पी को, नेक्स्ट प्रोग्राम में एक बार फिर मेरा आपका होगा साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

दोस्तों नमस्कार, जुड़ी हुई हैं आपके और हमारी धड़कने एफएम रेनबो कानपुर के इस प्लेटफॉर्म पर। दिन के 3 बजे हैं और 102.2 पर आपकी दोस्त वंदना एक बार फिर से आपके साथ है, लेकर प्रोग्राम म्यूजिक आर्ट।

तो दोस्तों, गीत संगीत तो हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, लेकिन हो जाता है वक्त और भी खूबसूरत जब साथ होती है आपसे हमारी बातें मीठी मीठी। और साथियों, आज जो मीठी मीठी बातें होंगी वो बात रोज वाली मीठी मीठी बातों से होंगी कुछ अलग, क्योंकि आज की मिठास आप मन में ही नहीं जुबान पर भी फील करने वाले हैं। गर्मी का मौसम है, पेड़ों पर हरियाली है, कहीं है धूल के गुबार तो कहीं पानी की बौछार, बागों में है कोयल की कूक और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, और इन सबके बीच बाजारों में आ चुका है एक ऐसा मेहमान जिसको हम सभी बड़ा लाड करते हैं। बताऊंगी कौन है वो, पहले एक गीत सुन लिया जाए।

तो दोस्तों शायद अभी तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो मेहमान कौन है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, आज हमारी मीठी मीठी बातें जुड़ी हुई हैं फलों के राजा आम से, जो कि नहीं है महज एक फल, यह स्वाद सुगंध ट्रेडिशन कल्चर और यादों का एक सुनहरा संसार। ये आम कोई आम चीज नहीं, ये आम है खास, बहुत खास।

मीठे मीठे इन गीतों को सुनते हुए साथ ही आज बातें भी हो रही हैं मीठी मीठी प्यारी प्यारी प्यारे से हमारे लाडले दुलारे आम की। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आम की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में हुई और फिर यहीं से ये दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और फिर पूरी दुनिया में पहुंचा और भारत से मैक्सिको, थाईलैंड से ब्राज़ील तक दुनिया के कई देशों में लगभग 1,000 से अधिक किस्मों के पाए जाते हैं आम। अपने स्वाद और खुशबू से सबको दीवाना करने वाले इस आम का मैंगी फेरा इंडिका है वैज्ञानिक नाम, जो है भारतीय आम। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आम की 1,000 से अधिक किस्मों में से 500 प्रकार की किस्में अकेले भारत में ही पैदा होती हैं और यही है भारत का, माना जाता है यही है भारत का राष्ट्रीय फल भी।

FM 102.2 रेनबो कानपुर के साथ इस वक्त ट्यून इन है आप। दिन के 3:15 और 47 सेकंड का है वक्त और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर। और दोस्तों आज हम हैं इस प्रोग्राम में विश्व भ्रमण पर, देख रहे हैं कहां कहां और कैसी कैसी किस्में हैं हमारे प्यारे बेहद खास आम की। तो दोस्तों भारत की बात ही सबसे पहले कर लेते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश जो है हमारा भारत। तो यहाँ जिन जिन किस्मों से हम सभी वाकिफ हैं अच्छी तरह वो हैं अल्फांसो, दशहरी आम, लंगड़ा, चौसा, केसरिया, सफेदा और तोतापारी आम, जो कि है महाराष्ट्र, यूपी के मलिहाबाद, बनारस और गुजरात की शान। सबकी अपनी अलग शक्ल सूरत और स्वाद है, कोई बेहद मीठा तो कोई कुछ कुछ खट्टा और कुछ कुछ मीठा, तो कोई है मीठे गूदे से भरा पूरा। तो अब बताइए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्फांसो आम दुनिया के सबसे बेहतरीन स्वाद वाले आमों में गिना जाता है और दशहरी आम का बर्थ प्लेस है यूपी का मलिहाबाद।

0: सही कहा है किसी ने लोगों की, अगर बहुत ही प्यारे मीठे मीठे गीतों का साथ हो तो लंबा सफर भी बहुत प्यार से कट जाता है, और ये सफर सुहाना और आमों की खुशबू से भरा हुआ है। भारत के अलावा आप बताते चलिए आपको कि थाईलैंड के आम की फेमस ब्रीड है डॉकमाई, जो आकार में लंबा कम रेशे वाला और एक बेहद मीठा आम है। इससे बनी मैंगो स्टिकी राइस नाम की डेजर्ट बहुत प्रसिद्ध है थाईलैंड में। फिलीपींस का काराबाओ आम दुनिया के सबसे मीठे आमों में शुमार है नाम इसका। 8 उल्फो ये आम है मैक्सिको की पहचान, जो आज दुनिया का लार्जेस्ट मैंगो एक्सपोर्टर है। ब्राजील भी किसी से कम नहीं, करता है बड़े पैमाने पर आम की पैदावार। और दोस्तों यहाँ से यूरोप के कई देशों को निर्यात किए जाते हैं ब्राजीलियन मैंगो, टॉमी एटकिंस, पाल्मर मैंगो, रोजा, एस्पाडा, केंट और कीट हैं यहाँ की मुख्य किस्में। और इन सभी किस्मों में पामर गहरे बैंगनी और लाल रंग का, और मंगा रोजा गुलाबी लाल और पीले रंग का आम होता है, देखने में दिलचस्प और स्वाद में लाजवाब।
1: ये बात है तो तुम भी सुन।

बागों में तो बहार, वैसे तो हरियाली और फूलों की खुशबू को कहते हैं, लेकिन गर्मी के इस मौसम में बागों में बाग, आम के बाग और बहार यानी आम की उन्नत पैदावार। भारतीय संस्कृति में, भारतीय चित्रण में आम का और कविताओं में आम्रमंजरी को विशेष स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, लोकगीतों में भी आम की बहार का सुंदर वर्णन हम सुना करते हैं, आम की बौर, अम्बुवा की डारी और कोयल की कूक के रूप में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आम का पेड़ 100 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकता है? और क्या ये भी जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना और जीवित आम का पेड़ भारत में है? जी हाँ, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित ये पेड़ काकोरी लखनऊ यानी अपने उत्तर प्रदेश में है, दशहरी नामक गांव में, जिसकी उम्र है 200 से 300 साल के बीच। कहते हैं इसे मदर ऑफ मैंगो ट्री। और महाराष्ट्र, जहां दुनिया का एक और सबसे पुराना जीवित आम का पेड़ ईस्ट खानदेश में माना जाता है, जिसकी उम्र है 300 साल से भी अधिक।

दोस्तों, FM 102.2 रेनबो कानपुर पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आर। आपके साथ मैं हूं आज वंदना। आज हम मीठी मीठी सी जर्नी कर रहे हैं, चख रहे हैं स्वाद देश विदेश पाए जाने वाले आम का। दोस्तों, फल के रूप में खाने के अलावा आम ऐसा जादुई करिश्मा है जिसके ऊपर और भी बहुत सारे तरीकों से उपयोग होते रहते हैं। गर्मी के मौसम में आने वाले इस खास फल से ढेर सारे व्यंजन बनाए जाते हैं और इसका स्वाद हर तरह से अनूठा ही निकल कर आता है। आम रस हो या मटकी में बना हुआ आम का पन्ना, दिल दिमाग को ताजगी देते हैं, एनर्जी से भर देते हैं, या कहें आम का पन्ना तो दिमाग की बत्ती जला देता है। वहीं मैंगो शेक, मैंगो कुल्फी हो या हो आइसक्रीम, इनका तो ख्याल आते ही जी ललचाए रहा न जाए। और किसी से कम नहीं हमारी प्यारी आम की खट्टी मीठी चटनी और पारंपरिक आम का अचार। और ये है सदाबहार। बताइए तो भला, कौन सी ऐसी रसोई है जहाँ ना हो आम का अचार। इसी के बाद से बनने शुरू होते हैं और भी सब्जियों के अचार। जी हाँ,

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

FM 102.2 रेनबो कानपुर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक आर अपने दोस्त वंदना के साथ। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आम की अनोखी दुनिया की, और इस दुनिया की बातें अभी पूरी नहीं होती हैं। खाने पीने के अलावा आम की लकड़ी, इसके पत्ते पूजा पाठ में अति पवित्र माने जाते हैं। शुभ कार्यों में, हवन में उपयोग में आती है आम की लकड़ी। द्वार पर लटकाए जाते हैं बनाकर सुंदर सुंदर वंदनवार, और पूजा में उपयोग होने वाले कलश की भी तो शोभा बढ़ाते हैं। यही आम्रपत्र सकारात्मकता का संचार करते हैं। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों जैसे फिलीपींस और थाईलैंड में भी आम को प्रेम सौहार्द, अतिथि सत्कार और खुशी से जोड़कर देखा जाता है। मानते हैं कहीं कहीं इसके पीले रंग की चटकता इसे शुभ सौभाग्य का प्रतीक भी बनाती है।

दोस्तों, स्वाद, सुगंध, मान्यता, परंपरा, प्राचीनता, प्रेम, मिठास, इन सब के साथ सेहत के लिए भी बेहद खास है ये आम। विटामिन ए और सी से भरपूर। फिलहाल मौसम आम है जबरदस्त। खाइए आम हर तरह के, होकर मस्त। और याद करते रहिए गांव में गर्मियों की उन दोपहरियों में आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खाना, मजे करना, क्योंकि अब ये बीते वक्त की यादें बनती जा रही हैं फुर्सत के अभाव में। फिलहाल अब दीजिए इजाज़त मीठी मीठी सी इस म्यूज़िक आर प्रोग्राम से। आपको सुनवाती हूँ इस प्रोग्राम का एक बहुत ही प्यारा सा लास्ट सॉन्ग जो आपको पुरानी यादों में भी ले जाएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से। नमस्कार।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: टू FM रेनबो कानपुर पर लीजिए, सुनिए कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम का एक और अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर युवराज गुलाटी जी को, जो कि JSVM मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका आकाशवाणी कानपुर के हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद मैडम आपका मुझे बुलाने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, आज किडनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें हम आपके साथ करना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि शुरुआत करें एक ऐसे विषय के साथ जो आजकल काफ़ी सुनने में मिलता है, जिसका नाम है CKD, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को सामान्य और आसान भाषा में समझाएं कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या है।
1: देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हमारे जो शब्दावली है, नाम से ही बहुत क्लियर है। किडनी डिजीज़ मतलब गुर्दा रोग, किडनी की बीमारी, और क्रोनिक का मतलब जो बीमारी लंबे समय से हो जाए।

0: तो किडनी की कोई भी बीमारी अगर वो 3 महीने से ज्यादा परसिस्ट करती है, 3 महीने से ज्यादा रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज में आ गई ही है। तो कोई भी बीमारी को पहचानना कैसे है, तो अगर हम मेडिकल भाषा में बात करें तो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, मतलब किडनी के बनावट में कोई दिक्कत हो या किडनी के फंक्शन में कोई दिक्कत हो, अगर वो दिक्कत 3 महीने तक के समय से ज्यादा चल रही है तो उसको सीकेडी लेबल किया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 3 महीने से ज़्यादा किडनी में होने वाली कोई भी समस्या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंतर्गत आती है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं या शुरुआती संकेत क्या होते हैं?
0: देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किडनी के बीमारी के शुरुआती लक्षण कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि हम ये बोलें कि ये किडनी के लक्षण हैं। किडनी के लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें लगेगा कि जी हमें ये कॉमन बीमारियों से भी हो सकते हैं, जैसे रात में कई बार पेशाब के लिए उठना, जैसे हल्का कमजोरी बने रहना, जैसे पैरों में थोड़ी सूजन आ जाना, सुबह

0: चल रही है, तो उसको सीकेडी लेबल किया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 3 महीने से ज़्यादा किडनी में होने वाली कोई भी समस्या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंतर्गत आती है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं या शुरुआती संकेत क्या होते हैं?
0: देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि किडनी के बीमारी के शुरुआती लक्षण कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं कि हम ये बोलें कि ये किडनी के लक्षण हैं। किडनी के लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें लगेगा कि जी हमें ये कॉमन बीमारियों से भी हो सकते हैं, जैसे रात में कई बार पेशाब के लिए उठना, जैसे हल्का कमजोरी बने रहना, जैसे पैरों में थोड़ी सूजन आ जाना, सुबह सुबह उठ के आंखों के आसपास सूजन आना, काम करने की इच्छा ना होना, भूख कम लगना, और शरीर में कभी कभार अगर किडनी की बीमारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए तो खुजली होना। पर जरूरी नहीं है कि ये सब सिम्टम सिर्फ किडनी की बीमारी के वजह से ही हो, और ये हो भी सकता है कि ना भी हो। तो किडनी की बीमारी के कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि अगर हमें ये लक्षण मिलने लग जाए तो हम बोलें कि हाँ जी ये किडनी की ही बीमारी है। पर हाँ, कुछ दो तीन लक्षण जैसे पेशाब में झाग आना, रात में कई बार यूरिन के लिए उठना और पैरों में सूजन आना, अगर ये सिम्टम्स लगातार, लक्षण लगातार बने हुए हैं तो हमें किडनी की जांच पे जरूर ध्यान देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बात हो रही है किडनी की बीमारियों की जांच की, तो हम जानना चाहेंगे कि वो मुख्य जांचें क्या होती हैं जिन्हें आप प्रिस्क्राइब करेंगे सीकेडी के केस में?
0: देखिए, आजकल तो हमारे पास जांचों का एक बिल्कुल, लोगों के पास हर जगह लैब्स हैं, फोन पे ही आप बुकिंग कर सकते हैं, कई सारी जांचें लोग आजकल कर रहे हैं। बट स्पेसिफिक जांच पे अगर हम जाएं किडनी के लिए, तो अगर दो जांचें हैं जो हम लोग कर लें तो हम ये श्योर हो सकते हैं कि किडनी की हेल्थ हमारी कैसी है। पहली जांच है सीरम क्रिएटिनिन, इससे हम लोग एक GFR नामक एंटिटी होती है वो हम निकाल लें, कैलकुलेट करा जाता है क्रिएटिनिन की वैल्यू से, जहां से eGFR, GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कितना है, एक क्रिएटिनिन और eGFR की जांच। और दूसरी अगर सिंपल सी जांच बोले तो यूरिन की जांच कि यूरिन में आपके प्रोटीन कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक तीसरी जांच अगर और हम इंक्लूड करना चाहें तो अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम किडनी का एक साइज देख लें किडनी के कि कोई और उसमें इरेगुलरिटीज तो नहीं है। तो अगर तीन जांचें, क्रिएटिनिन और eGFR, यूरिन की जांच और अल्ट्रासाउंड, ये तीन जांचें हमें मोटा मोटा किडनी हेल्थ के बारे में एक अंदाजा दे सकती हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्रोनिक किडनी डिजीज होने पर क्या दवाइयों से इसका उपचार संभव है?
0: देखिए, पहली बात तो अगर हम जांचों की बात करें, जैसा मैंने पहले बोला कि 3 महीने से ज्यादा अगर परसिस्ट करता है तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। जहां तक हमने जांच की बात करी, अगर eGFR किसी का less than 60, 60 से नीचे रहे 3 महीने के ऊपर, तब हम बोलते हैं कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज में आ गया। नॉर्मल GFR कितना होता है? नॉर्मल GFR 90 के ऊपर रहना चाहिए। और इसी से हम लोग किडनी की बीमारी की स्टेजिंग निकालते हैं। 5 स्टेजेस में किडनी की बीमारी GFR के बेसिस पे बांटी गई है। पहले स्टेज में अगर GFR 90 के ऊपर है, दूसरे स्टेज में 60 से 90 के बीच में, तीसरे स्टेज में 30 से 60 के बीच में, चौथे स्टेज में 15 से 30 और पांचवें स्टेज में 15 के नीचे है। तो ये स्टेज हमें जरूर पकड़ना चाहिए। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आपने कहा कि इलाज, वो इस स्टेजेस पे डिपेंड करता है।
1: जी
0: अगर हम स्पेसिफिक इलाज की बात करें तो किडनी के बीमारी का कोई, हमारे पास कई मरीज आते हैं कि जी क्रिएटिनिन का इलाज कर दीजिए, तो क्रिएटिनिन का खाली इलाज तो ऐसे कोई नहीं होता है। हमें उसके कारण पे जानना है कि आपका क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा है। तो मुख्य कारण अगर किडनी के बीमारी के हम देखें तो शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दो प्रमुख कारण हैं। इन कारणों को पकड़ के, इनको कंट्रोल करके हम किडनी के बीमारी के इलाज की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है तो मेरी विनती यही है कि कारण पे जाने का प्रयास करें, तभी हम उसके ट्रीटमेंट पे कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम शुरुआती दौर में किडनी के बीमारी को पकड़ लें तो हमारे पास काफी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं अलग अलग कॉजेस की वजह से, जिससे हम किडनी की बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में अक्सर आते रहते हैं और आपसे बातचीत करके हमें ये भी जानकारी हुई कि संगीत में आपकी बहुत गहन रुचि है
0: जी
1: और इसीलिए हम चाहेंगे कि कार्यक्रम में बातें अभी हम और भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे लिसनर्स को अपनी पसंद का कोई एक गाना सुनवा दें।
0: राम।

0: रे।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही मनमोहक आपकी आवाज पे ये भजन लगा हम लोगों को, और इसी से जुड़ा हुआ एक गीत हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को सुनवा दें।
0: देखिए, मैं शुरुआती दौर से अनूप जलोटा जी का बहुत बड़ा एक प्रशंसक रहा हूं, तो कोई भी अनूप जलोटा जी का राम रमैया गाए जा, राम में लगन लगाए जा।
1: जी।
2: राम

0: डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत सुनने के बाद हम एक बार फिर से लौट आए हैं अपने स्टूडियो में, जहां आज हम बात कर रहे हैं शहर के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर युवराज गुलाटी जी से, और बातचीत का विषय है क्रोनिक किडनी डिजीज। आप पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आए हैं और बहुत से श्रोता आजकल पत्र लिखकर या ईमेल के माध्यम से हमसे कुछ सुझाव मांगते हैं, तो उसमें से कुछ श्रोताओं ने ये सवाल किया है कि क्रोनिक किडनी डिजीज क्या पानी ना पीने यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण बढ़ता है?
1: जी देखिए, बिल्कुल, किडनी की कोई भी बीमारी, अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा या ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, दोनों कॉजेस से किडनी पे लोड पड़ता है। देखिए, किडनी का काम है शरीर से गंदगी को पानी में घोल करके पेशाब के रास्ते साफ करना। तो अगर आप उसको पानी बहुत ज़्यादा देंगे तब भी दिक्कत होगा, पानी कम देंगे तब भी दिक्कत होगा। तो एडिक्वेट पानी की मात्रा, मैंने कई बार पहले भी बोला हुआ है, जो किताबी भाषा में ली गई है वो है 30 से 50 मिलीलीटर प्रति किलो। तो अगर आपका 50 किलो वजन है तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो 2.5 लीटर पानी आपको मिनिमम एक दिन में लेना चाहिए, बशर्ते आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, बशर्ते आपको किडनी की बीमारी नहीं है, आपके पैरों में सूजन नहीं आती। ये एक नॉर्मल आदमी के लिए पानी का इंटेक है। अगर आप क्रॉनिक लगातार पानी की कमी रख रहे हैं तो शरीर पर जोर पड़ता है, तो उस वजह से किडनी पे दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि पथरी बन सकती है, और स्टोन अपने आप में किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है। तो डिहाइड्रेशन की मोस्ट कॉमन

0: कॉमन बीमारी स्टोन्स है, हम सब लोग जानते
1: जी
0: हैं, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। डिहाइड्रेशन से कई बार यूरिन इन्फेक्शंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और ये सब चीजें अल्टीमेटली किडनी को डैमेज कर सकती हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेजेस के बारे में हमें बताया कि विभिन्न स्टेजेस होने पर विभिन्न विभिन्न प्रकार का ट्रीटमेंट या उपचार दिया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल से जुड़े वो कौन से चेंजेस हैं जिनके माध्यम से हम सीकेडी को अवॉइड कर सकते हैं?
0: देखिए, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, जैसा आपका पिछला सवाल था कि पानी की मात्रा को हमें एडिक्वेट रखना है।
1: जी
0: अगर आपको कोई किडनी और हार्ट की बीमारी नहीं है तो एडिक्वेट पानी का इनटेक रखें ताकि बॉडी में ना ओवरलोड हो ना डिहाइड्रेशन हो। दूसरा, रेगुलरली, क्योंकि आजकल हमारी एक लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हम एक बैठ के काम ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो हमें अपने ब्लड प्रेशर्स पे ध्यान देना है, हमें अपने शुगर पे ध्यान देना है, हमें अपने वजन पे ध्यान देना है। बीएमआई को कंट्रोल रखना है, शुगर को नियंत्रित रखना है और बीपी को अंडर कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये तीन प्रमुख कारण हैं जो किडनी को खराब करते हैं। साथ ही साथ कोई भी नशा, हम लोग कई बार लोग सुनते हैं कि साहब इससे किडनी पे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नशा, अल्कोहल, टोबैको, तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का असर किडनी के ऊपर आता है, तो इन चीजों को भी आपको बचाव करना है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यायाम, ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जिम में जाकर के नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट आपको एक सैर करना चाहिए, उस स्पीड में जिस स्पीड में आपकी हल्की हल्की सांस फूले। पार्क में किसी से कंपटीशन नहीं करना है, आपको
1: जी
0: उस स्पीड पे चलना है जो आपके लिए काफी है। ये नहीं चलना है कि वो मेरे से ज्यादा तेज चल रहा है, अपनी स्पीड पे कम से कम 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन कम से कम 150 मिनट बोला जाता है, अगर आप ये कर रहे हैं तो चीजें बेहतर रहती हैं। साथ ही साथ आजकल जिम का भी ट्रेंड बहुत चल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, हेल्थ की तरफ हम सबको सजग होना चाहिए, लेकिन जिम में जाकर के पहली चीज, जैसा मैंने दोहराया, कॉम्पिटिशन दूसरे से नहीं करना है, अपनी स्ट्रेंथ आपको देखना है। साथ ही साथ वहां जाकर के हम लोग काफी प्रोटीन डाइट की तरफ चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट भी किडनी के मरीजों के लिए हानिकारक होती है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल प्रोटीन इनटेक 1 ग्राम पर केजी होना चाहिए एक आम आदमी के लिए, किडनी के मरीज के लिए 0.8 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए। यहां तक कि WHO ने कुछ पेपरों में यह भी कहा है कि इवन नॉर्मल मरीज के लिए भी, नॉर्मल इंसान के लिए भी, अब हम प्रोटीन इंटेक को कम करके 0.8 ग्राम पर केजी पे ले आए। तो अगर आप जिम जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक ना लें, बहुत ज्यादा नॉनवेज इंटेक ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे अल्टीमेटली यूरिया बढ़ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, किडनी पे सफाई का लोड बढ़ सकता है, जो कि किडनी पे दिक्कत ज्यादा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे स्टूडियो में आएं और हमसे ऐसे ही विषयों पर कुछ बातें करें। फिलहाल आज यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: ट्यून इन है आप 102.2 रेनबो कानपुर के संग। शाम के 4 बज चुके हैं दोस्तों और हम हाजिर हो चुके हैं लेकर आपके लिए आपकी पसंद प्रोग्राम। यहां पर होंगे आपके पसंद के गीत, पढ़े जाएंगे आपके ये ईमेल्स और सुनवाएंगे आपकी मनपसंद प्यारे प्यारे से गाने। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए शुरू किया जाए आज का ये प्रोग्राम आपकी पसंद।
1: शीन,

0: साथी, ये जो पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसको हमने लिया है मोम की गुड़िया इस फिल्म से। आनंद बख्शी और लता मंगेशकर की आवाज़ इसमें आप सुनेंगे, और ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है।
1: आओ रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर
0: देंगे। तो आपको बता देते हैं कि हमारे किन श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। तो मुख्य फरमाइश है हमारे आप सभी श्रोताओं की, ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य सुनना चाहते हैं ये गीत बागों में बहार आई।

शामिल कर रहे हैं अपने और साथियों की ईमेल्स इसी गाने के लिए। दोस्तों, एक ईमेल हमें मिल रही है गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल की। मूंदीचक भागलपुर बिहार से हैं दिलीप कुमार सोनी, आपकी ईमेल हमने शामिल कर ली है। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद और सत्यम आनंद आप ईमेल भेज रहे हैं पाकुड़ झारखंड से। और बोहड़ा घाची पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित बयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख और समस्त राजे जाधव देशमुख और व्याल परिवार। तो साथियों, आप सुन रहे हैं इस वक्त आपकी पसंद कार्यक्रम FM 102.2 रेनबो कानपुर पर। किशनगंज बिहार से आइए ईमेल हम शामिल करे ले रहे हैं। इसी गीत के लिए रविंद्र मोहन और आशा देवी की ईमेल आई है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर। ये गीत हमने लिया है फिल्म शतरंज से। समीर का लिखा गाना है, आनंद मिलिंद का संगीत और कुमार सानू के साथ साधना सरगम की आवाज़।

साथियों, ये गीत आप सुन रहे थे शतरंज फिल्म से समीर का लिखा हुआ ये गाना था और ये मुख्य फरमाइश थी सनावत से शेख मूसा मोहसिन की और साथ में शामिल की जा रही हैं और साथियों की ईमेल्स भी मेरठ कैंट से हैं। दिग्दर्शन कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। और साथ ही हमें ईमेल मिल रही है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। आप लिख रहे हैं आकाशवाणी कानपुर रेनबो हमारे दिल के बहुत करीब है। जी, आपका यही प्यार तो हमें बनाए रखता है आपके साथ। इसी प्यार से बने रहिए हमारे साथ और भेजते रहिए ये मेल्स और सुनते रहिए प्यारे प्यारे गाने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी पसंद। और फिलहाल शामिल कर रहे हैं, ये ईमेल आई है राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय रामेकर, रुद्रा, रुचिका रामेकर और पूरे रामेकर परिवार की। संबलपुर कांकेर से लिख रहे हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कृष्णागोड़ के प्रशांत शिंदे, ऋषि, यशराज, सुनीता, रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से ईमेल भेज रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो साथियों, आपकी भी ईमेल हमने शामिल कर ली है और आइए बढ़ते हैं अब आगे कार्यक्रम में। आपको सुनवाते हैं खानदान फिल्म का ये गाना, राजेंद्र किशन का लिखा हुआ ये गीत है, रवि का संगीत और मोहम्मद रफी के साथ आवाज़ है आशा भोसले की।

खानदान फिल्म का ये गीत आपने सुना। उत्तम नगर दिल्ली से इस गीत की फरमाइश आई थी बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने ये गीत सुनना चाहा था और शामिल कर रहे हैं अपने और श्रोताओं के नाम। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड से हमें ईमेल भेज रहे हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपकी ईमेल भी हमने शामिल कर ली है। गणेशपुर गंजडुनवारा से एक ईमेल मिल रही है। एटा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान की। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया हमें ईमेल भेज रहे हैं, तो आपको भी हमने शामिल कर लिया है बहुत प्यार से इस गीत में। और अब बढ़ते हैं आगे, सुनवाते हैं आपको अगला गीत जिसे हमने लिया है इम्तिहान फिल्म से।

इम्तिहान फिल्म का ये गीत आपने सुना, आपकी पसंद। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इस वक्त 102.2 FM रेनबो कानपुर पर दोस्तों। और इस गीत के लिए हम शामिल कर रहे हैं ईमेल, बक्सर बिहार से आई है हमारे पास ये ईमेल, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू की। डुमरा बिहार से हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। शामिल की जा रही है ईमेल, जवाहरनगर दुर्ग से आई है आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े की। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आपकी भी ईमेल हमने शामिल कर ली है, यानी आपको कार्यक्रम में शामिल कर लिया है दोस्तों। स्टेशन रोड जमशेदपुर से ईमेल हमें मिल रही है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहान, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ईमेल भेज रहे हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत भारत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से ईमेल कर रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे दोस्त हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, आप ईमेल भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, एक नज़र हम पर भी ज़रा गौर फरमाइएगा, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। तो जी इसी तरह आनंद उठाते रहिए, हम आपके फरमाइशी गीत आप तक पहुँचाते रहेंगे। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी की फरमाइश आई है। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी। दोस्तों एक बार आपका ईमेल शामिल हो जाए तो कृपया बार बार ईमेल ना करें, इससे हमारे और भी साथियों को प्रोग्राम में जुड़ने का मौका मिल सकता है। फिलहाल बढ़ रहे हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवा रहे हैं आपको हीरा पन्ना फिल्म का वो गीत जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है और किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ है।

हीरा बन्ना मूवी का ये सॉन्ग सुनना चाहते थे मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव संजय डिंगिया संदीप मक्कर अनिल जैन और दर्शन भाई। इस गीत को हमने जो आपको सुनाया आनंद बख्शी का लिखा ये गाना था, आर डी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार के साथ आवाज़ थी लता मंगेशकर की। मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से हमारे पास ये ईमेल आई है अभिजीत गवाणकर राही सरिता गवाणकर।

प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से प्रणिता, सिद्धांत लाडला टुकटुक गम्हाणकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं। वैशाली शैलेश गम्हाणकर, श्वेता सुमित गम्हाणकर और कुमारी ध्वनि। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ईमेल मिल रही है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। रामेश्वर कटेरिया, उमाकांती कटेरिया, कमलेश कटेरिया, निशा कटेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा और वेद बाबू कटेरिया आप सभी लिख रहे हैं। पोस्ट ग्राम पोस्ट कानपुर मुंगीसापुर से, कानपुर देहात से ये पोस्ट आई है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब से, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शबिस्ता मोहम्मद और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ईमेल मिल रही है। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप की। आइए अब सुनते हैं अगला गीत अनोखी अदा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

मजरूह सुल्तानपुरी की ये रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और किशोर कुमार की आवाज में अनोखी अदा, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद, दोस्तों जहां आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के ये प्यारे प्यारे से गीत, और हम शामिल कर रहे हैं एक के बाद एक लगातार आपकी प्यारी प्यारी सी ईमेल्स। तो ये जो गीत आपने सुना ये मुख्य फरमाइश थी होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु और इनके पूरे परिवार की। साथ ही अब हम शामिल कर रहे हैं अपने और भी दोस्तों को, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी और पायल जोशी। आपने हमें ईमेल भेजी है और ये एक ईमेल हमें मिली है दिल्ली का, ये इन्होंने लिखा है बहुत सारे नाम फेक आईडी से फेक नंबर से दिल्ली के वली उल्लाह भेजता है हिंदू। ओहो, ये दोस्तों इस तरीके की ईमेल्स आप हमें प्लीज़ ना करिए, अपनी केवल फरमाइश लिखिए और अपना नाम लिखिए, अपने परिवार वालों का नाम लिखिए, और जो भी फेक ईमेल भेज रहे हैं उनका हम क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल जो भी हमारे श्रोता हैं, जो हमारे अच्छे और सच्चे श्रोता हैं, वो हमें सुन रहे हैं, प्यार से सुन रहे हैं और लगातार ईमेल्स भेज रहे हैं, है ना। और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ये ईमेल हमें मिली है सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने की। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद कॉपरसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद और समस्त फूलवाले फैमिली हमें ईमेल भेज रहे हैं। और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ईमेल आई है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान इसरार और नरगिस खातून की। खंडवा रोड सनावत से आप सभी हमारे साथ हैं, सुन रहे हैं प्रोग्राम, शाहबाज अरबाज, फरहाज फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन शेख, और खंडवा से योगेश गुजराती, आनंद जोशी और दुर्गा प्रसाद सैनी। आपकी भी ईमेल हमें दो बार दिख रही है यहाँ पर, तो साथियों आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ एक ही बार ईमेल भेजिए, जिससे आपकी ईमेल हम सभी की ईमेल कोशिश कर रहे हैं कि शामिल कर लें, तो सबकी ईमेल शामिल हो सकें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको पागीसा फिल्म का ये गाना।

ये गीत आप पाकिजा फिल्म से आपको हमने सुनवाया, कमाल अमरोही का लिखा ये गाना था, गुलाम मोहम्मद का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से इस गीत के लिए हम शामिल कर रहे हैं ईमेल आप सभी श्रोताओं की। मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रज़ा और गौसिया फातिमा। पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया गुड्डू, आप सभी की ये मुख्य फरमाइश थी। इस गीत को आप सभी श्रोताओं ने सुना हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। नगर निगम नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कलीर बिहार से और मोहम्मद आसिफ खान निकहत परवीन, आपकी भी ईमेल शामिल कर ली गई है। मोर टक्का का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, आपकी ईमेल हमने शामिल कर ली है। साथियों, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी की भी ईमेल शामिल कर ली गई है।

टेल आपकी ईमेल हमने शामिल कर ली है साथियों। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी की भी ईमेल शामिल कर ली गई है। मनाली हिमाचल से ईमेल हमारे पास आई है हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई की, चंडीगढ़ से हैं शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा, बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगियाना मंडिया और अपार ढिंगिया, कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, आप सुनना चाहते हैं फिल्म महबूब की मेहंदी से जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। तो चलिए अब यही गीत सुनवा देते हैं अपने सभी श्रोताओं को।

0: इस गीत के लिए शामिल कर रहे हैं ईमेल पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सुफियाना अनस, आयजा अल्फिया, सदफ और हसनैन, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान और आफिया और मुश्तबा खान की ईमेल आई है। स्नेहा सोनी, सारा पीहू, रोशनी बबीता, गुलाबसा सिद्दीकी, टाइगर शर्मा, रूपपुर चंदेला से आप ईमेल भेज रहे हैं। आपकी भी हमने ईमेल शामिल कर ली है दोस्तों। और सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली नारंग। और टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है साथियों, और अनुरोध करता ये हमारे और भी एक श्रोता है तखतपुर छत्तीसगढ़ से, मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, और इसी गीत के लिए एक ईमेल और शामिल की जा रही है। गिरिलाल लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से ये ईमेल आई है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा संदेश सुनवा दें, उसके बाद अंतिम गीत तक हम आपको पहुंचाएंगे।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बनें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपके पसंदीदा कार्यक्रम में अब अंतिम गीत पहुंच रहा है आप तक, राम तेरी गंगा मैली फिल्म से ये हमने लिया है और गीत संगीत है रविंद्र जैन का, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं, आइए सुनते हैं।

सुबह बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, राहुल, इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनैद मुजावर, साबिहा मिखाइल मुजावर और जैनब मुजावर।

श्री बुरांडे, बल्लार शाह से सूरज, प्राची और एकलव्य की, और जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े। और साथियों, इसी के साथ अब अपनी दोस्त वंदना को आपकी पसंद कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को जब ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारी और दूरदर्शी नेता मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगता। श्री योगी ने कहा कि पिछले 12 सालों में हमने बदलते भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद के भारत पर आज की पीढ़ी गर्व करती है और गौर करती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जिस भारत ने अपनी विकास यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए बिना रुके, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास दुनिया को कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित रहे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत जिले के वनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज हर गरीब को पक्का मकान मिला है और सड़क, बिजली, परिवहन, पुल, रोजगार जैसे अभूतपूर्व काम हुए हैं। इससे पहले श्री प्रसाद ने 7 बारात घर और 2 अंत्येष्टि स्थलों का ऑनलाइन माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

5:04 हो गए हैं और प्रोग्राम FM टॉप 10 में आपका स्वागत है। और प्रोग्राम FM टॉप 10 में आज जो यूनिक गाने लेकर और उन 10 गानों में से जो पहला टॉप 10 में से 10th नंबर का जो गाना होगा वो आपके रेडियो सेट पर आने को तैयार है। लेकिन आपको बता दूं, ये उस दौर के गाने हैं, उस जमाने के गाने हैं जब लोग इन नगमों में, इन गानों में खो जाते थे, लेकिन आज भी वही दौर इन गानों को सुनते ही याद आने लगता है। कौन सा दौर है वो, उसको जानने के लिए आपको ट्यून इन करके रखना होगा 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं। और साथ ही याद रखिए, ये है आज FM टॉप 10 का 10वां गाना।

5:11 हो गए हैं और प्रोग्राम FM Top 10 चल रहा है और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। FM Top 10 का आज का 10वां गाना आपने सुन लिया है और ये रहा 9वां गाना आज की FM Top 10 की लिस्ट का, 9th सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर। आप इसे सुनिए और तुरंत वापस आते हैं।

5:25 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है FM Top 10। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और प्रोग्राम FM Top 10 का नंबर 7th गाना अब आपके रेडियो सेट पर आने वाला है। और यह खूबसूरत गाना है आज प्रोग्राम FM Top 10 का नंबर 7th।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
6: अब 0 रुपए कैसे दूं।
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
5: पाँच बजकर के 31 मिनट हुए हैं, प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10 और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो। और आज के प्रोग्राम FM टॉप 10 का गाना नंबर 6 रहा आपके रेडियो सेट पर। ये

बिल्कुल, और इसी जाने क्यों के साथ आज के FM टॉप 10 का सॉन्ग नंबर 4 आपके रेडियो सेट पर रहा ये।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: समय बदला, दौर बदले, पर एक आवाज हमेशा साथ रही।
3: 90 वर्षों से सतत जनसेवा में तत्पर आकाशवाणी।
4: अपने बधाई संदेश के साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर के ठकराल।
5: मैं डॉक्टर के ठकराल आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूं।
6: ये जो बादल गरज रहे हैं ये आसमान में अभी के नहीं है, ये इस गाने के हैं जो कि आज के FM Top 10 का सॉन्ग नंबर 3 है।

5:54 हो गए हैं और अब समय है इस प्रोग्राम के आखिरी गाने का. और आज का प्रोग्राम का टॉप सॉन्ग या पहला नंबर वन सॉन्ग जिसको हम आज की इस लिस्ट में रखते हैं, जो आखिरी में प्ले करते हैं, वो गाना आपके रेडियो सेट पर आने को तैयार है, बस प्ले हो रहा है. लेकिन इसी गाने के साथ हमें आपको कहना होगा बाय, इस प्रोग्राम से अलविदा आपको कहना होगा. लेकिन अगला प्रोग्राम आपका अपना शामे अवध है, जिसके लिए आप ट्यून इन करके रखिए और तुरंत न्यूज़ ब्रेक के उस पार आपसे मिलते हैं शामे अवध में. आज FM टॉप 10 का टॉप सॉन्ग या शो स्टॉपर कह सकते हैं इसको, इस गाने को छोड़ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। श्री योगी सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के पश्चात गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चौथे संस्करण के लिए देशव्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत आज नई दिल्ली में आयोजित रोड शो के साथ की गई। इस अवसर पर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपीआईटीएस राज्य की औद्योगिक शक्ति, निर्यात क्षमता और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने और नए व्यापारिक अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये व्यापार मेला 25 से 29 सितंबर 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। केंद्रीय विदेश राज्य सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। तजाकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि SCO में भाग लेने के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास को नई दिशा दी है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारकर जनता तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, महिला और युवा समेत समाज के हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

6:04 हो गए हैं और इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्यार भरा सलाम आपको। मैं आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई हूँ आपसे आपके अपने प्रोग्राम की शुरुआत के साथ, जो कि आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम है शाम ए अवध। और इस खूबसूरत शाम में, इस सुकून भरी शाम में आपका स्वागत है फिर से, और बार बार स्वागत है। इस खूबसूरत शाम में स्वागत करते करते आपको ये भी याद दिलाऊं कि भाई बहुत सारी बातें आपसे करनी होती हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी होती है और साथ में आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना होता है। तो क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल रखना होता है और एंटरटेनमेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, तो इसलिए आपकी पसंद का नहीं, हम सबकी पसंद का, और हमारी तरफ से ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर शाम ए अवध का खूबसूरत आगाज करता हुआ।

और इसी खूबसूरत गाने के साथ आपके साथ फिर से आ गई, मैं हाजिर हो गई, आपसे जुड़ गई हूँ। और मौसम का हाल जानने से पहले, मौसम के बारे में बात करने से पहले, पहले आपको कहें कि अगर आप घर जा रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, या फिर आप कहीं भी निकल रहे हैं, गाड़ी से हैं और हमें सुन रहे हैं, तो यातायात नियमों को दिमाग में रख कर कृपया चलते रहें। और मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं और अपनों का ख्याल करते हैं, तो आप बहुत अलग से ग्लो करते हैं। वो जो ईमानदारी का ग्लो होता है ना चेहरे पे, वो खूबसूरत सा नूर जो होता है वो अलग सा होता है। तो बस यही है, मेरा अपना मानना ये है, ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो आप खूबसूरत लगते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं और सभी को पॉजिटिव वाइब देते हैं। बस इसी बात के साथ, ज्यादा आपको जोर जबरदस्ती वाले शब्दों में नहीं कहूंगी, बाकी ये है कि जिन भी बातों के बारे में आपको गौर करना चाहिए उनके बारे में तो करना ही चाहिए, ध्यान तो देना ही चाहिए। आप हैं, आपसे ये जहां है, आपके होने से आपके अपने हैं, बहुत सारी बातें हैं। मौसम के बारे में अगर आपको बात करें तो भाई, मौसम विज्ञान ने जो है थोड़ी सी अलर्ट जारी तो किया है मौसम ठीक होने का। जैसे आपने आज दोपहर तक देखा होगा कि मौसम कैसा करवट लिया है, और कई जिलों में गरज चमक के साथ आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और कल रात भर भी आपने देखा होगा, इसके अलावा परसों भी आंधी चली है खूब सारी। थोड़ा बहुत संभावना है और थोड़ी थोड़ी बारिश के छींटे बूंदेबांदी की भी संभावना है, और थोड़ी सी ठंडी हवाओं के साथ टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम होने वाला है और बारिश भी आ सकती है। बस इसी खुशी वाली बात के साथ मैं आपसे कह देती हूँ कि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से खुश रहते रहते एंजॉय करिए। ये ट्यून इन किया ना आपने 100.7 FM रेनबो, अगली अपडेट लेकर तुरंत आते हैं आपके पास।

है, दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ।

और इस खूबसूरत नंबर के बाद आपका स्वागत है अपने प्रोग्राम शामे अवध में। वापस लौट आइए अगले जोन में अगर आप चले गए हैं तो। ये खूबसूरत शाम आपको सुकून की तरफ लौटा रही है। ये खूबसूरत शाम आपसे कह रही है कि कोई बात नहीं, दिन भर की थकन, भाग दौड़, बहुत सारे विचारों को एक तरफ एक किनारे करके समेट कर अपनी अलग सुकून भरी दुनिया में चलने को वापस बुला रही है। ये सुकून भरी शाम आपसे कह रही है कि आप आओ, बैठो, शांति से गहरी सांस लो और देखो कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दीवारें, ये खुला आसमान और कुछ ठंडी हवा आपका इंतजार कर रही है। हाथ में चाय की प्याली, और अगर आपने चाय पीना छोड़ दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ और इसलिए कभी कहूँगी भी नहीं कि चाय पीनी अच्छी बात है। अगर आप पीते हैं और हेल्दी चाय पीते हैं, हेल्दी चाय मतलब हो सकता है आप हरी चाय पी लें, काली चाय पी लें, लेकिन सफ़ेद चाय थोड़ी सी नुकसान कर सकती है। खैर, लेकिन आपकी मर्जी, आप उसे भी, सफ़ेद चाय को भी हेल्दी बनाकर पी सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं और नहीं भी करते हैं, बाकी हमारे बहुत सारे श्रोता करते होंगे, और वैसे यात्रा तो हर किसी को करनी पड़ती है, ओकेजनली भी करनी पड़ती है और ऐसे भी करनी पड़ती है। खैर, ये बात तो बहुत ज़रूरी है, यात्रा हर किसी को करनी पड़ती है, किसी को बस से, किसी को ट्रेन से, किसी को गाड़ी से सड़क पर, लेकिन किसी को यात्रा करनी पड़ती है विचारों की, सोचने की। खैर कभी कभी मैं ऐसी फनी बातें कर लेती हूँ। खैर, अब जो अगली जो खबर है आपके लिए, वो खबर ये है कि चारबाग रेलवे स्टेशन पे जो कॉन्कोर्स का निर्माण कार्य चल रहा था ना, पूरा मेंटेनेंस, उसकी वजह से गाड़ियों के रूट बदले गए थे, अब ये रूट्स बहाल कर दिए गए हैं। कई सारे रूट हैं जो बदल दिए गए हैं। इससे पहले ये ट्रेनें चारबाग स्टेशन के बजाय जो है ऐशबाग या बादशाह नगर स्टेशन से होकर चलाई जा रही थी, अब ये वापस, क्योंकि वहां पे निर्माण कार्य जो है पूरा हो गया, तो वापस वहां से शुरू कर दी गई हैं।

जी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो है वो मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। रेलवे ने इसके चलते राजधानी एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस 36 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म्स बदले थे। लखनऊ मंडल के जो सूचना है वहां से जो मिली हमें, सूरत मुजफ्फरपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर अयोध्या कैंट और पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस, इन सब ट्रेनों का रूट नॉर्मल कर दिया गया है। जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलने लगी हैं। इसके अलावा राजधानी, श्रमजीवी, बहुत सारे लगभग 36 ट्रेनों का जो प्लेटफॉर्म्स है वो बदला गया है, इधर उधर फेरबदल हुई है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, आपको अगर सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस जो बदली हुई जानकारी है इसके बारे में देख लेंगे, थोड़ी सी खोज खबर कर लेंगे, उसके बाद ही यात्रा करेंगे। ये ना हो कि आखिरी मौके पर कोई देर हो जाए। क्यों नहीं करके रखिए, और खबरें हैं आपके लिए और आपके काम की खबरें हैं। तब तक के लिए खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

6:34 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है शाम में। अवध, आपने ट्यूनिंग किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ को। अगली खबर आपके लिए ये है कि IIM लखनऊ में 12वीं पास जो छात्र हैं उनको मौका मिलने वाला है एक चीज का, और वो चीज है AI और बिजनेस एनालिटिक्स। ये एक नया कोर्स यहाँ शुरू किया गया है, AI और बिजनेस एनालिटिक्स। JEE एडवांस के आधार पर आपको दाखिला मिलेगा, और ज्यादा अगर आपको इंक्वायरी चाहिए और आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो IIM लखनऊ के वेबसाइट पर देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो 10+2 जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए AI और बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, मतलब बैचलर ऑफ साइंस BS में ये प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है IIM लखनऊ ने। और इसी के साथ ही आपको एक और खबर ये बताएं कि लखनऊ में मालवीय मार्ग स्थित कोकोरो आर्ट गैलरी में बंगाल की जो सुप्रसिद्ध लोक चित्र परंपरा काली घाट पट चित्र प्रदर्शनी है ये शुरू हो चुकी है, और डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। और बंगाल के जो प्रसिद्ध लोक चित्रकार, मनोरंजन चित्रकार, वरिष्ठ IAS अधिकारी नवनीत सहगल और बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद रहे, और पट चित्र शैली की बहुत सारी अलग अलग कलाकृतियों को यहां प्रदर्शित किया जाता है। जितने भी कला प्रेमी हैं यहां जा सकते हैं आर्ट गैलरी में इसका लुत्फ उठाने के लिए। आपको बताएं ये जो लोक चित्र है, लोक चित्र मतलब लोक चित्र परंपरा काली, या जिसको कहते हैं पट चित्र कला जिसको कहते हैं, ये लोक चित्र परंपरा पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, लोक जीवन से जुड़े हुए विषयों को एक अलग से शैली में ड्रॉ किया जाता है, या ये कहेंगे कि चित्रित किया जाता है, ये आर्ट शैली ये फॉर्म करती है। और भी खबरें होंगी आपके लिए हमारे पास, और आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो को।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 6:47 हो गए हैं
1: दिल
0: और
1: ही दिल।
0: अपडेट का समय है आपके लिए। एक और अपडेट आपके लिए है, या यूं कहें कि ये तो गुड न्यूज है अपने शहर के लिए, आपके लिए, सबके लिए। भाई यूपी, ग्रीन यूपी की बात चलते रहती है और अपने मुख्यमंत्री जी ने जो है एक खूबसूरत चीज हम लोगों के लिए की है और पर्यावरण के लिए की है, जिसके बारे में बात करना तो बनता है। भाई हमारे यूपी में ईडा एरिया में, ईडा एरिया यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण वाला जो एरिया है, इसमें 3 हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिख गई है भाई। और ये हरी झंडी दिखने का मतलब ये है कि अपने यूपी में अब जो ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट की एक नए युग की शुरुआत हो गई है। ये बसें आपको पता है बिल्कुल ही प्रदूषण मुक्त हैं, एक बार में 750 किलोमीटर तक का सफर कर तय कर सकती हैं। और आपको पता है कितनी खुशी मिलती है ये सुनकर कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा इससे, पर्यावरण को शुद्ध करने में ये अपना योगदान देने वाली है। आपको अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बसें

चीज़ है, ये कैसे काम करती है। इनको बहुत ही मॉडर्न बसों का निर्माण मतलब एनटीपीसी दादरी के द्वारा डेवलप किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित जो मोबिलिटी स्कीम है उसके तहत इन बसों को बनाया गया है। और डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बिल्कुल अपोजिट हाइड्रोजन जो है फ्यूल सेल टेक्निक पूरी तरह से इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। इन बसों के एग्जॉस्ट जो होते हैं साइलेंसर जिनको कहते हैं उससे हानिकारक धुएं के बजाय सिर्फ पानी की बूंदें मतलब भाप बाहर निकलती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इससे जो एयर पोल्यूशन है उसको जड़ से ख़त्म करने का इफ़ेक्टिव प्रयास किया जा सकता है ना, एकदम ज़बरदस्त ऑप्शन। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि अगर इसके बारे में बात करें हम, मुझे सबसे ख़ास बात इसकी ये लगी कि ये जो बस है ना ग्रीन मोबिलिटी जो ये योजना बनाई है इसका सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें आपको पता है प्राकृतिक जल संसाधनों को छेड़ने के बजाय मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उससे पानी का इस्तेमाल किया जाता है।

और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अगर इसके बारे में बात करें हम, मुझे सबसे खास बात इसकी ये लगी कि ये जो बस है ना, ग्रीन मोबिलिटी जो ये योजना बनाई है, इसका सस्टेनेबल मॉडल है। इसमें आपको पता है प्राकृतिक जल संसाधनों को छेड़ने के बजाय, मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उससे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इन अगर ऐसी बसेस चलने लग गई ना, तो हर दिन 2080 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। ये मुझे इसकी सबसे खास बात लगती है, और जिसका सीधा फायदा हमारे इन्वायरमेंट को मिलेगा। और ये मात्रा आप समझ रहे हैं, मतलब 2080 किलोग्राम ऑक्सीजन का मतलब है कि करीब हमने 1700-1750 पेड़ लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से हर साल जो हमारा वायुमंडल है उसमें घुलने वाले लगभग 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 हमारा होता है, निकलता है, उसको भी निकलने से रोका जा सकेगा। है ना, एकदम जबरदस्त स्कीम। और ये स्कीम मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई। और सबसे खास बात इन हाइड्रोजन बसेस की, वो भी एक और खास बात है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेंज के मामले में भी बहुत बढ़िया है। एक बार टैंक फुल कर दिया जाए इसका, तो फिर ये 750 किलोमीटर एक बार टैंक फुल करने में चल सकती है, और लगभग 40-42-45 की क्षमता है एक बस में, और एक बार में 56 किलोग्राम हाइड्रोजन भरा जा सकता है। मुझे तो ये स्कीम बड़ी पसंद आई, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा सुनकर के, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और बहुत ही फायदेमंद होता है अगर ये स्कीम, इस तरीके की हाइड्रोजन बसेस अगर चलने लगती हैं। तो ट्यून इन करके रखिए खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: और इसी के साथ 6:56 हो गए हैं और प्रोग्राम शामे अवध से हमें दीजिए जाने की अनुमति। अगला प्रोग्राम आपका अपना हेलो FM में। मिलते हैं समाचारों के बुलेटिन, यानी टॉप 10 समाचारों के बुलेटिन के उस पार।

0: नमस्कार, आप सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच गए हैं। श्री योगी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यीरा क्षेत्र में संयुक्त रूप से जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत जिले के वनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका निराकरण कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अयोध्या पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और प्रदेश के सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास को नई दिशा दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी डॉ सुधीर महादेव बोबडे की अध्यक्षता में आज जनभवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबंधन समिति की 52वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में निधि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों एवं योजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चौथे संस्करण के लिए देशव्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत आज नई दिल्ली में हुई। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपीआईटीएएस राज्य के औद्योगिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाला प्रमुख मंच बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर लखनऊ में श्रम और सेवा योजन विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जसपाल राणा के निधन पर शोक जताया। उन्नाव के थाना आसीवन क्षेत्र में आज गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इसी के साथ टॉप 10 समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा,
1: विरासत और स्वस्थ मनोरंजन की अनूठी पहचान। आकाशवाणी,
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान

संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे तथा सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अपना ध्येय पूरा करती रहे, इसी आशा के साथ मैं एसआर बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, आकाशवाणी के परिवार तथा असंख्य श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

0: 7:05 हो गए हैं, आपका स्वागत है, आपको प्यार भरा सलाम नमस्कार, खूबसूरत शाम है, गुड इवनिंग, और आपका अपना प्रोग्राम है हेलो एफएम। हेलो एफएम एक ऐसा प्रोग्राम है, फरमाइशी प्रोग्राम है, जिसमें आप सीधे हमें हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर कॉल करते हैं और अपनी फरमाइश कॉल पर बताते हैं। और अगर आप हमारे नए श्रोता हैं जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और अभी आपको हमारे स्टूडियो के नंबर्स याद नहीं हैं, तो आपको हम अपने स्टूडियो के नंबर्स बता देते हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं 2238845, 2238852। ये दो हमारे स्टूडियो के नंबर हैं। दोनों नंबरों में आगे आपको कोड लगाना होगा, वो कोड होगा 0522। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 2238845, 2238852, ये दो नंबर हैं, आगे कोड लगाना होगा 0522। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप अपनी फरमाइश यानी कि गाने की फरमाइश ऑन एयर हमें बता सकते हैं। हेलो एफएम प्रोग्राम का ये जो आगाज है वो हो चुका है, लेकिन हमें देखना होगा बिना देरी के जल्दी से कि हमारे साथ कौन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो,
1: ये इंतजार का दुख सहा नहीं जाता, तड़प रही हूँ आपकी मोहब्बत में अब रहा नहीं जाता, ये इंतजार का दुख सहा नहीं जाता, तड़प रही हूँ आपकी मोहब्बत में अब रहा नहीं जाता, पहली बार बात हो रही है आपसे, पहली बार बात हो रही है आपसे, इतना खुश हूँ मैं कि अब हमसे कुछ सहा नहीं जाता, इतना खुश हूँ मैं कि अब हमसे कुछ सहा नहीं जाता।
0: क्या बात है, क्या बात है, मतलब इतनी खूबसूरत शायरी आपने बना कैसे दी एकदम?
1: ऐसे ही बना लिया मैंने, हम शायरी बनाते रहते हैं।
0: सही बताइए, सही बताइए, आपने शायरी खुद बनाई है कि आपने इंटरनेट से?
1: हमने खुद बनाया है, लोग हम शायरी बनाते हैं।
0: वाह,
1: और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम अलैकुम, मेरा प्यार भरा।
0: क्या बात है, क्या बात है, मतलब
1: कैसी है?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आपकी शायरी सुनकर बहुत खुश हो गई हूँ एकदम,
1: और हम आपसे बात करके बहुत खुश हो गए, आपसे मैं पहली बार बात हो रही है।
0: क्या बात है, पहली, चलिए ठीक है, पहली बार आपकी हमसे बात हो रही है, आप एक्साइटेड होंगे, लेकिन आपने हमसे पहली बार बात करके हमें खुश कर दिया एकदम, अपनी तरफ कर लिया आपने।
1: हम भी बहुत खुश हैं, आपसे बात हो गई, आपने मेरा फोन रिसीव किया है, इसके लिए थैंक यू मैम। जब भी आप आती थी स्टूडियो में प्रोग्राम करने के लिए, हम सोचते थे भी मैम से बात हो जाती।
0: अरे वाह, लेकिन देखिए फोन ये इत्तेफाक था, आज आपकी बात होनी थी। एक्चुअली क्या है कि हम नहीं पता कर सकते कि किसका फोन आ रहा है, हमें बस जो है मतलब जो फोन बजता है, आप इत्तेफाक से हमने फोन उठाया और कॉल किया, उस पर आप थी कॉल पर।
1: जी मैम,
0: और क्या चल रहा है इस समय? आज तो मौसम काफी अच्छा है
1: मैम, बहुत अच्छा है, रात को बारिश हुई थी, आज भी दिन में थोड़ी सी बारिश हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
0: कहाँ से बोल रही हैं आप, हम भूल गए।
1: जिला सीतापुर कुचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रही
0: हूँ। शमा जी, आपके यहाँ सीतापुर में कल बारिश हुई थी?
1: हाँ, रात में बारिश हुई थी, और अभी 4 बजे की थोड़ी बारिश हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी, पर मौसम बहुत अच्छा, पूरा दिन बादल छाए और हवा चली बहुत अच्छा, गर्मी बिल्कुल नहीं थी।
0: वही तो हम सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों, लखनऊ में कोई भी बारिश की एक बूंद नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, मौसम लेकिन आज यहाँ भी अच्छा था, टेम्परेचर थोड़ा गिरा है, आज भीषण गर्मी नहीं थी। चलिए, और हो गया आपका डिनर का तैयारी?
1: हाँ हो गया मैम, आइए आप भी।
0: अरे वाह, क्या
1: सीतापुर आके घूम जाइए,
0: बिल्कुल आएंगे, सीतापुर आएंगे, घूम जाएंगे, आप इतनी मोहब्बत से बुला रही हैं, हमें तो वैसे भी घूमने का शौक है।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: आप क्या करती हैं समाजी?
1: आपसे

0: मोहब्बत और आपसे प्यार।
1: अरे वाह। अब देखिए, आपने ये बात बोली, अगर यही बात कोई अगर आदमी हमसे कह देता तो हम गुस्सा हो जाते फिर। सही बात है कि नहीं? मतलब देखिए, आप हमसे बोल रही हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं, अपनापन है, प्यार है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी, कोई मर्द आकर ये सब कह दे तो फिर समझिए उसको कितना गलत समझ लिया जाएगा, है नहीं?
0: वो बात सही है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, और कोई बात आपको कहनी हो?
0: और गाना देती समझ जाता हूँ।
1: और गाना आपने जो इतना खूबसूरत, मतलब मेरी पसंद का, मतलब ऐसे गाने एंजॉय करने में मजा आता है, तो मैं जानना भी चाह रही हूँ कि किसको डेडिकेट कर रही हैं आप ऐसा गाना।
0: सबसे पहले आपको, फिर
1: चलिए ठीक हो गया
0: छोटी बहन है सरन्नुम अंसारी, फिर
1: जी।
0: वकील अहमद भाई, मोहम्मद सैयद भाई, गुलाब साहब, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, पिंकी पिंकी, महद अंसारी, हरदे पूनम, और अकबर अंसारी, बाबू अंसारी, मोहम्मद सद्दाम भाई, सत्य कुमार भाई, और जावेद अख्तर भी, मोहम्मद अमीन, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी सुनने वालों को, सिराजुद्दीन भाई को भी, मोहम्मद फैज भाई को भी।
1: क्या बात है, इतने सारे नाम आपने याद करके रखे हैं।
0: याद करके ये जितने हमने मैम नाम लिया है, हमारे भाई बहन सब लोग तो हमारा नाम लेते हैं, और प्रिंकी भी हमारा नाम लेती है, मोहम्मद राशिद भाई भी।
1: बताइए, हमारी मतलब इतने सालों में हमारी आपसे बात आज पहली बार हो पा रही है।
0: पहली बात हो
1: बाकी सारे आरजे से आपकी बात हो चुकी है?
0: हाँ, हमारी और मोना मैम से भी बात करने की बहुत ही तमन्ना है, कभी बात नहीं हुई है। जी
1: मोना मैम से? चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात बता दें मोना मैम को।
0: हाँ, मोना मैम से भी लोग बुलाएंगे।
1: लेकिन लेकिन हम नहीं, हाँ ये भी बात हो जाएगी, लेकिन ये जरूर कह देंगे कि आप याद कर रही थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप आए और आपसे ही बात हो पाए। वो तो इत्तेफाक होगा, किसी दिन हो जाएगा इसी तरह।
0: मोना मैम का भी इंतजार कर रही हूँ, देखो कब आती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाएंगी वो भी आपको।
0: जी
1: चलिए ठीक है, आपने नाम भी शामिल कर लिए, आपका गाना भी निकल गया है एकदम तैयार।
0: ओके बाय।
1: ठीक है समा जी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। और समा जी की पसंद का तो ये गाना हमने ऑन एयर करने के लिए बिल्कुल रेडी करके रखा है, और हमने आपको नंबर्स भी बता ही दिए थे कि जो भी आप हमें कॉल करना चाहें, नए श्रोता हैं अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो गाना है समाजी की पसंद का, आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के उस पार। आप ट्यून इन करके रखिए, और इस कॉल के बाद, हो सकता है इस फरमाइश के बाद आपकी फरमाइश की बारी हो।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: हेलो, मैं हूँ अरुषि निशंक, एक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: आकाशवाणी की 90वीं सालगिरह पर हम कृतज्ञ हैं अपने श्रोताओं के, जिनका प्यार हमें एक सच्चे हमसफर की भांति अनवरत मिलता रहा।

0: समय बदला, दौर बदले, पर एक आवाज हमेशा साथ रही।
1: 90 वर्षों से सतत जनसेवा में तत्पर
2: आकाशवाणी।
3: अपने बधाई संदेश के साथ है पद्मश्री डॉक्टर के ठकराल।
4: मैं डॉक्टर के ठकराल आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आकाशवाणी की मधुर ध्वनि यूं ही जन जन तक ज्ञान, संस्कृति और प्रेरणा पहुंचाती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम, साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आज लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
2: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। इसी क्रम में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने पीलीभीत के बनकटी में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। श्री प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों को पक्का मकान देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया

0: भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
2: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
1: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट का कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एनटीए ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ वर्कशीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है।
3: इसका मुख्य उद्देश्य एक साइबर वॉरियर्स की ट्रेनिंग है। साइबर प्रोटेक्शन की हर एक देश को इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। मैं एडमिशन जेई एडवांस के द्वारा नहीं होगा, एडमिशन एक हैकाथॉन मुख्यतः के द्वारा होगा और इसका उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि प्रारंभ से ही इस दिशा में रुचि रखते हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं।
1: केंद्र सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में आज 4 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई जब एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार किया है अनुकूल वातावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में

एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए विकास यात्रा पर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। कहा, नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी ये पहल। और आईआईटी कानपुर में जुलाई से शुरू होगा साइबर सिक्योरिटी स्नातक पाठ्यक्रम। साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित करेगा ये कोर्स। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। वेलकम बैक आपके अपने प्रोग्राम हेलो FM में, और आपके अपने प्रोग्राम इसीलिए क्योंकि आपकी अपनी फरमाइशें हैं और आप फ़ोन करते हैं और ख़ुद अपने मुंह से अपनी ज़बान से हमें बताते हैं कि हमें ये गाना सुनना है। खैर, बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम हेलो FM में कि अगले श्रोता, अगले कॉलर कौन जुड़ गए हमारे साथ। हेलो
1: जी मैम। हेलो।
0: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं?
1: बोल रहे हैं
0: जी
1: नागेश कुमार बोल रहे हैं।
0: नागेश कुमार जी सीतापुर से।
1: जी मैम।
0: नागेश जी, आपने पहले भी कॉल मिलाया है क्या FM में?
1: नहीं नहीं मैम, पहली बार मिला।
0: आज पहली बार आपसे बात हो रही है ना जी? आप कब से सुनते हैं नागेश जी FM?
1: मैम बचपन में छोटे थे तब जी। जब दादी और ही सुनती थी वो कौ बड़ कौ जो आते थे।
0: जी जी जी जी जी,
1: मैं शुरुआत कर दी FM को लगने लगा है।
0: आपकी आवाज थोड़ी कट सी रही है,
1: नेटवर्क नहीं मिल रहा है मैम।
0: हाँ, नेटवर्क समझ तो आ रहा है लेकिन बहुत अच्छे से कट रही है थोड़ी थोड़ी आवाज। तो आप कैसे सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं कि रेडियो पे?
1: मैम मोबाइल पे सुनते
0: हैं, ऐप के माध्यम से है ना?
1: जी मैम, रेडियो ऐप के माध्यम।
0: और आप करते क्या हैं?
1: मैम पढ़ाई करते हैं।
0: अच्छा, अभी आप कॉलेज में हैं?
1: जी मैम कॉलेज में।
0: अरे वाह, चलिए BSc कर रहे हैं आप?
1: जी मैम।
0: अच्छा, तो मतलब आपका ये जो FM है, मतलब तब आप कब कब इसको सुनते हैं? मतलब मेरे हिसाब से आपको जब टाइम मिलता होगा तो वो कब कब, जैसे आप किस चीज़ के लिए, जैसे खाली इंटरटेनमेंट के पर्पज से या न्यूज़ के लिए, या कैसे आपको क्या लगता है?
1: मैम इंटरटेन के लिए और इसके लिए दोनों की चीज़ों के लिए।
0: अच्छा चलिए ठीक है। और आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाल दिया है, लेकिन ये गाना आपने क्यों, मतलब मेहंदी लगा के रखना, मतलब कोई खास बात?
1: कॉलेज में जब लगा था
0: जी,
1: इसीलिए मैं सुनना चाहती हूँ।
0: चलिए ठीक है नागेश जी, बहुत अच्छा लगा। और इतने शाई मत हुआ करिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से शाई हो रहे हैं बात करने में।
1: जी मैम पहली बार बात किया, हार्ट बीट बढ़ जाती।
0: अरे कोई बात नहीं नागेश जी, हम स्टूडियो के इस पार बैठे हुए मनुष्य ही तो हैं, इंसान ही तो हैं आपकी तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिल्कुल नर्वस मत होइए, और हमारी दुआ है कि आप पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए, आपका मन लगा रहिए, और आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो सेट पर भेज देते हैं। बाकी कोई और बात आप कहना चाहें?
1: जी मैम
0: कोई और बात तो नहीं कहनी आपको?
1: जी मैम कुछ नहीं कहनी।
0: चलिए ठीक है, फिर होती है आपसे बात। आप मिला

0: करिए कॉल, ठीक है? आपकी जो डर है वो दूर हो जाएगा आपका।
1: जी
0: चलिए ठीक है, ठीक है नागेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। नागेश जी की पसंद का ये जो गाना है ये आपके रेडियो सेट पर हम भेजते हैं, और इसके तुरंत बाद आते हैं आपकी आपकी फरमाइश लेकर।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 7:40 हो गए हैं और इस समय प्रोग्राम हेलो एफएम चल रहा है. आपके जो कॉल्स हैं उनका सिलसिला जारी है और अगली कॉल हमारे साथ, अगली कॉल पे कौन आए और कौन है वो श्रोता, उसके लिए हमें तुरंत देखना पड़ेगा कौन है. हेलो.
1: हेलो, सलाम वालेकुम
0: जी. सलाम, कौन बोल रहे हैं? साहिबा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए.
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ. और क्या चल रहा है आपके यहाँ इस समय, कौन सी तैयारी कर रहे हैं?
1: मैम, इस समय तो आपका फोन जो है रेडियो सुन रहे थे और जो फोन लगा रहे थे.
0: ओके. तो और मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: मैम, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है.
0: आप कैसे सुनती हैं साहिबा? आप रेडियो से सुनती हैं कि मोबाइल ऐप से सुनती हैं?
1: मैम, हम रेडियो से सुनते हैं, मोबाइल से भी सुनते हैं.
0: अच्छा, मतलब रेडियो में सभी सुनते होंगे, सब लोग मिलके.
1: जी मैम, सब लोग मिलके सुनते हैं.
0: अच्छा, आप क्या करती हैं? आप कॉलेज वॉलेज जाती हैं?
1: नहीं मैम, कॉलेज नहीं जाते.
0: अच्छा, चलिए, आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाल लिया है. और कोई बात जो आपको कहनी हो?
1: जी हम नाम लेना चाहते हैं कुछ लोगों से.
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए.
1: मैम, सबसे पहले आप
0: जी
1: माली भाई, जो
0: जी
1: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, वकील अहमद मंसूरी भाई, दादी अंसारी भाई हैं,
0: जी
1: अंसारी भाई हैं, जावेद अख्तर भाई हैं, सत्यम कुमार भाई हैं, राशिद अंसारी भाई हैं,
0: जी
1: लक्षा सिद्दीकी अख्ती हैं, शमा अख्ती हैं, महक अंसारी हैं, ताजिया अंसारी हैं, रिंकी अख्ती हैं, रोशनी दीदी हैं, प्रीति.
0: चलिए ठीक है. और
1: मैम, हमारी छोटी बहन से बात कर लीजिए.
0: हाँ हाँ बिल्कुल. आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है.
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी सलाम, कौन बोल रही हैं? नाम बताइए.
2: जी, मेरा नाम माहम अंसारी है.
0: माहम
2: जी,
0: हेलो, आवाज आ रही है?
2: जी आ रही है.
0: आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज?
2: जी बोल रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी.
0: हाँ हाँ आ रही है, आ रही. बोलिए, आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं?
2: जी हम जाते हैं कॉलेज.
0: कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: जी मतलब हमारा स्कूल कॉलेज एक ही में है.
0: अरे मतलब आप अपनी कक्षा बताइए, कौन सा, कौन किस क्लास में?
2: सेवेंथ में.
0: सेवेंथ में आप?
2: नहीं, इलेवेंथ में.
0: अच्छा, इलेवेंथ में. तब आपका स्कूल ही हुआ, ट्वेल्थ तक तो स्कूल ही होता है.
2: नहीं मतलब एक तरफ कॉलेज है और एक तरफ स्कूल है.
0: बढ़िया है, फिर उसी में कॉलेज भी हो जाएगा.
2: जी है कॉलेज, जी वो जो कॉलेज है वो बहुत अच्छा लगता है.
0: अच्छा,
2: हम लोग उधर ही ज्यादातर रहते हैं.
0: अच्छा, मतलब आप बंक मार के ज्यादातर कॉलेज की तरफ रहती हैं?
2: हाँ, क्योंकि इस वक्त अब छुट्टियाँ चल रही हैं.
0: जी
2: और गर्मी भी ज्यादा हो रही है.
0: जी
2: स्कूल खुलते हैं तो हम लोग ज्यादातर उधर ही रहते हैं.
0: चलिए, आपकी आवाज से पता चल रहा है कि आप बहुत बहुत अभी छोटी हैं, मासूम हैं.
2: दीदी आप खाते क्या, आपकी आवाज बहुत मीठी है.
0: क्या
2: आप खाते क्या, आपकी आवाज बहुत मीठी है.
0: कुछ खाने से थोड़ी आवाज मीठी होती है यार? नहीं होता है ऐसा, कुछ नहीं होता. हम दो समोसे खाए हैं दिन में.
2: समोसे खाए
0: और चटपटा है वो, तो उससे आवाज कैसे मीठी होगी?
2: आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए,
0: फिर उससे और मीठी होगी आवाज.
2: कड़वा खाने से शायद थोड़ा और सही हो जाए या मीठा. अभी हम जा रहे हैं रोड पे, ठीक है?
0: अच्छा,
2: मेरी मम्मी की एनिवर्सरी है.
0: अरे वाह, चलिए आपके माता पिता को हैप्पी एनिवर्सरी.
2: जी अभी हम लोग अभी जा रहे हैं, आप भी आ जाइए.
0: बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिलेगा तो जरूर होगा ऐसा कुछ.
2: हमें तो पता भी नहीं था और जब दीदी ने बताया तब हम ध्यान आया.
0: अच्छा,
2: हम इन चीजों को नहीं मतलब ज्यादा याद रखते.
0: अच्छा,
2: बस केवल अपना बर्थडे याद रखते हैं.
0: बहुत सेल्फिश वाली बात हो गई है कि अपना बर्थडे याद रहता है लेकिन एनिवर्सरी में इन चीजों को याद नहीं रखते. मम्मी पापा की एनिवर्सरी तो याद ही होनी चाहिए.
2: हमें पता ही नहीं था कभी.
0: चलो अब याद हो गया, अब हर साल मनाती रहना. चलिए माहम, ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके हमें. और दुआ है हमारी कि आप खूब पढ़िए और आगे बढ़िए और फिर आपसे बात होगी. और आपकी आवाज भी बहुत मीठी है. और माहम की पसंद का और इनकी बहन की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर है. इसके बाद तुरंत हम वापस आते हैं.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM।

0: 7:50 हो गए हैं और ये जो प्रोग्राम इस समय चल रहा है ये है हेलो एफएम, आपकी फरमाइशों का प्रोग्राम, आपकी पसंद का प्रोग्राम। और बिना देरी के हम देखते हैं कि कौन जुड़ गए हैं हमारे साथ, अगले कॉलर। हेलो
1: हेलो हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी सलाम, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं तरन्नुम अंसारी काजी कमालपुर से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा
1: मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पहली बार आपसे बात हो रही है। मेरा फोन जनवरी में लगा था आपके पास।
0: इससे पहले जनवरी में?
1: आपसे नहीं हुई थी, सर से हुई थी, पर मेरा जो एक कॉल जनवरी में लगा था।
0: अच्छा चलिए, आप कहाँ से हैं आप?
1: मैं काजी कमालपुर से बोल रही हूँ, बेलगावा गांव से।
0: अच्छा कमालपुर।
1: जी काजी कमालपुर।
0: अच्छा और कैसा है वहाँ का मौसम इस समय?
1: मेरे वहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है, क्या हवाएं हैं,
0: बहुत ठंडा है
1: मौसम ठंडा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ऐसे मौसम में।
0: अरे वाह, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने बताई। मतलब इतने दिनों से आपके यहाँ गर्मी के बाद राहत मिली है कि मतलब अच्छा ही था?
1: क्या बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत काफी गर्मी पड़ रही थी, फिर बारिश हुई, हवा ठंडी ठंडी चल रही, तो बहुत सुकून मिल रहा है।
0: अच्छा और
1: मुझे गाना सुनना है, रूठे तो रूठे ये सारा जमाना, इश्क चुनरिया और के दिल में आना।
0: जी इश्क चुनरिया आपकी पसंद का गाना हमने निकाल लिया है। और आप ये बताइए
1: जी,
0: आप कैसे सुनती हैं एफएम? फोन
1: तो
0: पे?
1: रेडियो है ना, उसी से सुनते हैं।
0: और क्या करती हैं तरन्नुम जी आप?
1: कुछ नहीं, अपने घर पे रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, बस यही काम है।
0: शादी हो गई आपकी?
1: मेरी शादी हो गई, 4 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे एक लड़का है।
0: जी तो कुछ नहीं आपने ऐसे बोला, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका एक लड़का है और आप पाल रही हैं।
1: 3 साल का हो गया है
0: जी, घर
1: से हस्बैंड और मेरा एक लड़का।
0: जी तो घर संभाल रही हैं आप, आप होम मेकर हैं, और इससे अच्छी और इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है?
1: बस घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं, काम करते हैं, यही सब।
0: नहीं तो घर संभालना तो बहुत बड़ा टास्क है,
1: यही बस है मेरे पास।
0: चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी पसंद का गाना भी हमने निकाल दिया है। और कोई बात आपको कहनी हो?
1: और मैम मेरी वो बड़ी बहन है, जिला सीतापुर पचेनापुर समा परवीन मस्जिद के पास से, उनको गाना सुनाना चाहते हैं। और मेरे भाई हैं फैज अंसारी।
0: अच्छा
1: और फिर आपको भी, सभी सुनने वाले को।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरन्नुम जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर कभी आपसे बात होगी। तरन्नुम जी की पसंद का ये गाना हमने आपके रेडियो सेट पर भेजने के लिए बिल्कुल तैयार किया है, लेकिन इसी गाने के साथ हम आपसे ये कहेंगे कि अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। प्रोग्राम हेलो एफएम को यहीं वाइंड अप करते हैं, अगली आवाज़ आपसे जुड़ने के लिए कर रही है आपका इंतज़ार। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप अनुमति, फिर कभी किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में आपसे बात होगी, आपके रेडियो सेट पर हम पहुँचेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार। रात के 8 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और नेतृत्व

तो क्षमता का परिचय दिया है। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री ने लोक भवन में आयोजित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है और आज देश का प्रत्येक नागरिक नए भारत का हिस्सा होने पर गर्व महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जीरा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट पर संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और मांग के अनुरूप बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष देश और प्रदेश में सुशासन, किसान कल्याण और जनसेवा के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हुए हैं। श्री सिंह आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैनेडी हॉल में आयोजित मेरठ, अलीगढ़ एवं आगरा मंडल के किसानों के सम्मेलन एवं औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है। सुल्तानपुर में आज 27वीं अंतर जनपदीय लखनऊ जोन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि इस प्रतियोगिता में लखनऊ जोन के 9 जनपदों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान लगभग 110 खिलाड़ी महिला एवं पुरुष वर्ग की वॉलीबॉल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

और इसी खुले हुए दरवाजे से झरोखे से गुलशन में खुशबुओं में आए हैं हम नहा के, एक ने हमें भी देखा है मुस्कुरा के। शाम से हवाएं थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हो चली है, सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी खो चुका है और वो जो सुनहरापन बिखरा था फजाओं में अब धीरे धीरे थोड़ा सा सुरमई हो गया है। गलियों की भीड़ धीरे धीरे सिमट रही है आगोश में और जो थकन है वो भी सिमटेगी, वो भी खत्म होगी, उसका भी वक्त आएगा और हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। मुस्कुराते हुए वक्त की शफाक दामन में बहुत सारी खुशबुओं की सौगात लेकर, खूबसूरत लफ्जों की रवानी के इस सफर में मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: सुना है लोग उसे आग भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं तुम्हारे शहर में। मुसाफिर थक तो गया है, तो बस इस थकन को भी ऐसे ही दूर किया जा सकता है शायद। सुना है उसको भी शेरो शायरी से है शकफ, सो हम भी मोजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है जब से हमाइल है उसकी गर्दन में, मिजाज और ही लालो गुहर के देखते हैं। बस एक निगाह से लुटता है काफिला दिल का, सो रहे खान तमन्ना भी डर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। कहानियां ही सही, सब मुगालबे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। और जब कोई इस तरह की चीज देख ली है आपने, तो क्या बचा है बाकी और देखने को।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
4: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के

लेकिन उस रोशनी में धीरे धीरे बहुत सारे चेहरे धुंधला गए और फिर गम को गले लगाने की आदत सी हो गई। गम को गले लगाने की आदत सी हो गई, दिल को फरेब खाने की आदत सी हो गई। जब से हुए हैं चांद सितारे भी बदगुमा, दागों को टिमटिमाने की आदत सी हो गई। जहन में सुलगते अनगिनत ख्वाबों की तरह जिंदगी की राहों पर इंसानों का रेला तो है, लेकिन इस कयामत खेज भीड़ के बीच भी ये मन बिल्कुल अकेला हो जाता है। लेकिन अगर मन ईमानदार है तो यकीन जानिए, इस तन्हाई को चीर कर कोई आएगा और आंखों में लिखी हुई तहरीर पढ़कर सुलझा देगा उलझा हुआ हर धागा। और तब तुम उसे रोक लेना, जाने मत देना, गले से लगा लेना उसे। आठ बजकर 28 मिनट और 45 सेकेंड हो रहे हैं। सोचता हूं कि जमाने से किनारा कर लूं और अब इसके सिवा दूसरा चारा भी नहीं। क्या करूं जी के जमाने में कि अब तेरे बगैर एक नाकामी मोहब्बत का गुजारा भी नहीं। आप शार सुन रहे हैं, आप 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल हसन के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब यारी।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

कोई आया नहीं है, लेकिन इंतजार जो है वो कभी खत्म नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उम्मीद है तो इंतजार है, उम्मीद है तो धड़कन भी है, उम्मीद है तो खुशियां भी हैं, उम्मीद है तो जिंदगी भी है, उम्मीद है तो ईमान भी है। तो बस इस उम्मीद को कभी जाया मत होने दीजिए, बने रहने दीजिए उस धड़कन की तरह जो आपके रग रग में धड़कता है, वो इंतजार, और पूरा भी होगा आपका इंतजार। 8:40 और 47 सेकंड हो चुके हैं। थोड़ी देर में हम समाचार संध्या के लिए आपको दिल्ली ले चलेंगे, लेकिन 9 बजे लौट आएंगे पॉप टाइम के साथ, और जब 10 बजेगा तो फिर एक खूबसूरत एक महक आप तक पहुंचेगी रजनीगंधा की, यानी देर तक और दूर तलक चलेंगे आपके साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए आबशार से अनवारुल हसन को, लौटते हैं बहुत जल्दी। शब्बा खैर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों

0: प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना,

0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाज

0: जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari.

0: Europe and USA, built mostly on government support without any venture capital funding. Talking exclusively to Akashvani News, co-founder Ravi Kiran spoke about how the government platform gave their innovation the visibility.
1: When we started, the early stage startups were given a high priority, and the government was focusing more on early stage startups, and government is learning very quickly. Modi ji has started putting a lot of efforts towards not just early stage startups but also the mid stage.
0: It may be noted that India-France Year of Innovation, of which this summit is a centerpiece, seeks to deepen collaboration between the two nations in emerging technologies, startups and scientific research. This is Shailesh Menon, Akashvani News, Nice, France.
2: A Seoul court has sentenced former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison today after finding him guilty of ordering drone incursions into North Korea to escalate tensions and justify his December 2024 martial law declaration. The Seoul Central District Court convicted the jailed former president on charges of benefiting the enemy and abuse of power. Former Defense Minister Kim Jong-un also received a 30-year sentence for his role in the operation. On to sports. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-finals of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Shen Tzu-yu in a one-sided quarterfinal clash today. Sindhu will next face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final match. Yamaguchi defeated India's Tanvi Sharma in the quarterfinal clash today. The 10th edition of the ICC Women's T20 Cricket World Cup will begin tonight, with hosts England taking on Sri Lanka in the opening match of the tournament at Edgbaston, Birmingham. The match is scheduled to begin at 11 p.m. Indian Standard Time. Indian women's team will start their campaign against arch rivals Pakistan on Sunday. In FIFA World Cup 2026, co-hosts Canada will be up against Bosnia and Herzegovina in a Group B clash at Toronto Stadium tonight. The match will start at 12:30 a.m. Indian Standard Time. The encounter marks the first ever World Cup meeting between the two nations. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with strong gains of around 2%, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya tomorrow. Heavy rainfall is also expected over other parts of northeast India, Bihar, Kerala, Mahe, Odisha and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. The Met Department said that the southwest monsoon has further advanced into the entire northwest Bay of Bengal, some more parts of West Bengal, Bihar and some parts of Odisha and Jharkhand. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. That is all in the news at 9. Good night.
3: जी ने कृष्णकांत सिंह जी ने कैसरगंज बहराइच से ईमेल किया है। आय हाय हाय क्या बढ़िया से खूबसूरत से गिटार और सितार और पता नहीं क्या क्या बना के भेजे हैं। फूल भी हैं, गुलदस्ते भी हैं और गुला क्या कहते हैं गुब्बारे भी हैं ना। लिखते हैं कि पॉप टाइम प्रोग्राम जैसे ही शुरू होता है ऐसा लगता है जैसे सिंदूरी शाम के समय किसी म्यूजिकल पार्टी में बैठे हों। आए हैं क्या बात है, क्या स्क्रिप्ट लिख दी आपने, तो कभी कभी लिख के भेज दिया करिए, हम अमन ना करेंगे तो हम आप ही की स्क्रिप्ट पढ़ दिया करेंगे। आप जब अपने शेर व शायरी से प्रोग्राम में और ज़्यादा रोचकता लाते हैं तो बेहद पसंद आता है। एक घंटा कैसे निकल जाता है इस मस्ती भरे प्रोग्राम को सुनकर पता ही नहीं चलता। बिल्कुल पता नहीं चलता, ये सही बात है, और हम लोगों को पता नहीं चलता, इतने काम होते हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ बोलने के साथ साथ ये लिखो तो वो लिखो, तो ये भरो तो वो भरो, है ना, वो पानी अलग पीते जाओ, हम पानी पता है आपको पीते रहते हैं बैठ बैठ के, है ना, तो उसमें भी मेरा टाइम बहुत जाता है। रजनीश पासवान जी आपका भी मेल आ चुका है और लिख रहे हैं कि रजनीगंधा का इंतजार है, आए हाय क्या बात है, देखिए अभी से इंतजार कर रहे हैं रजनीगंधा का, 10 बजे शुरू होगा भाई, 10 बजे शुरू हो नहीं होगा बल्कि 10:02-03 पे शुरू होगा, क्योंकि 10 बजे तो समाचार पढ़ेंगे, उसके बाद रजनीगंधा करेंगे हम, है ना। और लॉट्स ऑफ लव सर सादत, अरे भाई चरण स्पर्श नहीं, भाई खुश रहिए आप, बस गले से लग जाइए, आप पास होते तो गले से लगा लेते आपको, आपने मुझे शोमैन की उपाधि दे दी है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। पवन कुमार जी आपका भी मेल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक कहते हैं गौनवी का क्या कहते हैं पता नहीं, गाना बजा देंगे। नमस्ते सर, मैं पवन कुमार ग्राम सिंहपुर सिदौली सीतापुर से, सर आप कैसे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक गाना कौन सा बजाना था, ये वाला, अरे अभी तक एक ही गाना बजाया भैया, तो ये वाला गाना बजा रहे हम, डांस मेरी रानी वाला, देखिए आ गया।

भाई कितनी बुरी बात है ये, देखिए कि रानी भी बता रहे हैं उनको और डांस डांस डांस नाच नाच, रानी से कौन कहता है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि डांस करो नाचो, है ना। हमें नहीं पसंद ऐसे गाने, नहीं तो 9:20 हो गए। चलिए आपके बहुत सारे मेल और भी हम तक पहुंच चुके हैं, अरे बहुत ज़्यादा है भाई।

ये कौन है? रजनीश पासवान जी, डिनर फॉर यू। आपने डिनर, अरे वाह, खाना भेज दिया है। बताओ कितनी अच्छी रोटी बनी है, भरता वरता भी है आलू का इतना अच्छा, और ये दाल, वाह वाह क्या दाल बनाई है, वही चटनी उटनी रखी है क्या, और नींबू भी है। जगदीशपुर खुर्द से ये भाई खाना आपने मुझे भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो इसी में खुश हो गए। थोड़ी थोड़ी देर में इसको देख लिया करेंगे, इस मेल को हम अलग एक विंडो में खोल रहे ले रहे हैं, और जब रात 10 बजे वाला प्रोग्राम करेंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में इसको देख लेंगे, तो एनर्जी बनी रहेगी। ताली वंसारी ने हमको मेल किया राजा कटरा बाराबंकी से, वेलकम अनवारुल सर जी, लिसन नाउ और गर्दा वाला प्रोग्राम, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। सुधांशु जी का भी मेल आ चुका है, राधे राधे। सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप बहुत दिन बाद आए। हम आप बुलाते तो हम पहले आ जाते हैं, नहीं तो आज कभी गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी आइए। सर मैं दिन भर रेडियो नहीं बजाया क्योंकि हमारे गाँव में एक लोगों को करंट लग गया था और कोई दुर्घटना भी हो गई, और एक बुरी खबर भी आपने लिखी है, चलिए भाई सो सॉरी, और इसीलिए आज आपने रेडियो बाजा दिन भर नहीं बजाया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे ही हूँ जैसा बस आप हमें छोड़ गए थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के लिए अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं आपने भेजी हैं। चलिए हमने पल दी हैं, आपने भेजी हैं तो, है ना। और अगला मेल पल देते हैं वैभव प्रकाश जी का, आपकी आवाज़ और अंदाज के भूखे हम सभी के प्यारे आरजे को और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आजकल हम FM को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में आपसे मिलकर सारी कमी पूरी हो जाती है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव प्रकाश सिंह जी ने नागपुर से, महाराष्ट्र से हमें मेल किया है, और आपको चीज़ें पसंद आती हैं, और ख़ासतौर से अगर मेरी बात आप कर रहे हैं तो हम इसके लिए शुक्रिया आपको कहते हैं, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। बाबू अंसारी साहब, आपका भी मेल आया है अहमदपुर बाजार बाराबंकी से, देवकाली भी है ना। अस्सलाम वालेकुम माई डियर अनवारुल हसन सर, कैसे हैं आप? प्रोग्राम बिल्कुल हनहनवा लग रहा है, और कुछ मेरे रेडियो दोस्त हैं उनका भी नाम ले लीजिएगा, भाई आपने लिखे हैं बिल्कुल ले लेंगे, कुलदीप गुप्ता, फैज अंसारी, महेंद्र दीपन जी, आई लव आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये प्यार मोहब्बत जो आकाशवाणी से है, जो रेडियो से है, जो रेनबो से, इसको ऐसे ही बना कर रखिए प्लीज़। और अगला मेल है विनीत कुमार जी का, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले अनवारुल हसन जी को स्वीट स्वीट गुड इवनिंग, आपकी बोली बड़ी मीठी है, बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, हमें तो नहीं दिख रहे, हाँ रजनीगंधा में तो रजनीगंधा के फूल लाएंगे हम। आज सुपरहिट आप सुपरहिट प्रोग्राम करते हैं सर, दो लाइन ही मेरी तरफ से आपके लिए, हंसते रहें आप हजारों के बीच में जैसे हंसते हैं फूल बहारों के बीच में, और हमारे भाई बहन ईमेल भेजते रहें FM आकाशवाणी लखनऊ के बीच में। और आज़ाद सिमरी में ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, संतोष मौर्य हरदोई, ममता हरदोई से, संजय अतरौली संडीला, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, इन लोगों के भी नाम आपने लिख दिए हैं। गुलफशा सिद्दीकी, आपका भी मेल पढ़ देते हैं, अस्सलाम वालेकुम अनवारुल भाई, मैं गुलफशा सिद्दीकी संडीला से, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई इसके लिए, हमें कोई अवार्ड वार्ड नहीं मिलना चाहिए इसके लिए, इतनी तारीफें आ रही बताइए, सब बेकार जा रही हैं आपकी तारीफ। बहुत अच्छा, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। पहले ये बताइए कि आप इतने दिन से गायब कहाँ थे, प्लीज़ जल्दी जल्दी आया करें, हम तो कई चक्कर लगाए यहाँ, ये स्टूडियो नहीं खाली था, यहाँ कोई और दो बैठा उसको थोड़ा हटा देंगे हम, नहीं तो करिए आया करिए। साहिब अंसारी, साजी अंसारी, शमा परवीन, रोशनी रावत, बबीता राव, हम सब सुन रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सब सुन रहे हैं। महेंद्र दीपन जी, आपको भी पढ़ देते हैं, आपका भी मेल आ चुका है, सादर प्रणाम, आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं महेंद्र दीपन, गांव रूड़, जिला नागौर, राजस्थान से हूं, और आज भी हमारा पसंदीदा प्रोग्राम रेनबो कैफे पूरी शिद्दत से सुन रहे हैं, वैसे आज पॉप टाइम आप तक पहुंच रहा है, आपकी प्रस्तुति हमेशा की तरह आज भी लाजवाब है। सर आज मेरे घर पर एक छोटा सा खुशनुमा प्रोग्राम रखा है, घर में मेहमान आए हुए हैं, और हम सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट, अब कुछ खाने पीने की बात होगी, देखिए आगे
पनीर की सब्जी, स्पेशल दाल बाटी बनाई गई है। मेहमानों की खातिरदारी में थोड़ा व्यस्त ज़रूर हूँ, लेकिन आपके इस शानदार प्रोग्राम को मिस करना मुझे मंजूर नहीं था। सर जी, दावत का आनंद तो तभी दोगुना होगा जब आप भी हमारे साथ इस मेहमान नवाजी में शामिल हों। हालांकि आप दूर हैं, लेकिन आपकी आवाज़ हमारे घर के सेलिब्रेशन में चार चांद लगा रही है। और आपने जो ये फ़ोटो भेजी है, आय हाय हाय, पनीर की सब्ज़ी है, पनीर की सब्जी है, वो पता नहीं क्या क्या पड़ा, क्या कलर आया है भाई, वाह, कौन बना रहा है इतना अच्छा खाना आपके यहाँ? बहन जी, बहुत खूबसूरत खाना, यानी स्वादिष्ट तो होगा ही होगा, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। एक मेल और पढ़ देते हैं भाई, और ये मेल हमारे पास लालपुर सीतापुर से अयोध्या प्रसाद जी ने हमको भेजा है, और साथ में जगमोहन जी भी हैं, ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और इन्होंने बहुत धीमा से, जैसे कोई धीमी आवाज़ में कहता ऐसा लग रहा है मुझे, इस तरीके से लिखा है, कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का भी नाम ले लीजिएगा, हमारा नाम तो बार बार जाता है, वो फिर हमसे नाराज़ हो रही हैं कि ये तो आप ही का नाम लिया जाता है, हमारा नहीं लिया जाता, तो आप क्यों नहीं लिखते थे अभी तक मेल? अब आपने मेल में नाम लिखा है तो हम बिल्कुल लेंगे। कुसुमा देवी जो हैं आपकी पत्नी हैं, और उन्होंने कहा है कि आप इनका नाम ज़रूर ले लीजिएगा, तो हमने देखिए नाम ले लिया है कुसुमा जी का भी। और एक बात और ये कह रहे हैं अयोध्या प्रसाद जी, कह रहे हैं कि कुसुमा जी से कह दीजिएगा कि पानी ज्यादा पिया करें। लीजिए भाई, कुसुमा जी पानी पिया करें, देखिए हम भी पानी पीते हैं, ये गाना बजाएंगे और हम पानी पहले एक घूंट पिए, गला तर कर लेंगे अपना, है? तो ये वाला गाना सुनिए, ये वाला बढ़िया सा गाना बजा रहे हैं, 9:27:36 हो चुके हैं, और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम इस वक्त पॉप टाइम अनवारुल हसन के साथ।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: जी 9:33 और 35 सेकंड हो चुके हैं और मैं सोच तो यही रहा था कि इस प्रोमो के बाद एक गाना आप तक सीधे पहुंचा दिया जाए, लेकिन आपकी जो भागीदारी है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मुझे लगा कि अगर मैंने गाना यूं ही बजा दिया तो फिर आपके ये जो मेल इतने खूबसूरत से हम तक पहुंच रहे हैं इसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या में इस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा है। इंद्रपाल जी आपको पढ़ देते हैं, अनवारुल भैया को प्यार भरा नमस्कार। आपकी मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, प्रस्तुत करने का ढंग बहुत ही निराला गजब का है, और ये ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से आपने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मेल के लिए और इस तारीफ के लिए भी। और आपका एक मेल और भी आ गया, चलिए एक मेल हमने पढ़ दिया तो आगे हम बढ़ जाते हैं। वकील अहमद साहब, हम आपका मेल पढ़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लगता है, गाने अच्छे बज रहे हैं, हमारे बारिश होने से, अच्छा आपके यहाँ बारिश हो गई यानी मौसम अच्छा हो गया है, और गज़ल हम तेरे, अरे ये तो 8 बजे बजाई थी हमने, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, आपको अच्छी लगी तो आपने अभी तारीफ़ कर दी। वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, ज़िला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी और गुलफिशा सिद्दीकी और एवन नवाब, ये नाम आपने साथ में लिखे हैं। शैलेश कुमार जी आपका मेल, नीलू शर्मा का मेल है ये, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से, अनवारुल सर को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। यासिर भैया, संदीप भैया, स्नेहा, सोनी, सारा, पीहू, रोशनी, बबीता, आरती, मनु, वंदना, कौसर, पूर्णिमा, गुलफशा सिद्दीकी, जीजी को मेरा नमस्कार बोल दीजिएगा। आए है क्या बात है भाई, नमस्कार जिनको आपने बोला है उनको सबको नमस्कार आपकी तरफ से बोल दिया है, कुछ और भी बताइए ना, कुछ और नहीं बताया है। अच्छा एक चीज़ और इससे मुझे याद आ गई, अभी अभी एक मेल में मुझसे जो रह गई थी इससे ठीक पहले, जो मैंने जो आखिरी मेल पढ़ा था लालपुर सीतापुर से अयोध्या प्रसाद जी का, उन्होंने बताया था कि वो जो नींद वाली बात थी ना, कि नींद जो है पूरी नहीं होती है वाली बात जो थी, तो उन्होंने उसका जवाब मुझे दिया था उस मेल में और वो मैं भूल भी गया था। वो कह रहे हैं कि अगर मोबाइल को थोड़ा सा माइनस कर दें, थोड़ा सा हटा दें, दूर अपने से रख दें, ख़ासतौर से रात को, तो नींद भी पूरी हो जाएगी। तो जो पानी पूरी और सारी पूरी और हलवा पूरी और ऐसे है ना।

हलवा पूरी हो, ये ऐसे नींद भी पूरी हो जाएगी। तो बस ये बात मुझे अच्छी भी लगी, इसीलिए मैंने छूट भी गई थी ये बात, मैंने फिर से दोहरा दिए। ईमेल द्वारा फरमाइशी गाने, भाई फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, आपने एक इसमें हेडिंग डाल रखी हुई है, गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी का ये मेल हम तक पहुंचा है, और इन्होंने 1 2 3 4 5 6 गाने एक साथ फरमाइश कर दी है। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे टिक कर देते हैं इस मेल को कि हमने इस पढ़ लिया है। नाम तो आपका ले ही लिया मैंने, अजय कुमार सिंह जी ने हमको ये मेल किया है और ये सीतापुर से आपने मेल किया है। लिखते हैं कि गुड इवनिंग प्रिया आरजे, कैसे हैं आप सर? प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना सुकून मिल रहा है आपकी आवाज़ सुनने से, और मौसम भी सुहाना। अरे वाह, हमारी आवाज़ से मौसम भी सुहाना हो गया, हमारे घर में नहीं होता है मौसम सुहाना हमारी आवाज़ से, बल्कि हम बोल देना तो मौसम और थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बाद हमें जाना भी है। ना जाना होता तो पता नहीं क्या क्या बता दें आपको हम। ठीक है, अब इस पे बात ना करिएगा, आप ये सोचिए कि बिल्कुल आपने कुछ नहीं सुना, ठीक, और हमने कुछ नहीं कहा ऊपर से। तो अजय जी आपका मेल पढ़ देता हूँ, आगे लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम और भी सुहाना बना देता है और गाने बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, 12 बजे तक रजनीगंधा सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं। तो चलिए भाई हमारे साथ रहिएगा, बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ रहेंगे, इससे हमें डर नहीं लगता है, लगता है कोई तो है जो बैठा है हमारे साथ सुन रहा है। मोहम्मद अफजल साहब का मेल है, अफजल शायद आपका नाम है, और फर्रुखपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर ज़िला सीतापुर से आप लिख रहे हैं, और प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, लिख रहे हैं कि भोजपुरी गाना हो जाता तो और मज़ा आ जाता। तो भैया आज क्योंकि पॉप टाइम है ना, तो सैटरडे या अगर ट्यूसडे यानी मंगलवार या शनिवार का दिन होगा तो उसमें आपको भोजपुरी गाना भी ज़रूर सुनने को मिलेगा, है ना। जितेंद्र नामदेव जी आपका भी मेल आया हम तक, साथ में बबलू नामदेव जी हैं, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, सौम्या नामदेव जी हैं, और आप ने लिखा है कि सर का प्रोग्राम का आगाज़ बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और सभी गाने बेमिसाल हैं। ग्राम वापोस खनौदी ज़िला शहडोल मध्य प्रदेश से आपने लिखा है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ से भी हमें सुन रहे हैं। आप हमें न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से काफ़ी दूर तक, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर इंटरनेट मौजूद है तो आप हमें सुन सकते हैं और उसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, तो फिर आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से हमें ज़रूर सुनिए। गाना हम ये वाला बजाएंगे क्योंकि मौसम अच्छे वाली बात अभी कही है इन्होंने, तो देखिए आ गया, हवा की आवाज़ आ रही है, ता दिन दिंदा हवा चल रही है, चटनी अटनी पिस रही है लगता है आम की, देखिए।

चलिए ऐसे खुश रहिए, मगन रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 9:43 और 23 सेकंड भी हो चुके हैं पॉप टाइम में। जो अगला मेल मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो रोशनी रावत जी आपका मेल है। बड़े खूबसूरत से कलर आपने इस्तेमाल किए हैं इसमें, ब्लैक तो है ही, साथ में रेड भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और चाय की प्याली भी है, चाय का कप भी है ना। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड अनवारुल हसन सर जी, आप कैसे हैं? आप शायद प्रोग्राम बहुत लाजवाब लगा, पॉप टाइम में गर्दा उड़ा दिया है। मुझे कल रात 12 बजे से आपका इंतजार था। जैसे ही सर जी सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट देखी और पता चल जाए कि हमारे फेवरेट सर जी आने वाले हैं, फिर तो बेसब्री से इंतजार हो जाता है। जी हाँ, मैंने कल रात में 12 बजे अपडेट कर दिया था। जैसे ही आप शायद यहाँ ख़त्म हुआ और मैंने वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया कि कल का ठीक। सर जी, अपने परिवार के साथ कभी चंडीगढ़ आइए। एक बार आए थे हम, चंडीगढ़ से होकर ही वहाँ से मनाली गए थे, तो चंडीगढ़ भी आना हुआ था। यहाँ घूम जाइए, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो चलिए, कभी अब दोबारा कभी आना होगा तो आपको धीमे से बता देंगे। घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, और कह रहे हैं कि हम आपको ले चलेंगे और आपके बहाने हमें भी बहाना मिल जाएगा घूमने का। ये तो बिल्कुल सही है, बहाने से बहाना मिल जाता है। मेरा नाम रोशनी रावत है, गांव बहमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ में रहते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बबीता राव, नीलू शर्मा दीदी, गुलफशा दीदी, साजिया जी, साहिबा जी को मेरा सलाम बोल दिएगा। भाई उन्होंने सुन लिया है, क्योंकि वो सारे लोग ज़रूर सुन रहे हैं, क्योंकि उनके जिनके आपने नाम लिए मेल हम तक पहुँचे हैं। गांव के बाहर बैठे दोस्तों के साथ पॉप टाइम का भरपूर आनंद ले रहा हूं, और जैसे हम सब लोग किसी पार्टी में बैठे हों ऐसा लग रहा है। नमस्ते मेरे फेवरेट हंसमुख अनवारुल सर जी, ब्रजेश सिंह दीपू टहुआ कैसरगंज बहराइच से लिख रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। चलिए ऐसे आनंद लेते रहिए सबके साथ, बहुत अच्छी बात है। एक और मेल आया है और इसमें कुछ ये देखिए खाना भेज रहे हैं, हम बता भी नहीं सकते क्या भेज दिया है। मोहम्मद आसिफ साहब आपने हैदराबाद से हमको, प्याज के छल्ले दिख रहे हैं, नीचे चावल दिख रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। मोहम्मद शादाब खान साहब, आपका भी मेल आ चुका है। चलिए शुक्रिया इस खाने पीने की चीज़ों के लिए। हम रजनीगंधा के टाइम इन्हें देखते रहेंगे बीच बीच में, ताकि एनर्जी बनी रहे, फिर जाके घर में खाएंगे। मोहम्मद शादाब, विलेज बेलई संडीला, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आपने मेल किया, अस्सलाम वालेकुम। और

ऐसे हैं आप सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। ऐसे ही इस भागीदारी को, इस मोहब्बत को बनाए रखिएगा। जल्दी से अहमद नवाब, आपका भी मेल पढ़ देता हूँ। पुरखलूस आदाब सर, कैसे हैं आप? आबशार बहुत बेहतरीन था, जिसमें एक गज़ल मेरी सबसे पसंदीदा गज़ल थी, कल चौदहवीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। आपको बहुत अच्छी लगी और पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। रजनीगंधा में भी मैं आपके साथ बनी रहूंगी। सर एक खुशखबरी आपको देनी है, मेरा नया रेडियो आया है आज। अरे वाह क्या बात है, मिठाई खिलाइए तब तो। अब आप तो संडीला में वैसे भी मिठाई खिला सकती हैं, वहाँ पे लड्डू बड़े फेमस हैं। हमारी तरफ से खा लिए, हम चाहेंगे सोचेंगे हमने खा लिया। नीचे फोटो में कॉफ़ी मग में नींबू का शरबत है, आप हंस सकते हैं। मतलब हम हंसते हैं क्यों? अच्छा देखिए, रेडियो इन्होंने नया रेडियो के फोटो भेजी है। वही वही वाह क्या बात है, बेहतरीन रेडियो है, लाल रंग की, उसमें बत्ती भी जल रही है। आह क्या बात है, और एक कप है कॉफ़ी का जिसमें आप नींबू का शरबत पी रही हैं, शिकंजी पी रही हैं लगता बना के। चलिए फ़ायदेमंद भी है, ऐसे ही बनी रही है। एम के राज जी, आपका मेल भी पढ़ देते हैं। मनीष कुमार राज, भानपुर हरैया ज़िला लखीमपुर सीतापुर से आपने लिखा है, और रेनबो पॉप टाइम आप सुन रहे हैं, और लिख रहे हैं कि हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं। सर हम आपको एक जोक सुनाते हैं, वो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, देखिए हूँ करके कि इसमें आपने लिखा क्या है। हम पढ़ देते हैं, कहीं अगर कुछ आपत्तिजनक होगा तो वहीं छोड़ देंगे। देखिए हमारा एक दोस्त है, वो एक दिन हमसे बोला कि मित्र मेरे घर आने वाले हैं, हमारी अर्जियाँ लगवाइए, मगर ये सुधर नहीं रहा है। तो दोस्त ने जवाब दिया कि मम्मी जी चाहे जितनी लगवाओ अर्जी, मगर हम करेंगे अपनी ही मर्जी। भाई वाह क्या बात है, मर्जी, यानी उसने नुक्ता नहीं लगा था तो हमने मर्जी बोल दिया उसको। आपका पक्का श्रोता, भाई वाह ये अच्छी बात है, पक्का और कच्चा भी। आपने ये नया एक देखिए एक उपमा दे दी है, मनीष कुमार राज ने, और साथ में कुमार राज भी हैं, और ये पक्के वाले हैं, है ना, माने पक्के श्रोता हैं, ये भी इन्होंने बता दिया है। ज़ीशान खान साहब, आपका भी मेल पढ़ दें जल्दी से, फिर हम गाना बजाएंगे, क्योंकि मेल बहुत ज़्यादा आपके आ रहे हैं तो भाई पढ़ना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम अनवारुल भाई, आई एम ज़ीशान खान संडीला से, इस वक्त बाहर सऊदीया में है। मुझे ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम करने का अंदाज क्या कहने, मज़ा आ जाता है जब आप बीच बीच में मस्ती करते हैं। हम मस्ती कहाँ कर रहे हैं, चटनी पीस रही थी वहाँ तो हमने बता दिया आपको, करते हैं तो सुनने में जो है सुकून मिलता है। और बता नहीं सकते कि आपको मैं और मेरी वाइफ जो है, अब समझ में आया कौन है आप, देखा इनकी वाइफ है गुलफिशा सिद्दीकी साहिबा अंसारी, जो वहाँ से जो मेल आता है, गुलफिशा सिद्दीकी आपकी वाइफ है और वो भी आपका प्रोग्राम सुनती है। अरे ज़ीशान साहब वो मेल भी करती रहती है हमको। और देखिए बस अब गाना आ गया, अपने आप बज गया है। लीजिए खाने पीने की बात आ गई, रोटी पानी खाइए और गाना

जी यहानी सिंह जी अपना भी नाम बोल देते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि आप सुन रहे हैं इस वक्त पॉप टाइम अनवारुल हसन के साथ, ऐसे ही वो भी अपने गाने के बाद साथ साथ अपना नाम बोलते रहते हैं। तो बस आपके जो बहुत सारे मेल आए हैं जल्दी से उनको भी हम कोशिश करते हैं कि पढ़ दें, ताकि आपकी भागीदारी भी जो है वो सुनिश्चित हो जाए, आपने मेहनत की है तो उसको भी हम पढ़ देते हैं। अगला मेल है हमारे पास है शुक्ला जी का। नमस्ते सर, मैं अनुराधा शुक्ला विलेज गंगापुर गुलहरिया बहराइच से आपने हमें

जी यानी सिंह जी अपना भी नाम बोल देते हैं, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि आप सुन रहे हैं इस वक्त पॉप टाइम अनवारुल हसन के साथ, ऐसे ही वो भी अपने गाने के बाद साथ साथ अपना नाम बोलते रहते हैं। तो बस आपके जो बहुत सारे मेल आए हैं जल्दी से उनको भी हम कोशिश करते हैं कि पढ़ दें, ताकि आपकी भागीदारी भी जो है वो सुनिश्चित हो जाए, आपने मेहनत की है तो उसको भी हम पढ़ देते हैं। अगला मेल है हमारे पास है शुक्ला जी का। नमस्ते सर, मैं अनुराधा शुक्ला विलेज गंगापुर गुलहरिया बहराइच से आपने हमें मेल किया और आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, साथ में इनकी जो है ननद जी भी सुन रही हैं, मंदाकिनी भी सुन रही हैं, गाने अच्छे लग रहे हैं और आपने एक फरमाइश की है तो फरमाइशी प्रोग्राम क्योंकि ये नहीं है इसलिए भाई हम आगे बढ़ जाते हैं। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं कि तुम्हारे दिल की गहराई में डूबा था तभी याद आया कि तैरना तो आता ही नहीं है। गाने मस्त, बातें सर चटपटी चटनी की तरह करते हैं आप, मौसम आज कुछ ठंडा है। और ईमेल मोदीपुरम मेरठ से आपने भेजा है राजेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेल किया है। चलिए हमारी तरफ से आप भी एक चटपटी चटनी के साथ आज खाना जरूर खाइएगा। और एक मेल और है गुलाब कश्यप जी आपका। हेलो डियर सर, मैं गुलाब कश्यप फ्रॉम ग्राम रामपुर पोस्ट हैदराबाद ब्लॉक और आज जिला उन्नाव से आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम मस्त लग रहा है और खाना सुन के अच्छा लगता है। खानी खाना सुनकर तो हमें अच्छा लगता है, आप लोगों ने जो इतनी सारी खाने वाली तस्वीरें भेज के जो ललचा दिया है हमें, तो बस उनको जब रजनीगंधा का प्रोग्राम चलेगा ना तो उसमें बीच बीच में वो खाना देखते रहेंगे। और कुछ लोगों की याद आपको आ रही है, आपने उनके नाम लिखे हैं, एक गाना जल्दी से पहुँचा देते हैं और उसके बाद जो बचे हुए मेल हैं हम उनको भी शामिल करते हैं।

जी नोबल के छप्पर में ठो गए, और इतनी तेज डांस मत कीजिएगा, आते उलझ जाएंगी। शिव प्रकाश जी आपका मेल पढ़ दें जल्दी से, क्योंकि तीन चार मेल और भी है। नमस्ते सर, मैं शिव प्रकाश तनोज टाइनोजा कंगा फतेहपुर। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, गलती अगर है तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़ सर। मेरे कुछ दोस्तों को आप, अच्छा, आप अपनी आईडी कह रहे हैं। देखिए ये हम इसको बता नहीं सकते इस तरीके से, है ना, ये आपकी व्यक्तिगत आईडी है, हम अपनी भी आईडी नहीं बता सकते। मुझसे भी कई लोग पूछ रहे हैं मेल में कि आपकी आईडी क्या है, तो मैं कहता हूँ आप जाके सोशल मीडिया पे ढूंढ लीजिएगा तो हम आपको मिल जाएंगे। रणवीर गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमको मेल किया है। नवारुल हसन सर जी आदाब, शुभ संध्या, गजलों का प्रोग्राम और पॉप टाइम सब कुछ आपको पसंद आया। ओखला संगम बिहार दिल्ली से आपने मेल किया है। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता भी साथ में शामिल हैं। वसंत कुमार सिन्हा जी का भी मेल हम तक पहुंच चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। कोमल तिवारी जी ने भी मेल किया है। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था, कितना प्यार करते हो जब हमने पूछा मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। बहुत बहुत शुक्रिया, बस अब मेल मत लिखिएगा प्लीज़, क्योंकि अब वक्त बचा नहीं है। योगेंद्र कुमार जी आखिरी मेल आपका है जो आपने हमें चंडीगढ़ से ये मेल किया है। और मेरी सिस्टर रोशनी रावत हैं, अभी आपका प्रोग्राम सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका ईमेल पढ़ने का अंदाज़ आपको अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस सब के लिए, और बस एक गाने के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं और बस उसके बाद समाचार होंगे और फिर एक खूबसूरत सी खुशबू आप तक पहुंचेगी रजनीगंधा की। इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनवारुल हसन को, लौटते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, रात के 10 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग PWD की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और अभियंताओं को सड़क निर्माण कार्यों में युद्धस्तर पर तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा गुणवत्ता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वाराणसी मंडल में संचालित और PWD परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से बरसात से पूर्व पूर्ण होने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चंदौली में महिला कल्याण विभाग द्वारा मुख्यालय स्थित MCH विंग के विभिन्न वार्ड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भव्य कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम

का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अस्पताल में जन्मी 20 नवजात बच्चियों की माताओं और परिजनों में बेबी किट वितरित कर खुशियां मनाई गईं। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं और उनके परिजनों को महिला व बाल विकास से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों ने नवजात बालिकाओं के अभिभावकों को सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जोरदार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित है। वहीं आज प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। हालांकि सुबह तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि हुई, लेकिन दोपहर बाद मौसम अचानक बदल गया और आसमान में बादल छा गए। शनिवार को भी बारिश और आंधी पानी का अलर्ट है। मानसून के केरल में दस्तक देने के बाद आज शुक्रवार को साउथ वेस्ट मानसून पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड में पहुंच गया है। पड़ोसी राज्य बिहार पहुंचने के बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाला है। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 गंभीर घायलों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना थाना आसीवन क्षेत्र में हुई है। हादसे का कारण कार की तेज रफ्तार बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही आसीवन पुलिस थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

राह आसान हो गई होगी, जान पहचान हो गई होगी, तेरी जुल्फों को छेड़ती थी सबा खुद परेशान हो गई होगी। खिड़कियों के दरमियान से चुपके से फरिश्तों की तरह टपकती हुई ठंडी हवा पर्दों की हथेली पर सना हुआ महीन सा साया बिखेर देती है। शहर की सांसें अब धीमे धीमे कमजोर पड़ती जा रही हैं। नींद की आगोश में समाने के लिए अपने आरामगाह की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। किसी मसरूफ गली में दीवाने खामोशी के नगमे गुनगुनाते हैं। चांद की नाजुक रोशनी खिड़की के कांच पर जम जाती है और कमरे की दीवारों पर सुलगते हुए अरमानों के नक्श छोड़ जाती है। मोहब्बत और वादे निभाने के खातिर हम फिर लौट आए हैं। 10:05:23 हो चुके हैं। रजनीगंधा आज आप सुनने वाले हैं, बस शुरुआत कर रहे हैं अनवारुल हसन के साथ। स्वागत है सफर में। नमस्कार।

बस कोई तो बहाना चाहिए जिंदगी में खुश रहने के लिए। कभी तुम आ जाओ ख्यालों में और मैं मुस्कुरा दूं, और तुम नहीं होती हो तो ये मुस्कान भी बेरंग हो जाती है। कभी तेरे दिल में ठहर जाऊं, कभी रुक जाऊं, बस तुम एक बार इजाजत तो दो। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में ठहर जाऊं। हां, मुझे इश्क है तुमसे। बताओ मेरे दिल की ये कहानी कितनी आसानी से पहुंच जाएगी तुम तक। कभी कभी मुश्किल भी लगता है और कभी कभी आसान भी। ये फिजा, ये चमन, ये तन्हाई, हाय किस वक्त उनकी याद आई। इश्क जब हर्फ शौक पर आया, हुस्न कहने लगा कि नींद आई।

100.7 FM रेनबो पर ये मोहब्बत के तराने छेड़ रहा है आपका दोस्त अनवारुल हसन। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा। और ये जो प्यार है ना, इसमें एक अजीब सा दीवानापन होता है। एक नजर में कोई समा जाता है दिल में, कोई तस्वीर उभर आती है, और कभी खामोशी छा जाती है, कभी आरजू की लहरें तूफान बनकर टकराती है। एक मासूम सी मुस्कान पर लोग जान लुटा देते हैं, और कोई ऐसी अदा जो बिल्कुल दिल को चुरा ले। हर सांस में कोई तकरार है, कभी हल्की सी रवानी है, कभी गहरी गहरी सी तड़प है। यादों के वो फसाने हैं जो रूह में समा जाते हैं, कभी दवा बन जाते हैं और कभी जहर भी। इश्क में वफा का वजन कम पड़ जाता है, और बेवफा जो है वो कभी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। कभी शाम की रौनक में हाथ थामे वो वादे दोहराए।

और फिर एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया है, सिवा उस धीमी धीमी धड़कन के जो खामोशी से दिल के इस तार छू जाती है, ताल से ताल मिलाती है। खिड़कियों से कमरे में दाखिल हो चुकी है एक और रात, अपने साथ एक सन्नाटा भी लेकर आती है। जो अब फिर से बोलने को मजबूर होते हैं वो लफ्ज जो दिन में कहीं छुपा दिए गए थे, अब रोशनी के साथ उमड़ पड़ते हैं, चांद के साथ साथ चलने लगते हैं। ये रात बेखौफ और मगरूर होकर अपने पीछे अपने साथ पीले नीले पर्दों के पीछे से हौले से मुस्कुरा कर कहती है, रुको सुनो, हर खामोशी में एक राज है, एक किस्सा छुपा हुआ है, और हर खिड़की से गिरती हुई रोशनी में एक नया अंदाज है। और इसीलिए ये रात खिड़की से दाखिल होती है उस रोशनी की तरह आसमान में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चांद की तरह। महसूस कीजिए उस चांदी रात को, देखिए ना एक बार बाहर जाकर चांद कैसा लगता है।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: हो जाए।
1: तुम्हारी तस्वीर ही हमारे मन में भा गई थी। तस्वीर नहीं थी वो, जीती जागती तस्वीर थी, यानी परछाई थी तुम्हारी। और सच तो यह है कि उस परछाई से, उस तस्वीर से तुम कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी मोहब्बत का वो शजर ऐसा लग गया मन में, जिसका हमारे आंगन में आज भी साया है। बिल्कुल दिलासा जो तुमने दिया, जो भरोसा दिया मुझे, आज तक उस पर नाज है। और मेरी तुमसे इल्तिजा है कि हमेशा मेरे पास रहना। गुजारिश है, कभी इंतजार न कराना। तेरे दिलकश चेहरे की फलक में सितारे जगमगाते हैं, आसमान में चमकते सितारे भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे कहीं ठहरते नहीं है। और खूबसूरती के से तुम दिल को जोड़ देती हो। तुम्हारी मोहब्बत का बगीचा इतना प्यारा है, जैसे बहुत सारी फूलों की क्यारी है उसमें। तस्वीर में सिर्फ अक्स दिखता है, लेकिन तुम तो असल में एक अजीब सी कश्मकश और कैफियत के साथ, दिल के जज्बात के, मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। तस्वीर से कर ज्यादा भरोसा या ये जो सोच है, मोहब्बत के साथ ही बनती है, वक्त के साथ बनती है और हमेशा बनी रहे। दुआ कीजिए।

मैं तो बस तेरी निगाहों का तमन्नाई हूं, तेरी जुल्फों की घनी शाम का शदाई हूं। मेरी आंखों में तेरे हुस्न की रानाई है, मेरे दिल में तेरी तस्वीर उभर आई है।

रात के 10:54 और 19 सेकंड हो चुके हैं। फिर कुछ चेहरे बदनाम और बेनकाब होने की गरज में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे दौड़ रहे हो। फरेब का जाल कभी इतना मजबूत नहीं होता जो किसी रिश्ते की रूह को देर तलक छिपा सके, और अगर होता भी है तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होता है समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। और जैसा कि पहले कहा कि 10:54 हो चुके हैं, तो अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। हम लौटेंगे समाचारों के बाद भी और रजनीगंधा का यह सफर जारी रहेगा। आज मैं आपके साथ आपका दोस्त अनवारुल हसन।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान और महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 21 जून 2026 तक एक सप्ताह का योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह शिविर गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होगा, जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान और योग दर्शन के विभिन्न आयामों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिविर का उद्घाटन 15 जून को सुबह 10:30 बजे होगा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह उपस्थित रहेंगे। शिविर के मुख्य संरक्षक प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यापक स्तर पर आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, नगर निकाय एवं ग्राम

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी योगी कमलनाथ करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह उपस्थित रहेंगे। शिविर के मुख्य संरक्षक प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यापक स्तर पर आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, नगर निकाय एवं ग्राम